जाती हैं, जैसे कि हम सोच कुछ रहे होते हैं और हमें करना कुछ होता है। यह प्रक्रिया अमूमन हम विद्यार्थियों के दायरे में देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन हमेशा से प्रश्नोत्तरी वाला होता है। हमेशा से उनके दिल दिमाग में प्रश्न और उत्तरों का बहुत बड़ा समुन्दर होता है। ऐसे लोगों को हमेशा से भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए हम अपनी मन वृत्तियों को शांत कर लेंगे और इस प्राणायाम को शुरू करेंगे कुछ इस तरह। ओम।

इस तरीके से हम दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे पे और आंखों पे लगाएंगे। उसके बाद प्रवाह की ओर चलेंगे, यानी कि सबसे पहले प्राणायाम, प्रवाह प्राणायाम, प्रवाह भ्रामरी प्राणायाम। आई बॉल पर बहुत ही हल्का सा दबाव डालते हुए, श्वास पर नियंत्रण रखते हुए, मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी गहरी और स्थिर गुंजन ध्वनि निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और श्वास को लेंगे। यह सबसे पहला प्राणायाम, क्योंकि हमें प्रातः काल में बहुत ही ज्यादा और तेज कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। कोशिश करिएगा दोस्तों कि हम वातावरण को शुद्ध करते हुए किसी धूप या अगरबत्ती भी अगर जला देंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा वातावरण बन जाता है। और अपनी मन वृत्तियों को शांत करने के लिए ओम का उच्चारण 3 से 4 बार जरूर करें। एकाग्रचित में बैठ करके हम अपने आप की यानी कि सारी वृत्तियों को शांत करके हम बैठ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब सभी मिलकर

हम अपनी सारी वृत्तियों को शांत कर देंगे। योग के समय हमें अपने मन में कोई वैर, विरोध, काम, क्रोध नहीं लाना होता है। और ध्यान योग करते समय तो मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना है। सभी से निवेदन है कि अपनी आंखें अभी ना खोलें, धीरे धीरे मध्यम मध्यम श्वास लीजिए और धीरे धीरे मध्यम मध्यम श्वास को छोड़ें। साथ ही साथ हम यह महसूस करेंगे कि हम श्वास को ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। चेहरे पर एक भीनी भीनी मंद मंद मुस्कान, अंतर मन में सिर्फ एक जाप। हम जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं वह जाप हमारे अंतर आत्मा में चलता रहेगा और हमारा ध्यान त्रिनेत्र पर आता रहेगा। यह ध्यान योग हम सभी मिलकर के इसलिए करते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी होती है हम उसमें हमेशा से अपने आप को बड़े उलझन में पाते हैं, पर ध्यान योग एकाग्र चित होकर के बैठ जाने वाला अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसी तरह जब मैं आपको गिनती उल्टी गिनती की तरफ ले जाऊं, तत्पश्चात आप हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और इस प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। 5 4 3 2

इसी तरह अपनी आँखों पे और अपने चेहरे पे हाथ को लगाते हुए हम इस अभ्यास को और आज के प्राणायाम को पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल करके हम अपने चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम को पूर्ण करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि हमें कितनी ज्यादा शांति और आनंद का अनुभव लग रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए यानी कि 30 दिवसीय जो कि शिविर हमने आज से शुरू करी है, तो आज पहला दिन प्रवाह हमने सभी मिलकर के किया। कल की अगली सीरीज के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपके सामने आज ला रही हूँ फिर से एक नया प्राणायाम व्यायाम और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जैसा कि आपने पहले भी कई बार सुना है। दोस्तों, आजकल के युग में सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो है हम अपना ध्यान रखें और साथ साथ अपनों का भी हम पूर्ण रूप से ध्यान रखें। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम के बारे में। जैसे कि यह मुख्य प्राणायाम है और यह मुख्यतः आँखों से संबंधित प्राणायाम है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हर घर में एक जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सबके क्या कहते हैं चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। उसका मुख्य कारण यही है दोस्तों, मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप, या हम बहुत देर तक रात में जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी हमारी जो आँख की रोशनी है वो कम हो जाती है और आँखों से पानी आना, आँखों में जलन और बहुत सारी ऐसी आँख से संबंधित परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम व्यायाम जो लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है त्राटक प्राणायाम और मुख्यतः यह आँखों का प्राणायाम है। त्राटक का अर्थ वैसे तो विशेषता एक साधारण लैंग्वेज में हम बोलेंगे जिसका अर्थ होता है टकटकी, और ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी निगाह टिकाते हैं तो शरीर को बिना हिलाए मन भी स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर उधर भटकने वाले मन को शांत करके एकाग्र करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने वाले मस्तिष्क के काम करने वाले की क्षमता को पार तो करता ही है, साथ साथ हमें एक साथ एकाग्र होने की भी क्षमता बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों, हम त्राटक प्राणायाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो सबसे पहले हम जान लेते हैं, विधि जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, त्राटक प्राणायाम करने के लिए हम सिद्धासन में कहीं पर भी आप स्वच्छ जगह पर चटाई बिछा करके, चद्दर बिछा करके हम बैठ जाएंगे। तत्पश्चात त्राटक योग करने की जो सबसे एक सरल प्रक्रिया है जिसे हम अपने घर में आसानी से किसी भी जगह पर बैठ करके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम बेड पे या हम कहीं पर भी, या जैसे सोफे पे, बेड पे, हम कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन पर ही बैठ करके इस प्राणायाम को कर सकते हैं।

हैं। हम सोफे पे, बेड पे, कुर्सी पे, कहीं पर भी इस प्राणायाम को नियमित रूप से और आराम से हम बैठ करके कर सकते हैं, जिससे हमें और हमारे शरीर और हमारी आँखों को लाभ मिलेगा। तो आइए सबसे पहली प्रक्रिया हम जान लेते हैं। इस योग को करने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है दोस्तों, वह है मोमबत्ती जलाएं और इसे आँखों के सामने रखें, यानी आपकी आँखें जो हैं वो ना तो ऊपर होंगी आँखों की पुतलियाँ और ना ही नीचे होंगी, बिल्कुल आपको सीधे एक ही दिशा में इसको रखना है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर रख लेंगे ज़मीन से, अगर हम बेड पे बैठे हैं तो किसी टेबल पे ऐसे स्थान बनाएं कि मोमबत्ती हमारे आँखों के बिल्कुल सामने आए और उसकी जो लौ है वो हमारे आँखों के बिल्कुल सामने ही रहे। जैसे हवा आती है और लौ थोड़ा बहुत हिलती ढुलती है, वैसे ही हमारी आँखें जो हैं, जो हमारी आँखों की पुतलियाँ हैं, वो उस लौ के ही आधार पर जो हमारा प्राणायाम है वह स्टार्ट होगा। हाथों को घुटनों पर रखकर आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और शरीर को आराम देने के लिए धीरे धीरे श्वास लेंगे। जैसे हम बिल्कुल तेजी से श्वास नहीं ले सकते हैं, बहुत आराम से श्वास लेंगे धीरे धीरे। और त्राटक प्राणायाम ही अपने आप में ऐसा मुख्य प्राणायाम है जिसे बहुत ही आरामदायक कहा गया है। उसके बाद इसकी जो दूसरी प्रक्रिया है वह है जब आंखें बंद करें और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और बिना पलक झपकाए मोमबत्ती की लौ को एक टक देखने की कोशिश करें। कैसे करना है, जैसे हमने मोमबत्ती जला ली और हम बिल्कुल हम ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठ चुके हैं, हमारी आंखें उस मोमबत्ती को देख रही हैं और लगातार देखती जा रही हैं। आप यह व्यायाम सबसे पहले आप टाइमर लगा लेंगे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, सबसे कम का हम इसमें लगाएंगे टाइमर, जैसे सबसे पहले हम 1.5 मिनट का लगाएंगे। उसके बाद में आँखों की जो पुतलियाँ हैं वह बिना इधर उधर घुमाए, आँखों की जो पलकें हैं उनको बिना नीचे ऊपर झपकाए सिर्फ एक टक हमें मोमबत्ती की ओर देखना है और देखते देखते एक टक देखते रहना है। आँखों पर बिना दबाव डाले जितना संभव हो सके उतना उस लौ को देखें और जरूरत पड़ने पर फिर से आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान भवों के केंद्र की ओर करें, यानी हमारी आईब्रोज के बीच में ध्यान होना चाहिए और इस अवस्था में मस्तिष्क में मोमबत्ती की लौ की कल्पना करें। आप इमेजिन करें हमारी जो ये मोमबत्ती हमने जलाई है वो हमारी कल्पना में है और उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और साथ ही साथ हमारी आंखों की नज़र सामने वाले किसी भी रंग कप पर पड़ सकती है। यदि हम मोमबत्ती को एक टक देखते रहेंगे दोस्तों, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि हमें अनेका अनेक उसमें रंग उसमें हमको दिखाने लगेंगे, जैसे कभी लाल दिखने लगेगा, कभी पीला दिखने लगेगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम त्राटक प्राणायाम कर रहे हैं और एक टक हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखों की पुतलियां जो हैं बिना पलक झपकाए हम किसी भी एक चीज को केंद्रित होते अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होने लगता है कि उसकी जो लौ है वो हमारी आंखों में जाने लगती है, जिससे आपको लगेगा कि हमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब मस्तिष्क के भीतर उभरने वाली छवि गायब होने लगे, यानी जैसे मैंने अभी आगे बताया कि हम उस मोमबत्ती को अपनी भवों के बीच में बिल्कुल ध्यान एकत्रित करके देखेंगे, तो ध्यान रहेगा कि 3 से 4 मिनट, जब हमारा 2 से 2.5 मिनट हो गया है तो हमें लगेगा कि हम उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए हमें ये महसूस होगा कि हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। और उसके बाद से जब हमें लगे कि हमारी आंखों से पानी गिरने लगे तो हम स्वतः आंखें धीरे धीरे बंद कर देंगे और आंखें बंद करने के बाद में हम एकाग्रचित होकर के 30 सेकंड या 1 मिनट बैठ करके हाथों की हथेलियों में घर्षण करके वो जो हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाएंगी अपनी पुनः आँखों पे लगाएंगे और चेहरे पे लगा करके धीरे धीरे हम आँख को खोल सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा त्रैटक प्राणायाम करने की विधि। अब जान लेते हैं त्रैटक प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, हमने त्रैटक प्राणायाम कैसे किया जाता है यह तो हमने जान लिया, पर इसकी विशेष कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं त्रैटक प्राणायाम अभ्यास जो है वो हमें कब करना है और कितनी देर के लिए करना है। यदि हमारा खाली पेट होगा तो यह अभ्यास सुबह 5 से 6 के बीच में अधिक प्रभावकारी होता है, क्योंकि दोस्तों जब हम सो करके सुबह उठते हैं तो हमारी आंखों में आपने खुद देखा होगा एक अजीब प्रकार की एक जैसे लार आंखों में आ जाती है। जब हम उठते हैं अपनी आंखों को मसलते हैं उसके बाद हमारी आंखें जो हैं स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। तो यदि इसको हम सुबह उठने के बाद ही अगर हम कर लेंगे तो हमारा इसका जो साथ में इसका प्रभाव है वो 2 गुना हो जाएगा। आप रात में सोने से पहले भी इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे यदि हम जैसे सोने जा रहे हैं तो हमें 5 मिनट पहले अपने जैसे हम बिल्कुल ये लगे कि हाँ बस अब हम सोने ही जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले इस प्रक्रिया का आरंभ कर सकते हैं, और जैसे लगे कि हमारी यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही है पूर्ण होने के बाद में हम आराम से सो सकते हैं। इसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि त्राटक योग का अभ्यास करते समय हमें महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी करनी है कि कमरे में ना तो रोशनी से भरा हो और ना ही उसमें बहुत अंधेरा हो, मतलब मीडियम होनी चाहिए, ना तो बहुत रोशनी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही अंधेरा होना चाहिए। प्रतिदिन दोस्तों 3 से 4 मिनट यह अभ्यास किया जा सकता है। इसकी जो समय अवधि है वो 10 से 15 मिनट तक भी हो सकती है, लेकिन हम स्टार्टिंग में इसको 2 से लेकर 5 मिनट के अंदर तक कर सकते हैं। नेत्र विकार बहुत सारे हो गए हैं आजकल, तो उस नेत्र विकार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब को खत्म करने के लिए यह त्राटक जो प्राणायाम है यह उपयुक्त बहुत है। तो आइए दोस्तों हम अब त्राटक प्राणायाम के इस योग के लाभ जान लेते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है यह हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, उसके बाद आंखों को शुद्ध करता है, और एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह व्यायाम हमारी आंखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, आंखों में भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, और जब हम किसी चीज को एक तक देखते रहेंगे तो उस पे प्रेशर पड़ेगा, हल्का प्रेशर पड़ेगा, और इससे हमारी आंखों की जो भी मांसपेशियां हैं वह उनको मजबूती मिलेगी। इस योग के नियमित अभ्यास से निकट दृष्टि दोष ठीक होता है। हाँ दोस्तों, जिनको पास की रोशनी जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है उनको यह जो है योग करना चाहिए, जिससे इस जो निकट दृष्टि दोष होता है वह ठीक होता है। त्राटक योग दृष्टि एकाग्रता स्मृति में सुधार तो करता ही है, इसलिए स्कूली बच्चों को यह योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आगे बताया कि स्कूलिंग वाले बच्चों को आजकल चश्मे लग गए हैं, तो यह अभ्यास जो है यदि हम उसे बच्चों को हमेशा से अपनी निरंतर प्रतिक्रिया में इसको हम लाएंगे तो बहुत सारा हमें लाभ मिल सकता है। त्राटक योग के जरिए नींद से संबंधित विकार जैसे सिर दर्द, अनिद्रा व बुरे सपने आदि को भी ठीक कर सकता है। त्राटक योग का नियमित रूप से अभ्यास करने से बेचैन मन शांत होता है, जैसे हमारा किसी काम करने में मन न लगे और हमें एकाग्रता नहीं आती है, तो दोस्तों यह प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है और हमें एकाग्रता आती है। यह विभिन्न प्रकार की मानसिक, व्यवहारिक और भावात्मक बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। त्राटक योग से आपका आत्मविश्वास, धैर्य, इच्छा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ में हमको जीवन जीने की एक नई शैली भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने आज कि हमने आज त्राटक योग के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी ली, और हमें उम्मीद है कि त्राटक योग जो है आप अपनी नियमित योगशाला में आकर के आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे और अपने जीवन में इसको जरूर से जरूर लाएंगे। तो दोस्तों आज हमने त्राटक प्राणायाम

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। जय माता दी। सभी भक्तगणों को और सभी को प्रातःकाल वंदन। आज की पहली किरण बहुत खास होने वाली है, कारण आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। जी हाँ मित्रों, नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज हम बात करने वाले हैं माँ शैलपुत्री के बारे में, उनके विधि विधान, पूजन और उनके स्वरूप के बारे में। चलिए तैयार हो जाते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ एक नए दिन का आगाज करते हैं। और आज आपके भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण में हम बात करेंगे माँ की महिमा का। सबसे पहले आनंद लेंगे इस प्यारे से भजन का, उसके उपरांत आएंगे और माँ के विशेष गुणों, अवतारों, पूजन आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। जय माता दी।

दोस्तों, आज हम सभी बात कर रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन यानी माँ शैलपुत्री के बारे में। शैलपुत्री नौ दुर्गाओं में प्रथम है जो हिंदू देवी महादेवी का अवतार है, जो देवी दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। सती पार्वती और हेमवती के नाम से भी जानी जाती है। इन्हें बैल पर सवार त्रिशूल और कमल लिए हुए दर्शाया गया है और शक्ति, दृढ़ता और अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक मानते हुए शुभ नवरात्रि उत्सव के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है।

अब बात करेंगे माँ की उत्पत्ति और नाम के बारे में। पहाड़ की बेटी यानी शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ अर्थात शैल की पुत्री, जो कि पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री सती के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन भगवान शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें सती, भवानी, पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है।

अब बात कर लेते हैं देवी की प्रतिमा व स्वरूप के बारे में। यदि उपस्थिति की बात करें तो उन्हें दो हाथों से चित्रित किया गया है, जो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पकड़े हुए हैं। माँ का स्वरूप बहुत ही सरल और सौम्य है।

इनके लिए कुछ मंत्र भी हैं, जैसे ओम देवी शैलपुत्रे नमः, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। इसके अलावा इनका एक बीज मंत्र भी है जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इसके अतिरिक्त वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं, ये मंत्र माँ के गुण और छवि को दर्शाता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि के पावन प्रथम दिवस पर भक्त हिमालय की पुत्री यानी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नौ दुर्गाओं या नौ देवियों में माँ शैलपुत्री का विशेष महत्व है और उनकी दिव्य खूबियों में उनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को शांत और सरल स्वरूप में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और वे नंदी नामक वृषभ पर सवार हैं, जिसके कारण इनका नाम वृषारोढ़ा भी पड़ा। वे वन्य जीवों की रक्षक हैं और योग ध्यान तपस्या और अनुष्ठानों के लिए हिमालय पर्वतों में शरण लेने वालों द्वारा पूज्य हैं। ऐसा माना जाता है कि वे साधक के मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में सहायता करती हैं। उनका प्रिय रंग सफेद है, इसलिए उन्हें सफेद वस्त्र, सफेद फूल और सफेद रंग का भोग अर्पित करना चाहिए।

अब हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम माँ शैलपुत्री के अनुष्ठान और पूजन की विधि किस प्रकार करें। नवरात्रि अनुष्ठान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुरू करें, जो सूर्य उदय से पहले का एक पवित्र समय है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें और अपनी पूजा चौकी, जो लकड़ी या पत्थर की बनी एक नीची चौकोर कुर्सी होती है, को शुद्ध गंगा जल से शुद्ध करें। यदि आपके पास में चौकी नहीं है तो आप जहां भी आसन देती हैं माँ को या देते हैं, वहीं उसको शुद्ध गंगा जल से शुद्ध करें। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापित करें, जिसमें पत्तों, फूलों और अन्य शुभ प्रतीकों से सजे जल से भरे पवित्र पात्र को स्थापित करने की औपचारिक क्रिया होती है। कलश भगवान गणेश का प्रतीक है और किसी भी अनुष्ठान या शुभ कार्य के आरंभ का प्रतीक है। कलश स्थापित करके माँ शैलपुत्री के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए ध्यान करें और व्रत रखने का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जानी चाहिए, जो एक 16 चरणों वाली पूजा पद्धति है, जिसमें पवित्र नदियों, पवित्र तीर्थ स्थलों और दिशाओं के सार का आवाहन किया जाता है। इसके बाद देवी माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और श्रद्धा स्वरूप श्वेत या पीले पुष्प अर्पित करें। धूप की सुगंध और देवी के सामने रखे 5 घी के दियों की ज्योति से स्थान को आलोकित करें। अनुष्ठान के इस भाग का समापन माँ की आरती करके करें। माँ शैलपुत्री की कथा सुनकर और अपनी परंपरा के अनुसार दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा का समापन माँ दुर्गा को भोग अर्पित करके करें। अपने दिन का समापन करने के लिए शाम को माँ की एक और आरती करें और ध्यान चिंतन में लीन हो जाए।

अब हम जानेंगे माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा के बारे में, जिसको हम दिव्य प्रेम के लिए अपने पिता दक्ष की अवहेलना स्वीकारते हुए सती का बलिदान भी कह सकते हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की 24 पुत्रियां थीं। हालांकि विभिन्न पुराणों में उनकी संख्या अलग अलग है। इसमें सबसे प्रसिद्ध पुत्री सती हैं, जिनका विवाह शिव से हुआ और उन्हें देवी शक्ति का एक रूप माना जाता है। सभी 24 पुत्रियों का विवाह विभिन्न देवताओं से हुआ है। हालांकि दक्ष सती के पति के चुनाव से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था

केशव एक तपस्वी होने के कारण उनकी कुलीन पुत्री के लिए अनुपयुक्त थे। दक्ष की आपत्तियों के बावजूद सती ने शिव से विवाह किया और कैलाश पर्वत पर रहने लगी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा अनेक ऋषियों और देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन जानबूझकर अतिथि सूची से सती और शिव को बाहर रखा गया। जब यह समाचार सती तक पहुंचा, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें दुख हुआ और वे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए तड़प उठी। उन्होंने अपने पति शिव के पास जाकर उनसे उपस्थित होने की अनुमति मांगी। शुरुआत में शिव ने झिझकते हुए कहा कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसके बावजूद सती अपनी प्रार्थना पर अड़ी रही और अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। हालांकि जब सती यज्ञ में पहुंची, तो उनकी बहनों और पिता समेत सभी ने उनका बहिष्कार कर दिया। एकमात्र अपवाद उनकी माँ प्रसूति थी, जिन्होंने उनका बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत किया और उन्हें गले से लगाया। आगे की कथा हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये देवी गीत।

अब हम कथा को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। सती का आत्मदाह और शिव का क्रोध। दक्ष के कठोर व्यवहार से सती का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे यही नहीं रुके। दक्ष ने सभी अतिथियों के सामने भगवान शिव का अपमान किया, जो सती के लिए असहनीय था। उनका मानना था कि उनका शरीर अब भगवान शिव के योग्य नहीं रहा, क्योंकि इसने एक शिव द्वेषी का अपमान सहन किया था। उन्होंने अत्यधिक दुख के साथ यज्ञ की पवित्र अग्नि में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा मानकर दक्ष का सिर काटकर अग्नि में फेंक दिया। दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करने के बाद भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान सती के शरीर के अलग अलग अंग भारत के विभिन्न भागों में गिरे, जो शक्तिपीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। कुल 52 शक्तिपीठ हैं। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद दक्ष को पुनर्जीवित किया गया और उनके धड़ पर एक मेढ़े का सिर लगाया गया और यज्ञ संपन्न हुआ। हालांकि सती की कहानी यही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने हिमवान और मैनावती की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुई, और इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव से पुनः विवाह किया। भगवान शिव की तरह पार्वती के भी अनगिनत नाम हैं, जिनमें शैलपुत्री भी शामिल है, और नवरात्रि का पहला दिन उन्हीं को समर्पित है। जय मां शैलपुत्री।

जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ शैलपुत्री का वाहन सफेद बैल है, जिसके कारण उनका नाम ऋषारूढ़ा भी पड़ा। उनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, जो देवी के नौ रूपों को समर्पित एक त्योहार है, ताकि उनकी शक्ति और आशीर्वाद का आवाहन किया जा सके। शैलपुत्री दृढ़ रहने और जमीन पर टिके रहने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो लोगों को अपने विश्वासों और मूल्यों पर अडिग रहने की शिक्षा देती है, बिल्कुल एक पर्वत की तरह। ये साहस और दृढ़ता की देवी हैं। यदि आध्यात्मिक यात्रा की बात करें, तो योग में वे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। उन्हें बहादुरी और साहस का स्रोत माना जाता है, जो लोगों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो यदि आप भी अपने अंदर दृढ़ता, शक्ति और निश्चय वाली ताकत चाहते हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करें, उनको याद करें और नवरात्रि के पहले दिन मना चिंतन करते रहें। जय माँ शैलपुत्री।

बहुत सारी बातें कर ली हमने माँ शैलपुत्री के लिए। अब जानते हैं माँ को प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे। माँ को प्रसाद में अर्पित करेंगे श्वेत वस्तुएं। वो हो सकती है श्वेत मिठाई, कोई फल या फिर चीनी यानी शक्कर, मिश्री, नारियल, ऐसे प्रसाद जो कि श्वेत रंग के हों। हाँ, आप खीर भी बना के उसका भी भोग माँ को लगा सकते हैं। तो आज हमने बात की माँ शैलपुत्री के बारे में, उनके पूजन विधान के बारे में। फिर से आपसे मुलाकात होगी आपके अपने भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण में। तब तक के लिए माँ का ध्यान करें, अपने मन को शांत करें, साहस से भर दें अपना जीवन और करते रहें माँ का वंदन। यहीं दें मुझे विराम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, अल्लाह हाफिज, जय जिनेंद्र।

0: हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 976 9816 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो 11.6 एफएम पर। और आज है दिन थर्सडे मॉर्निंग, यानी ऑफकोर्स मेरा मंडे और आपका थर्सडे, सो ये दिन ऐसा ही होता है फिलहाल। और क्यों ना भाई, आज के दिन को बिल्कुल मंडे वाली एनर्जी के साथ में किया जाए और आप तक वो सारे पैगामात पहुंचाया जाए जिसको लेकर के हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि भाई ये आप तक पहुंचेगा और आप इसको सुनेंगे, उसके बाद ये बतौर आपके लिए ख़ास एक तोहफा हो सकता है मेरी तरफ से, राइट। सो देखिए, तोहफे में तो यूँ तो बहुत सारी चीज़ों का चलता है भैया, कोई एसेसरीज देता है, कोई ड्रेसेस देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ। इसी में अगर कुछ ऐसी फिलॉसफी, कुछ ऐसे फ़लसफे दे दिए जाए जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, तो उसकी बात अलग होती है कि नहीं है? यस ऑफ कोर्स, आप अग्री कर रहे हैं और अग्री करना भी चाहिए क्योंकि बात तो सच है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो रोज़ मिलने वाले फ़लसफे हैं, ये एक तरह से तोहफा है हमारी लाइफ का, यानी हमारी लाइफ हमको मौका दे रही है इन चीज़ों को समझने का, क्योंकि अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो भी लाइफ चलेगी, तो भी दिन होगा, तो भी सुबह होगी, और तो भी हम सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमको ज़िंदगी को देखने के कुछ और आयाम बढ़ गए हैं। हमको लगता है कि शायद जो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे, जिस चीज़ को लेके कई सवाल थे, उसका जवाब इन थॉट्स में लगातार मिलता जा रहा है। यानी रोज़ रोज़ जैसे ही हम एक थॉट को सुनते हैं, हमारी लाइफ में कुछ अलग सा ऐड हो जाता है, एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, और वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ना। सो चलिए भाई, ऐसे ही हेल्प को देखते हुए, ऐसी ही बातों को समझते हुए, फ़िलहाल वक्त आ गया है कि आपको ले चले आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, और बताएं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे, यानी कि इस फैमिली के सुनने वालों से आखिर क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हर थॉट की अपनी कहानी है और हर थॉट अपना एक फसाना है। लेकिन उससे पहले आइए इस म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस से आएंगे, आने के बाद ऑफ कोर्स आपको बताने वाले हैं कि भाई आज का थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या पैगाम लेकर आया है, और क्या कुछ होने वाला है इसमें आपके लिए, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, आने के बाद आपको बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे स्पेशली आपके लिए क्या आया है और क्या कुछ कहना चाहता है आपसे थर्सडे मॉर्निंग में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम पर।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: तो ऑफ कोर्स हम बताने वाले आपको आज का थॉट ऑफ द डे, कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और क्या पैगाम लेकर के आया है। सो आज का थॉट ऑफ द डे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और थर्सडे चूंकि मॉर्निंग है, यानी कि आज मेरा मंडे और आपका थर्सडे। मेरा मंडे कैसे पता है ना, हाँ, कल जो है वो ऑफ होता है, और ऑफ के बाद वाला डे जो है वो एज मंडे काउंट मेरे ख्याल से किया जाता है। तो चलिए बताते हैं कि भाई आज का स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है।
5: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

सो आज का थॉट कहता है कि सीखना ही महज एक ऐसी चीज है जिससे कभी थकता ही नहीं है मन, कभी नहीं डरता है और कभी पछताता नहीं। सीखना ही एक ऐसी चीज है जिससे मन कभी थकता नहीं, कभी डरता नहीं और कभी पछताता नहीं। अब जरा सोचिए क्या बात कह दी इस थॉट ऑफ द डे ने, है ना? सीखना ही महज एक ऐसी चीज है जिससे मन कभी थकता नहीं, कभी डरता नहीं और कभी पछताता नहीं। अब सीखना मतलब क्या सीखना, सवाल तो ये भी आता है। अच्छा, जवाब आपको पता है? ऑलराइट, अच्छी बात है। सो सीखने में ऑफकोर्स सर्वो चीज जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आपको जिसके बारे में सोच कर ही गूज़बम्स आते हैं, आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में सोचने मात्र से ही आपको अच्छा फील होता है, ऐसी चीज़ों के बारे में सीखना, ऐसी चीज़ों के बारे में जानना, अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी लाइफ में आ रही चीज़ों को जानना, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में समझना, ये सब कुछ सीखना होता है। और यही एक ऐसी चीज़ होती है सीखना जिससे कभी ये लगता नहीं कि मन थक गया है, अब और नहीं सीखेंगे, बस हो गया। या कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई डर है, अरे सीख रहे हैं उसका डर है। या कभी कोई पछतावा नहीं होता कि अरे यार बिला वजह सीख लिया है। तो सीखने का मतलब यहाँ पे है कि आपको जो कोई चीज़ बेहतर लगती है, जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ को बदलने वाली है, वही आपको आगे ले जाने वाली है, वही आपको बेहतर बनाने वाली है। और हाँ, हमेशा सुनी सुनाई बातों में रहना ठीक नहीं होता है हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें इतनी कॉमन हो जाती है, किसी ने अगर बहुत नाउम्मीदी से कही है तो बातें पूरे में फैल जाती है, उसको सच मान लिया जाता है। अब जैसे कोई मान लीजिए सैड है और उससे अब इस वक्त आप बात करेंगे तो वो ऐसी ही बात करने वाला है जो कि काफ़ी सैड सैड होगी, उसको हर चीज़ बताना उसका होगा कि कोई भी चीज़ सही नहीं होती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और कोई इस वक्त अच्छे मूड में है तो वो कैसी बात बताएगा, अरे यार मैंने भी किया, देखो हो गया, जस्ट देखो अभी मिला है। तो ये मूड की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है। तो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल रहे, सब पे लागू हो, हर वक्त लागू हो। इसीलिए कहते हैं कि अपनी चीज़ों को आप अपनी तरह समझिए, ताकि इसके चांसेस कम रहे कि आप मिसगाइडेड हो जाएं, आप राह भटक जाएं। तो इसलिए हर बात को, हर थॉट को प्रोसेस करना आपके ऊपर है, आपके पास ऐसा सेंस है, आपके पास ऐसा प्रोसेस करने का तरीका है जिससे आप अपने लिए बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और यही कह रहा आज का थॉट ऑफ द डे भी, सीखने में बड़ा मज़ा है भाई साहब, बहुत मज़ा आता है। कोई भी जब नई चीज़ सीख लेते हैं तो ऐसा लगता है सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक लाइफ में ऐड नहीं थी अब वो ऐड हो गई है। और ज़रा सोचिए ये बोरिंग सी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, जब हम चीज़ों को सीखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है हर बार कुछ नया, जहन को नया चाहिए होता है, दिमाग ऐसा डिज़ाइंड है कि उसको न्यूनेस चाहिए होती है, और उसी न्यूनेस में जो है वो हम कई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कई चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और यही चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतर होती है और ये लाइफ में बोर नहीं होने देती। तो हम लोग जो फंसे रह जाते हैं कि रोज़ रोज़ एक ही काम कर रहे, एक ही चीज़ है, उससे इतर हमारे पास नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ज़रिया बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम रोज़ सुबह उठ करके अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, जॉब पे जाने के बाद वही लैपटॉप लेकर के कुछ डेटा का हम काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है अपलोडिंग चल रही, कुछ भी ऐसा है, फिलिंग कर रहे हैं फॉर्म की, और उसके बाद फिर आ रहे हैं, फिर आ करके कुछ ऐसा घर का काम कर रहे हैं, उठा रख रहे हैं, धो रहे हैं, बना रहे हैं, और उसके बाद फिर सो जा रहे हैं। और अगर यही चीज़ निरंतर सालों साल चलती रहे, महीनों चलती रहे, तो बोरिंगनेस आ जाती ना, तभी तो कोई पूछता है क्या हाल है, हाँ ठीक ही है भाई, क्यों? क्योंकि हमने कुछ उसमें नया नहीं ऐड किया। लेकिन जैसे कुछ नया ऐड करते हैं तो सब कुछ हम काम करते हैं एज इट इज़, जैसे चलता है, लेकिन एक चीज़ उसमें ऐड हो जाती है कि वही हम खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि शाम में, दोपहर में, सुबह में या लेट नाइट जब भी हम उस चीज़ का वक्त निकालते हैं कि उस वक्त हम वो नई चीज़ सीखेंगे करेंगे, तो उस वक्त का इंतज़ार पूरे 2400 घंटा रहता है। और बाकी काम इसीलिए बहुत खुश खुश करते हैं कि भाई वो वक्त आएगा, अभी हमको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसीलिए लाइफ में कुछ न्यूनेस ज़रूरी होती है।
तो आप भी सीखते रहिए, क्योंकि इससे कभी आपका मन थकने वाला नहीं है ना पछताने वाला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आज का थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कह रहा है, आज के थॉट ऑफ द डे ने आपको क्या पैगाम दिया है, ये आप तो समझ ही गए हैं। अब समझ गए हैं तो आपका फ़र्ज़ है बताने का कि भाई आप भी बताइए कि आपको समझ में क्या आया है। तो चलिए फ़िलहाल हम आपको वक्त देते हैं कि भाई आप समझिए और उसके बाद हमको बताइए कि आखिर आपको कैसा लगा आज का ये थॉट ऑफ द डे, है ना। तो यस, हमें है इंतज़ार आपके बताए जाने का, और फिलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा शॉर्ट सा वाला म्यूज़िकल ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के उस पार वापस से हम आ रहे हैं और आने के बाद आपसे जानने वाले हैं कि ये आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए कैसा था, कैसा लग रहा है और इसको ले करके आप क्या बताने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: हाँ जी, सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरज अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और अब वक्त है, आपने जो कुछ बताया है, जो रिएक्शंस दिए हैं, जो आज आपकी मॉर्निंग रही है उसके बारे में, क्योंकि जो हमको सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, आप ही में से कुछ लोग मैसेजेस भी करते रहते हैं, तो वो मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए बताते हैं कि किसने आज क्या कुछ लिखा है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

जो मैसेजेस आए हैं उसमें सविता जी लिखती हैं, सुप्रभात सभी को, कल का लखनऊ सफर सही रहा। अरे वाह, क्या बात है। सो आप आदाब के शहर लखनऊ गई थी, बहुत बढ़िया। एंड धर्मेंद्र मोहन जी है फ्रॉम आवास विकास, हेलो माय फ्रेंड्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू धर्मेंद्र जी, स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और बहुत जोर का हंसा है आपने वैसे। ऑलराइट। आशीष जी है लखनऊ से, लिखती हैं सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। आगे आप लिखती हैं, प्यार से भरी जिंदगी मिले आपको, खुशियों से भरे पल मिले आपको, कभी किसी गम का सामना ना करना पड़े, ऐसा आने वाला एक खूबसूरत कल मिले आपको। वाओ क्या बात है, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। एंड धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, अदनान सर जी वेरी वेरी हैप्पी, गुड मॉर्निंग, भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे अकेला कर देता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार बदल जाते हैं, हर दरवाज़ा बंद होने लगता है, तब इंसान सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच ये है कि भगवान भीड़ से निकलकर अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। क्या बात है, वाओ थैंक यू सो मच टू यू, बहुत शुक्रिया। एंड हमारी प्रीति जी भी बहराइच से मौजूद हैं, सर जी प्यारा सा सुप्रभात, आपको भी प्यारा सा सुप्रभात। एंड हमारी आशु जी ने रिएक्शन दिया है आज के थॉट ऑफ द डे पर, कश्तियाँ किनारे तक पहुँचती हैं, उलझने चाहे कितनी भी हो समझदारी से ही सुलझती है, उम्मीद मन में कायम रहे तो बंद राहें भी खुलती है, वक्त चाहे जितना इम्तहान ले सब्र से ही मंजिलें मिलती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी जागो तभी सवेरा। बहुत ही प्यारा सा सुविचार, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ हमारी सविता दुबे जी ने भी इस पर कमेंट किया है, और आप लिखती हैं कि सीख की कोई उम्र नहीं होती, जब तक जियो तब तक सीखो, बहुत ही प्यारा सुविचार, मैं तो बच्ची हूँ अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे। ऑफकोर्स अगर आप बच्चे हैं तो आपको तो लाइफ टाइम पूरी लाइफ पड़ी है, और अच्छी बात है कि अगर आप हमेशा बच्चे हैं तो आपके पास हमेशा पूरी लाइफ पड़ी है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। उस्मान खान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम आरजे सर, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लिखा है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी और सुनने वाले सभी श्रोताओं को। सो ऑफकोर्स आपने हमको ट्यून कर लिया है फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। फिलहाल वक्त हो गया है आपको एक बेहतरीन से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले चलने का, काफ़ी रोमांटिक सा सॉन्ग है जिसका इंतज़ार मुझे था कि भाई मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँ, तो चलिए इस सॉन्ग को सुनिए और उसके बाद बताइए व्हाट्स योर फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं आप।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जमाना और दीवाना क्या कहेगा ये तो आप बाद में समझ ही लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मॉर्निंग शो में आरजे अदनान क्या कहने वाले हैं ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सो अब हम आपको बताने वाले हैं आपकी सिटी की अपडेट्स, यानी कि कोंडा अपडेट्स की तरफ चल रहे हैं। सो चलिए फटैक्स इस गाने को सुनते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि भाई आखिर आज सिटी अपडेट्स में आपके लिए क्या कुछ है।

हाँ जी, फिलहाल वक्त आ गया है आपको सिटी की अपडेट्स से रूबरू कराने का और बताने का कि भाई फिलहाल क्या कुछ चल रहा है आपके शहर गोंडा में। सो

अब गुंडा अपडेट्स की तरफ और बताते हैं क्या क्या अपडेट्स जो है वो आ रही है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि एक जनपद एक उत्पाद यानी OTOB योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण दाल से जुड़े आवेदकों का जो इंटरव्यू है वो 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उपायुक्त उद्योग कार्यालय में होगा। उपायुक्त उद्योग बाबू राम ने बताया है कि 10 दिन का प्रशिक्षण और उन्नत टूल किट के आवेदन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनको मूल दस्तावेजों के साथ यहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है और अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शिकायतों के निस्तारण पे लापरवाही पर जो है 31 अफसरों का एक दिन का वेतन रोके जाने को लेकर के। कहीं ना कहीं बताया गया कि जन शिकायतों के निस्तारण से 52.76% शिकायतकर्ताओं के असंतुष्ट होने की जो खबर है उसके निकलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। IGRS के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही और असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर DM ने 31 अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट सभागार में DM की अध्यक्षता में CM डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व विभाग कर करेत्तर राजस्व वसूली और कई सारे विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उस दौरान IGRS पोर्टल पर मिली शिकायतों और उसके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। इसके बाद अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और बताते हैं कि भाई अगली अपडेट जो है वो कहां से आ रही है। अगली जो अपडेट आ रही है फिलहाल राज्य स्तरीय टीम की जांच में आयुष्मान के अस्पतालों में कमियां जो मिली उसको लेकर के। आयुष्मान योजना से जुड़े 15 निजी हॉस्पिटल्स की अंतर्राज्यीय टीम ने जांच की तो कई खामियां मिली। कहीं योजना से जुड़ी हुई जानकारियां प्रदर्शित नहीं थी तो कहीं बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण और संक्रमण से बचाव के इंतजाम जो है वो अधूरे मिले। एक हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई भी अनुबंध भी नहीं था जबकि दूसरे में बेसमेंट में ऑपरेशन थिएटर और ICU चलते हुए मिले। हैरानी की बात यह कि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच की जानकारी तक नहीं थी और मरीजों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिले में शिकायत निवारण प्रबंधक का पद नवंबर 2025 से खाली ही चल रहा है। अब चलते हैं आपको ऑफकोर्स लेकर के अगली अपडेट की तरफ। आपको हम बता दें कि फिलहाल हड़ताल की वजह से बंद मिल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर भी जिले के करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बंद रहे। NHM कर्मियों की हड़ताल की वजह से टीकाकरण समेत कई काम जो है वो प्रभावित रहे हैं। CMO ने बताया है कि कई केंद्रों का निरीक्षण किया। NHM के कर्मियों की हड़ताल की वजह से सारे काम जो है ठप पड़े हैं। राधा मधुमिता सुषमा का कहना है कि आरोग्य मंदिर बंद होने से टीकाकरण को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहीं CMO ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर दुर्गुड़वा नारायणपुर मर्दन परसपुर समेत 5 केंद्रों का भ्रमण भी किया और इस दौरान केंद्र जो हैं वो फिलहाल बंद पाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। विभागीय सूत्र की अगर माने तो पंडरे कृपाल CHC में 200 वायल ARV मंगवाई गई है। मेडिकल कॉलेज में आने वाले लोगों को राहत देने की बात बताई गई है और CMS ने बताया है कि प्रधानाचार्य के लेवल से ARV की व्यवस्था जो है वो की गई है। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो है अयोध्या मार्ग से वर्मा चौराहे तक बनेगी सड़क इसको लेकर के। अयोध्या मार्ग पर पराग डेयरी के आगे बेलसर मार्ग पर मौजूद वर्मा चौराहे तक जाने वाली सड़क जो है वो 2 लेन बनने की बात आ रही है और 2 किलोमीटर 80 मीटर का लंबाई जो मार्ग है ये चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने 9,23,00,000 रुपए मंजूरी दी है। परियोजना के लिए पहली किश्त के रूप में 3,23,00,000 रुपए जारी भी कर दिए हैं। फिलहाल सड़क की चौड़ाई जो है वो 3.75 मीटर है, इसे बढ़ाकर 7 मीटर किया जाएगा। खिराभा बनघुसरा सीमा से होते हुए वर्मा चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण होना है और सहायक अभियंता ने बताया कि सड़क की चौड़ाई 7 मीटर होने से सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें मनकापुर जिलाई के बीच बनेगा 2 लेन का ROB, निविदा प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मनकापुर और झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच क्रॉसिंग संख्या 245B1 पर
दो लेन का रेल उपगारामी सेतु यानी आरओबी बनाया जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के इसके

निर्माण के लिए आपको बता दें 115 करोड़ 32 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निविदा जारी की गई है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने का वक्त दिया गया है। गोंडा गोरखपुर रेलखंड पर इस आरओबी निर्माण के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखा था। सो परियोजना के तहत रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने के साथ पहुंच गए मार्ग, आरसीसी बॉक्स और रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। सो रेलवे की तरफ से जारी निविदा में परियोजना की अनुमानित लागत 115 करोड़ 32 लाख रुपये 7,731 रुपये रखी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इसकी जानकारी भी दी है। सो ये भी ऑफ कोर्स जो अपडेट थी वो आपके गोंडा से थी। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं कि भाई अगली अपडेट आखिर कहां से आ रही है। सो आपको हम बता दें कि फिलहाल खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीद नीति में राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर के अभी जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को पत्र लिखा गया है एसोसिएशन के जरिए। सो एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक कुमार अग्रवाल और महामंत्री अतुल अग्रवाल ने बताया कि प्रति क्विंटल धान पर मिलर्स का प्रतिशत प्रतिफल जो है वो 114.065 रुपये से घट करके 75.61 रुपये रह गया है। सो विधायक ने प्रोत्साहन राशि 35 से बढ़ाकर 50 रुपये करने, हाइब्रिड धान की रिकवरी क्षतिपूर्ति 2% करने, ब्रोकन राइस का समयबद्ध उठान और बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिगर कप भी हो रहा है गोंडा में और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में एटिया थोक ने फिलहाल गोरखपुर को 110 रनों से हरा दिया है। जी हाँ, सो जिगर कप नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की चौथी रात 5 जो है रोमांचक मुकाबले खेले गए। इसमें एटिया थोक की टीम ने शानदार परफॉर्म करते हुए गोरखपुर को 110 रनों के बड़े फर्क से हराया। इस बीच जीत के साथ मेटिया थोक के अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पहला मुकाबला बांसी और एटिया थोक के बीच में खेला गया। एटिया थोक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बांसी की टीम ने 8 ओवर में 4 विकेट खोकर के 142 रन बनाए और लक्ष्य का पीछा करने उतरी एटिया थोक की टीम 6 विकेट पर 129 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में सीतापुर और गोरखपुर की टीमें आमने सामने रही। गोरखपुर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। सीतापुर की टीम 8 ओवर में 91 रन ही बना सकी। जवाब में गोरखपुर ने 5 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और 8 विकेट से जीत दर्ज की। तीसरे मुकाबले में बासी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 6 विकेट पर 104 रन बनाए। इसके अलावा आपको ले चलते हैं ऑफकोर्स अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ताइक्वांडो में जेवियर्स वॉलीबॉल में सुवंश मिलेनियम जो है वो विजेता बना हुआ है। सो आपको बता दें सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो 3 दिन का अंतर विद्यालय ताइक्वांडो वॉलीबॉल और खो खो प्रतियोगिता का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। सो कल इसका समापन हो गया है बुध को और प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंतनगर ने 11 जो है वो गोल्ड और 9 रजत और 4 कांस्य पदक जीत करके पहला नंबर हासिल किया है। वॉलीबॉल में सुवंश मिलेनियम ने नारायणा पब्लिक स्कूल को 15-11 से हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की है। वहीं खो खो में नारायणा पब्लिक स्कूल ने सेंट जेवियर्स को 19-2 से हरा करके पहला नंबर प्राप्त किया है। सो ताइक्वांडो प्रतियोगिता के आखिरी दिन सेंट जेवियर्स के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया जिसमें अंकुर आर्य, दिव्यांश गुप्ता, आशीष आर्य, अनन्या सिंह और अंशिका मौर्य ने स्वर्ण पदक जीते। आदित्य पांडे, अमन कुमार, भव्य और धुति ने रजत पदक हासिल किया है। इसके अलावा ये रही अपडेट ऑफ कोर्स आपके गोंडा की। अब बताने वाले हैं आज होने वाले इवेंट्स के बारे में। तो सुबह 11 बजे से रघुकुल विद्यापीठ में अंतर महाविद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन भी अब किया जाना है। जी हाँ, सो ये रही कुछ अपडेट्स जो कि आपके गोंडा से ही जुड़ी थी। आई होप कि भाई आप तक पहुंच गई है और जाहिर है आप तक काफ़ी सारी जानकारियां गोंडा की हमने पहुंचा दी है। सो भाई चलिए फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का, यानी अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ चलने का और बताने का कि अगला म्यूज़िकल ब्रेक क्या है। और उसके बाद जब वापस आने वाले हैं तो आने के बाद आपको ले चलने वाले हैं बहुत सारी बातों के पिटारे की तरफ, जिसमें एक हेल्थ से जुड़ी बहुत जरूरी बट बहुत छोटी जानकारी आपको हम देने वाले हैं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: नींबू पानी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बार आपने सुना है और नींबू पानी को लेकर के आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। आपको लगता है कि भाई बहुत फ़ायदेमंद है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत फ़ायदेमंद है। अब ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बात ही बात है, सच में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड अगर आपकी सुबह की आदत देखा जाए तो आपको सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी पसंद है। ऑब्वियस सी बात है, आप चाय या कॉफ़ी प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बताया जाए कि भाई अगर इसको चेंज करके कुछ हेल्दी वेल्दी डाल दिया जाए तो पक्का आप करने वाले हैं? पक्का? ऑलराइट, अगर आप करने वाले हैं तो फिर हम भी रेडी हैं आपको बताने के लिए कि भाई एक्चुअल में करना क्या है। देखिए, बहुत देर हो जाती है चीज़ों को समझते समझते, उससे कोई मतलब होता नहीं है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही समझ लिया जाए तो शायद चीज़ें थोड़ा सा आसान होती है। और ऐसा कैसे समझा जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये ज़्यादा अच्छा होता है कि भाई हम आपको बता दें पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में उन चीज़ों से बचाव हो सके। और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि ख़ुद को भी समझाता रहता हूँ कि भाई इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान है। क्योंकि हमको अगर पहले पता है और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वो हमारी प्रॉब्लम है, फिर वो हम जो है वो दिक्कत कर रहे हैं अपने ही लिए। और ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अपना ये दिक्कत करना मज़ेदार होता है ना। तो चलिए, आपको हम बताने वाले हैं ऐसी ही एक छोटी सी लेकिन ज़रूरी बात के बारे में, और वो है नींबू पानी चाय और कॉफ़ी के बारे में। अब आप सोचेंगे भाई इसमें क्या होने वाला है आज नया, तो चलिए सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा क्या है नया।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो बिल्कुल अब आपको ले चल रहे हैं ऑफ कोर्स आपकी हेल्दी वेल्दी एंड बिल्कुल डिसेंट लाइफ की तरफ। सो आपको चाहे कॉफ़ी जो अगर मैं कहूँ कि भाई इसको छोड़िए और सुबह सुबह गुनगुना पानी नींबू के साथ में लीजिए। अब आप कहेंगे ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई चाय कॉफ़ी सुबह सुबह छोड़ करके नींबू पानी लिया जाए। अजी एकदम सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, पहले अगर आपने गुनगुने पानी के साथ नींबू पानी ले लिया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो क्या क्या फ़ायदा है चलिए हम आपको बताते हैं। अब इसको लेने से होता है क्या है कि बॉडी में जो पानी की कमी है वो दूर करने में मदद मिलती है इससे, अगर हम सुबह नींबू और पानी लेते हैं। दूसरा क्या है कि पाचन को सपोर्ट कर सकता है, ये आपके डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है। एंड डाइजेशन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको बताने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। सो कुछ लोगों को कब्ज़ भी रहता है, तो ये नींबू और पानी ये लेते हैं अगर सुबह सुबह खाली पेट में तो ये इसके राहत भी मिल जाती है ऑफकोर्स नींबू पानी से। और दिन की शुरुआत जो है वो ताजगी के साथ करने का ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि भाई एक अच्छी शुरुआत सुबह सुबह की हो जाए, तो आप क्या है नींबू पानी से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ ये डाइजेशन के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि आपकी इम्यूनिटी और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके लिए हम बहुत महंगी महंगी क्रीम्स या ब्यूटी पार्लर में जा कर के ट्रीटमेंट्स लेते हैं। सो नींबू में जो मौजूद विटामिन सी होता है वो इम्यूनिटी के जो सामान्य कामकाज है इसमें मदद करता है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में बहुत अहम भूमिका भी निभाता है जो स्किन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो नींबू पानी में मौजूद जो सिट्रेट किडनी स्टोन में कुछ तरह के बचाव में मदद कर सकता है। जी हाँ, इसमें जो मौजूद सिट्रेट है वो किडनी स्टोन के कुछ तरह के जो प्रकार हैं उसमें बचाव में मदद कर सकता है। सो क्या नींबू पानी से तेज़ी से घटता है वज़न, एक सवाल तो ये भी आता है क्योंकि दुनिया भर में तो हमने यही सुना है कि भाई नींबू पानी से तेज़ी से वज़न घटता है। तो आज हम आपको सच बताने वाले हैं। देखिए, नींबू पानी सीधे बॉडी पर फैट नहीं पिघलाता, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि बिना चीनी वाला नींबू पानी हाई कैलोरी ड्रिंक्स की जगह ले सकता है, यानी अगर बिना चीनी वाला आपने नींबू पानी लिया है तो वो हाई कैलोरी ड्रिंक्स की जगह पे ले सकता है। दूसरा, वज़न घटाने के लिए बैलेंस्ड डाइट होनी ज़रूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। अगर आप वज़न ही घटाना चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड लेना होगा अपनी डाइट यानी खाना पीना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा यानी ऑफ कोर्स हफ्ते के 6 दिन तो कम से कम आपको करना होगा एक दिन रेस्ट करके, और इसके अलावा आपको नींद लेना प्रॉपर ज़रूरी होगा अगर आप वज़न घटाने के बारे में सोच रहे हैं। सो नींबू पानी का सही तरीका क्या है? अभी तक आप कहेंगे कि इसमें सही तरीका क्या, गुनगुना किया पानी उसमें डाला नींबू और घटक गए? नहीं, दरअसल एक गिलास में आधा नींबू जो है वो निचोड़ना होता है, ये बेहतर होता है एक तरह से अगर हम अनुपात की बात करें तो। चाहे गुनगुना पानी हो या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, इसको भी आप दोनों ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुनगुना ही हो, गुनगुना है तो आपके कई चीज़ों के लिए और भी फायदेमंद हो जाता है, और अगर नॉर्मल है तो भी आपके लिए फ़ायदा तो पहुँचाने ही वाला है। सो शहद या चीनी मिलाना हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आप शहद मिलाइए चीनी मिलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको एसिडिटी बढ़ती है तो खाली पेट से बचना होता है। अगर एसिडिटी आपको बढ़ती है तो खाली पेट अगर आप नींबू पानी लेते हैं तो उससे आप बचिए, आप कुछ और लेकर के फिर आप बाद में कुछ वक्त बाद नींबू पानी ले सकते हैं, इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक राहत रहेगी। इसके अलावा दांतों की एनेमल जो सुरक्षा के लिए है, इसके इस्तेमाल के बाद सादे पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। मान लीजिए भाई नींबू खाया है, खट्टाहट है आपके दांतों पे, तो कुछ वक्त बाद सादे पानी से आप कुल्ला भी कर सकते हैं जिससे कि जो एनेमल परत है आपके दांत की वो सुरक्षित रहे, उसको कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर हमने महसूस किया है कि भाई नींबू पानी लेने के बाद जो है वो थोड़ा सा खट्टापन हमारे दांतों पर भी रह जाता है, और कहीं ना कहीं जो एनेमल परत होती है वो हमारे दांतों की सुरक्षा करती है, सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो अगर इसको आप लेते हैं और आपको लगता है कुछ खट्टापन है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप सादे पानी से कुल्ला भी कर सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड आई होप कि अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, बता सकते हैं कि भाई आप भी नींबू पानी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो कब से ले रहे हैं। फिलहाल हमारी गीता श्रीवास्तव जी ने कमेंट कर दिया, सर मैं पीती हूँ पर जब कभी
नींबू नहीं होता है तो गुनगुना पानी ही पी लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस दिन नींबू नहीं उस दिन पानी ही ना पिया जाए। तो गुनगुना पानी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है और अगर आप सुबह के वक्त इसको लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो राजा वाला फील करने वाले हैं। आप कहेंगे राजा वाला कैसे भाई, जब पेट साफ रहेगा आपको अच्छा महसूस होगा तो आप सब कुछ बहुत अच्छा देखने समझने और जानने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो यकीन मानिए एक बार आप करके देखिए, बहुत फ़ायदे होने वाला और एक हफ्ते के भीतर आपको जो है इसका साफ साफ फ़ायदा सामने से नज़र आने वाला है। तो यही है आज के इस हेल्दी वेल्दी वाली टिप्स का राज कि आपको एक हफ्ते के बाद इतना बेहतरीन महसूस होगा कि आप कहेंगे वाह, इस चीज़ को अगर पहले ही कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। और सबसे अच्छी बात है कि आसान बहुत है, पानी गुनगुना करने में मुश्किल से आँच पर अगर आप दो मिनट देख करके रखते हैं तो सच में दो मिनट, और हल्का सा नींबू अगर है, नहीं है तो गुनगुना पानी भी चलेगा। कई लोग उसके साथ में मेथी लेते हैं, कई लोग जो है वो मंगरेल लेते हैं काली वाली, और कुछ लोग होते हैं जो तुलसी का पत्ता चबा के खा लेते हैं, नीम चबाते हैं या फिर करी पत्ता खा लेते हैं, तो ये तो आपके ऊपर है। खैर ये ज़रूरी है कि गुनगुना पानी अगर है तो सुबह खाली पेट चाय, जिससे कि आपको इसका काफ़ी सारा फ़ायदा ज़रूर मिले। फिलहाल आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि भाई आप कब से ले रहे हैं और आपका तरीका क्या है, गुनगुने पानी के साथ आखिर आप क्या लेते हैं, हम आपकी बातों को ज़रूर जानना चाहेंगे।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भाई, अब ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको पेंशन का फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, आपको ध्यान देना है, नहीं तो बंद हो सकती है आपकी पेंशन, क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा है। अब आप सोचेंगे पेंशन से वक्त का क्या लेना देना है। भाई, लेना देना तो सीधा सीधा है, क्या है पूरी तरह से एक्सप्लेन हम करते हैं और आपको साथ ही बताते हैं कि किस तरह से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी पेंशन को जारी रखना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है आखिर।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो आपको ध्यान देना है कि 30 नवंबर तक डिजिटल या फिर सीधे विजिट करके हर हाल में पूरा कर लेना है कुछ काम, वरना आपकी अटक सकती है पेंशन। क्यों? डिजिटल सबमिशन जरूरी नहीं है, पेंशन भोगी चाहे तो बैंक जाकर भी जमा कर सकते हैं प्रमाण पत्र। सो आपको हम बता दें, देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए हर साल एक बेहद जरूरी प्रोसेस होता है, उसका वक्त आ गया है। अगर आपने वक्त रहते अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग के नियम के हिसाब से इसके लिए अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से तारीखें तय की गई है। सो जीवन प्रमाण एक सरकारी डिजिटल सुविधा है जो पेंशन भोगियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो परमिशन है वो देती है। इससे बुजुर्गों को बार बार बैंक शाखाओं के चक्कर काटने से राहत मिलती है। सो आपको बता दें कि देखिए, एज के हिसाब से जो है इसमें टाइमलाइन होता है। सो 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की खिड़की जो है 1 अक्टूबर से खुल चुकी है। दूसरा ये है कि 80 साल से कम उम्र के बाकी सभी पेंशन भोगियों का 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सभी पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर डिसाइड की गई है। सो आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए भाई कोई बहुत बुज़ुर्ग हैं आपके घर के और उनको पेंशन का फ़ायदा मिलता है और नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर आप क्या करने वाले हैं? सो आपको बता दें, घर बैठे भी हो सकता है काम। जी हाँ, कैसे? वही तो बताने वाले हैं। सो अब बुज़ुर्गों को लंबी लाइन्स में लगने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट की जीवन प्रमाण सुविधा के ज़रिए आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सो ज़रूरी चीज़ें क्या है? आपका आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जो जानकारी है वो। इन सारी चीज़ों के सहारे आप घर बैठे जीवन प्रमाण सुविधा के ज़रिए अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ऑफकोर्स बनवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं आप अपना प्रमाण पत्र। जी हाँ, अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण फेस ऐप और आधार फेस आरडी ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिए। ऐप खोल करके ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा करिए। पेंशन भोगी का जो आधार नंबर है, पीपीओ नंबर है और बाकी मांगी गई जानकारी आपको दर्ज करना है। फ़ोन के फ्रंट कैमरे से पेंशन भोगी के चेहरे की तस्वीर लेना है। प्रक्रिया पूरी होने पर स्क्रीन पर एक यूनिक प्रमाण आईडी मिलेगी जिसे सुरक्षित रख लेना है। सो स्मार्टफोन पर ना होने पर क्या करें? अगर मान लिया आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और आप जा भी नहीं सकते, तो ऐसे में नज़दीकी बैंक शाखा या जन सेवा केंद्र जा कर के फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर बैठे सेवा के ज़रिए बैंक कर्मचारी को घर बुला करके सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। अपनी संबंधित बैंक शाखा में जा कर के जो फॉर्म है और जीवन प्रमाण पत्र है उसको आप जमा कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है वो है jeevanpraman.gov.in, jeevanpraman.gov.in, jeevanpraman.gov.in पर जा कर के जो आप अप्लाई है उसको कर सकते हैं। सो इस तरह से आपकी पेंशन भी नहीं रुकेगी और आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी, उसका फ़ायदा आपको पहुंचता रहेगा। क्योंकि यही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार डेट्स निकल जाती है और व्यस्तता के चलते लोग करा नहीं पाते और उसके बाद फिर पेंशन में प्रॉब्लम आती है और उसके बाद फिर से घर का बजट बिगड़ता है, फिर से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जा कर के चीज़ें नॉर्मल होती है। वैसे समय रहते अगर इसको करा लिया जाए तो इन सारी चीज़ों के झंझट से बचा जा सकता है। हाँ, पहले कुछ समय ज़रूर लग जाएगा आपको समझने में और करने में, उसके बाद आप इजीली इसको कर देंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बताया जैसा कि 80 साल से ऊपर वाले जो हैं हमारे अति वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए विंडो 1 अक्टूबर से खुल चुकी है, जबकि 80 साल के जो नीचे वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर यानी एक महीने का पूरा टाइम होगा, उसमें वो अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जैसा कि हर साल प्रोसेस होता है, उनको ये जाके बताना होता है कि वो जीवित हैं और उनकी पेंशन आती रहनी चाहिए।
सो ये प्रोसेस सभी के साथ होता है एंड आई होप भी आप इसको जानते हो, और ऐसे लोगों को ज़रूर गाइड करिए अगर आपके घर में हो या आपके पड़ोस में या पहचान में, तो उनसे कन्फर्मेशन ज़रूर ले लीजिए कि भाई उन्होंने अपना ये सर्टिफिकेट इस

बहुत बेहतरीन होती है। सो इसी से सब कुछ बदलाव होता है और इसी से सारा मज़ा भी आता है लाइफ का। सो आई होप कि भाई आपने अब पेंशन से जुड़ी हुई बात समझ ली है, और आपके घर में अगर आपके दादाजी पापा जी कोई भी ऐसे हैं पेंशन जिनको मिलती है, तो उनको इस बात की जानकारी देना और साथ ही हेल्प करना है ताकि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस साल का प्रस्तुत कर सकें। क्या बात है। सो फिलहाल एक बार वापस से आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और ऑफ कोर्स अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाने के बाद, वापस से आने के बाद हमारे पास काफ़ी कुछ है जो हम आपको बताने वाले हैं। सो इसलिए आपको जाना नहीं है कहीं, बल्कि बने रहना है अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, अपने रेडियो जॉक आरजे अदनान के साथ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की तरफ, एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

सो क्या कभी आपने सुना है ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है? स्पॉटलाइट इफेक्ट से कहीं सुनने के बाद आपको ऐसा तो नहीं जहन में आ रहा है कि भाई कोई लाइट पड़ती होगी स्पॉट पर और उसके बाद सबका फोकस हो जाता होगा? कुछ कुछ तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, लेकिन दरअसल ये हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मनुष्यों के मनोविज्ञान से। तो आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमने इसका जिक्र किया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज इसी स्पॉटलाइट इफेक्ट से हम सभी लोग अफेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं इसी का शिकार बने जा रहे हैं। हमको पता हो या ना पता हो, लेकिन हम जाने अनजाने में यही इफेक्ट के अफेक्टेड हैं। अब आप सोचेंगे आखिर क्या है इसमें, तो चलिए आकर के आपको बताते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं और जिसको लेकर के मुझे लगता है कि भाई बात तो होनी ही चाहिए, साथ ही हमको समझना भी चाहिए कि आखिर ऐसी चीज़ें हमारे साथ में क्यों होती है, आखिर ये स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है और किस तरह से हमें हमारी लाइफ में अफेक्टेड करता है और किस तरह से हम इससे अपने को खुद को बचा सकते हैं। ये सब कुछ बताने वाला है इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार वापस से आ करके। तो फिलहाल बने रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके गुंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो भाई चलिए आपको ले चलते हैं अब उस स्पॉटलाइट इफेक्ट की तरफ जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि भाई इसके शिकार हम सभी लोग हैं। जाने अनजाने स्पॉटलाइट इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में काम करता है और इससे हम अपनी लाइफ की न जाने कितनी सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, लिटरली स्पॉइल कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है इस इफेक्ट में, और आखिर ऐसा इफेक्ट है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि एक्सपेरिमेंट की है उसके बारे में। शायद आपको पता चल जाएगा कि स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ भाई, तो अब जानने वाले हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ये हमारी ज़िंदगी में काम करता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, और इससे अफेक्टेड हम सभी लोग होते हैं और इससे हमारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं, लाइफ की लिटरली स्पॉइल हो जाती है। सो एक छोटी सी स्टोरी है जो कि एक्सपेरिमेंट की है, इसी के ज़रिए हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। दरअसल एक बार की बात है, एक गिरगिटान था, और गिरगिटान का काम क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छे से, कि रंग बदलना। और इसी को लेकर के हम लोग ताना भी एक दूसरे को मारते हैं, जिसके डुअल फेस देख लेते हैं, जिसका लगता है कि भाई इसकी बात का भरोसा ही नहीं है, राइट। सो गिरगिटान के माथे पर एक वैज्ञानिक ने उसको ट्रैक करने के लिए एक हल्का गुलाबी रंग का एक स्पॉट लगाया उसके माथे पर, इसीलिए ताकि वो पहचान सके कि भाई कौन से गिरगिटान की हम गतिविधियों को देख रहे हैं और उस पर काम कर सके। कुछ वक्त बाद क्या है, गिरगिटान जब पानी पीने गया तो उसको पानी में अपने माथे के ऊपर वो छोटा सा स्पॉट नज़र आया, जिसको देख करके वो डर गया और उसको लगा कि शायद ये बहुत बड़ा स्पॉट है जो उसके माथे पर है। इस चक्कर में वो पेड़ पर जब चढ़ा तो उसको लगा कि भाई सारे पक्षी जो हैं वो उसी को देख रहे हैं, और घास में मौजूद जितने कीड़े मकौड़े हैं वो सब उसको देख रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। और इस तरह से वो आगे बढ़ा और उसके बाद उसको डर लगने लगा कि ये स्पॉट जो है वो नज़र आ रहा है सभी को, और इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा रंग बदलने लगा। चूँकि रंग बदलता था तो भी वो गुलाबी रंग तो वहीं का वहीं रहता था, तो उसको ये करते करते इतना ज़्यादा उसने अपने रंग को बदला कि उसकी जो सेल्स थे रंग बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई, और आखिर में वो रंग बदल पाने पर भी नाकाम रहा। और आखिर में क्या हुआ कि उसने शिकार करना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में आ गया था, और एक डाल से गिर करके नीचे ख़त्म हो जाता है। वैज्ञानिक वापस से आता है, वैज्ञानिक के लिए बहुत छोटी सी बात होती है उसका शरीर, क्योंकि उसके लिए तो भाई बहुत छोटी सी बात है, वो तो उस पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन दरअसल इससे एक बात निकल के ये सामने आई कि कहीं ना कहीं गिरगिटान की तरह हम भी अपनी लाइफ में वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर हमारे सीनियर ने, हमारे बॉस ने अगर कोई भी चीज़ टोक दी है, 3 सेकंड के लिए कोई चीज़ बोल दी कि ये चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं थी, इसको ऐसे करना है, तो हमको लगता है हमारे पूरे काम को, हमारे पूरे करियर को जज कर लिया। ठीक उसी तरह अगर कोई फ्रेंड हमारी बात कर देता है, कोई समझा देता है, तो हमको लगता है कि शायद हमको जज कर लिया गया है ना। हम यानी बहुत छोटी छोटी सी जो बात होती है उसको लेकर के इतना उसको बड़ा बना देते हैं, और हमको लगता है कि सारी दुनिया वाले हम ही को देख रहे हैं। आप किसी दिन कोई कपड़ा पहन के जाइए और आपको लगे उस पर थोड़ा सा दाग है, तो न जाने क्यों आपको यही महसूस होगा कि हर कोई आपके दाग को देख रहा है। आपके चेहरे पे कोई स्पॉट है तो आपको लगेगा हर कोई आपके चेहरे के उस स्पॉट को देख रहा है। यानी हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इतनी बड़ी बना देते हैं खुद ही सोच सोच करके, हालांकि दुनिया के पास इतना वक्त ही नहीं है। हर कोई अपने काम में, हर कोई अपनी परेशानियों में ही खुद ही फंसा हुआ है, इतना किसी के पास वक्त नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सब हमारी उसी कमी की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी सोशल मीडिया पर अपनी कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं और बैकग्राउंड में से ऐसी चीज़ें हटाना भूल जाते हैं जो अननेसेसरी रखी थी, तो हमको लगता है कि जो भी देख रहा है उसको ज़रूर वॉच कर रहा होगा और सभी का ध्यान उस पर ही जाएगा और लोग हंस रहे होंगे, राइट। और ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है, ये आप सुनते जा रहे हैं, आप समझते भी जा रहे हैं कि हाँ सच में आपके साथ भी ऐसा होता है। सो इसी को बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब आपको पता चला ना कि स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से हमारे जीवन में ये काम करता है। सो ज़रूर इससे बचना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी सी चीज़ है हमें इतना ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, हम उसको इतना बड़ा खुद से बना ले जाते हैं कि हमारे लिए लगता है कि सब कुछ अब यही हो गया। हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और हम खुद पर ही शक करने लग जाते हैं। चीज़ बहुत छोटी थी लेकिन बड़ा हमने खुद बना लिया। सो यही है स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब आप ज़रा अपने जीवन में रुक करके देखिए कि किन किन चीज़ों का आपने फ़िलहाल स्पॉटलाइट इफेक्ट में खुद को ढाल लिया है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बड़ी हो करके दिखाई दे रही हैं और जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। सोचिए सोचिए और सोच कर बताइए।

0: है जुनू सा सीने में, है जुनू सा जीने में, और है जुनू कुछ आपके भेजे हुए को आप सभी तक पहुंचाने में। जी हाँ, कुछ कंटेंट्स आ गए हैं हमारे पास में मॉर्निंग वाले शो के। सो चलिए भाई, क्या लिखा है आपने ये हम तक आप पहुंचा देते हैं, और साथ ही साथ सुनने के बाद हम बताने वाले हैं कि भाई किसने क्या ऑफकोर्स इमोशंस को बयां किया। ये तो खैर आप बताने वाले हैं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधे कंटेंट्स की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

कभी किसी ने किसी से पूछा कि बहुत लिखते हो, खाली हो क्या? तो उसने जवाब दिया कि बहुत भरा हुआ हूं, इसलिए लिखता हूं ताकि खाली हो सकूं। फिलहाल काफी कुछ लिखा है आपने और हम तक पहुंचाया है। सबसे पहला जो मैसेज आया है गुंजन जौहरी जी का, फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप लिखती हैं, आंसुओं ने पूछ ही लिया क्या मिला मुझे चुनकर, जिसे बचाने में उम्र गुजरी वही अरमान रह गया। रूह ने चाहा था कि सबके दर्द अपने नाम कर लूं, पर बचाते बचाते खुद का ही वजूद बेजुबान रह गया। कुछ फैसले होते हैं जो लफ्जों में ढलते नहीं, दिल तो जिंदा रह गया मगर सुकून बेजान रह गया। जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था खुद को चुनना, जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था खुद को चुनना, सबको अपना मानते मानते खुद से ही फासला रह गया। न किसी से कोई शिकवा न कोई मुकद्दर से गिला, न किसी से कोई शिकवा न मुकद्दर से कोई गिला, बस एक टूटा हुआ सपना और मेरी रूह में सवार रह गया। मैंने चाहा था कि हर रिश्ता मेरी सांसों में रहे, पर जिसे भी थामना चाहा वही हाथों से फिसल कर चला गया। अब न मंजिल की तमन्ना न किसी राह का गुमा, अब न मंजिल की तमन्ना न किसी राह का गुमा, जिंदगी एक इंतहा थी और मेरा खामोश जवाब रह गया। माय गॉड, किस फीलिंग के साथ कितना आपने बयां किया है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा डीप है। थैंक यू सो मच टू यू गुंजन जौहरी जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद मिस्टर आकाश नवदीप वेस्ट बंगाल से भेजते हैं, माँ दुर्गा के महिषासुर वध पर जश्न मनाता है पूरा देश, मगर अपने भीतर पलते अहंकार का हिसाब कौन करेगा? मंदिरों में शक्ति की आराधना करता है समाज, मगर कमजोरों के पक्ष में खड़े होकर अन्याय का हिसाब कौन करेगा? और कहीं लोभ, कहीं नफरत, कहीं सत्ता का नशा जब इंसान को ही असुर बनाता है, तब चकनाचूर होती है इंसानियत। कि कहीं लोभ, कहीं नफरत, कहीं सत्ता का नशा जब इंसान को ही असुर बनाता है, तब चकनाचूर होती है इंसानियत। अधर्म का संहार तो हर साल करती है माँ, मगर अपने भीतर के महिषासुर से युद्ध कर खुद को विजयी कौन करेगा? माय गॉड, क्या बात है। मतलब आपने बिल्कुल निकाल करके रख दिया है मिस्टर आकाश, और आपने लिखा भी है, सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल। मतलब सच में हमारे सामने ही अन्याय हो रहा होता है, लेकिन हम समझते हैं ये समाज के बड़े लोग हैं, बड़े बंगले हैं, बड़ी सत्ता है इनके पास, इनकी आगे कौन बोलेगा। कई चीज़ें अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे होते हैं और हमारे मुंह से चू नहीं निकलती, लेकिन हम सिंबॉलिकली महिषासुर के मां को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन अपने अंदर के महिषासुर जो कि अन्याय को देख रहा है खड़ा होकर के, लेकिन न्याय के लिए नहीं कर सक रहा है, सोचना है जरा उसके बारे में। कितनी प्यारी बात लिखी है आपने, थैंक यू सो मच टू यू। नरेंद्र छाव जी लिखते हैं कि हर्फ दर हर्फ जोड़ के अल्फाज लिख लेता था, रो गए इश्क में रहा ना मैं किसी काम का, मगरूर है वो अपनी खूबसूरती पे इस कदर, आंखें मिलाने के बाद गले से लगाया नहीं। उफ क्या बात है, ये जुदाई का गम लिखा है नरेंद्र छाव जी ने। इसके बाद यामिनी चौहान जी लिखती हैं, मुझे तुमसे अपने वक्त का हिसाब नहीं चाहिए, मैंने जो पल तुम्हें दिए वो मेरी मोहब्बत थे, मगर मेरे हिस्से का वो समय लौटा दो जो तुम्हारे साथ रहते हुए मेरा हुआ करता था, वो शाम जब खामोशी भी बातें करती थी, वो रात जब नींद से ज़्यादा तुम प्यारे थे, मैं आज भी वहीं कहीं ठहरी हुई हूँ जहाँ हम दो थे और दुनिया बहुत दूर थी, अब वक्त तो है मेरे पास बस वो वक्त नहीं जिसमें तुम थे। वाओ क्या बात है, बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ लिखा है यामिनी चौहान जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि नदी को बोतल में भरने चले हैं, लोग किरदारों को तोलने चले हैं, हर एक अपना बर्तन अपने संग लाए हैं, हर एक अपने नज़रिए में तराजू बनाए हैं, सच को भी अपनी सहूलियत में ढालेंगे, जो ना भाए उसे झूठा बता डालेंगे, किसी की गहराई कौन नाप पाएगा,
हर कोई बस अपना पैमाना लगाएगा। नदी तो बहती रहेगी अपनी ही चाल, किरदार बचेंगे या बस रह जाएगा सवाल। उफ, एक से बढ़कर एक लगातार हमको मिलते जा रहे हैं कंटेंट्स आपकी तरफ से। और आज का लास्ट है पुनीता सिंह जी की तरफ से। आप लिखती हैं, जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर एक इम्तहां है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर एक इम्तहां है। कल कौन कहां होगा इसका किसको यहां ज्ञान है। हंस लो, मुस्कुरा लो, गले लगा लो और अपनों को आज ही। हंस लो, मुस्कुरा लो, गले लगा लो अपनों को आज ही, क्योंकि ये चार दिन की जिंदगी तो बस एक मेहमान है। वाओ, क्या बात है। इस खूबसूरत से मैसेज के साथ मुझे लगता है आज विदा भी ले लेना चाहिए कि भाई ये चार दिन की जिंदगी एक मेहमान है, तो हंस लीजिए, मुस्कुरा लिए और अपनों को गले लगा लीजिए। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए अब इजाजत, क्योंकि आपसे विदा का वक्त आ गया। लेकिन उससे पहले हम बता दें, सविता दुबे जी ने बताया सभी की लेखनी बहुत प्यारी बहुत खूब। और प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है सभी की पंक्तियां औसम। और साथ ही लिखा है गुंजन जी वेरी हार्ड टचिंग पंक्तियां। और मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। और इसके अलावा प्रीति जी को इन्फॉर्मेशन स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच टू यू। हमारी रेखा कुशवाहा जी भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, जय माता दी एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। आपको भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी, आपको गाना पसंद आया, थैंक यू। हमारी गीता श्रीवास्तव जी का है, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिस मोहब्बत के साथ में जुड़े और सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से सुना। हमारी आशु जी ने भी कहा कि सभी लोगों की कविताएं एक से बढ़कर एक, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू सो मच टू यू। क्योंकि हमने सही कहा कि लोग जो है वो ये समझते हैं, जो समझने वाले हैं, कि अल्फाज नहीं लिखा गया है, जज्बात है। ये कोई स्किल से ना नापा जाए, ये कोई शौक से ना नापा जाए, बल्कि उन जज्बातों का बयां है जो अंदर उमड़ते घुमड़ते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9281 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
6: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
7: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
6: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
7: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
6: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की माला पिरोई गई है और हमारी प्यारी किरण दी की आवाज में है, जिसका साथ देने आ रही हैं खुशबू जी, जिमी जी, समता जी और स्वयं किरण जी। हमारी इस बार के गांव के गूंज का जो एपिसोड का नाम है वो है गोंडा। आइए तो चले हम गोंडा की गलियों का भ्रमण करेंगे सॉन्ग के साथ में।
9: श्वेता, खुशी, जिम्मी, कहाँ हो सब? अरे इतना सन्नाटा क्यों है और सबके चेहरे उतरे हैं, क्या हुआ? लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, धनिया की चटनी भी है।
10: कोई बात नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं।
11: हम लोग दुखी हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि पकौड़े नहीं खाएंगे।
5: जब इतनी गर्मी पड़ती थी तब हम लोग गांव जाते थे। आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो लगा टेढ़ी नदी में बोटिंग करेंगे तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
11: अब ना किरण दीदी का गाना सुन पाएंगे। हफ्ते में एक ही दिन तो होता है जब हम फ्री होते हैं। अब बताइए कैसे लोकगीत सुने हम
10: सब। अपने अपने मोबाइल यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ। सब हमारा हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो। कोई चैटिंग मत करना, बस चुपचाप चलो।
12: कहाँ ले चल रही है भाई, हम लोग का किडनैप तो नहीं हो जाएगा?
5: बताइए ना किरण दीदी।
11: वहाँ हम सब बारिश में भीगने चल रहे हैं। मजा आ गया, कितनी तेज बारिश हो रही है।
10: देखो देखो समता छिप रही है, उसे बारिश से डर लगता है। सब पकड़ के ले आओ उसे।

0: पहली बार बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बारिश हो रही है, गाने पर डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: सच में अनोखा अनुभव है, इतनी तपती गर्मी के बाद ठंडी फुहार, बहुत मजा आ रहा है। किरण दी, एक और लोकगीत हो जाए।

0: चलो पानी रुक गया है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो और देखो टेबल पर कितनी सारी चीजें सजा दी है मालती ने खाने के लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
1: नमकीन पूड़ी, अदरक तुलसी की चाय, लहसुन का अचार, आम का गलका, मुंह में पानी आ रहा है। अरे मेरी प्लेट क्यों हटा रहे हो तुम लोग?
2: पहले दलिया बैरन पिया का गाना, फिर कोई और सुनाइएगा।

0: या लीजिए गर्मा गर्म पूरी, आज का दिन तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे मालती, हाथ में तुमने गुदना गुदवाया है क्या?
1: ये तो बहुत पेनफुल होता है मालती, ध्यान रखना, भीगने मत देना हाथ को, इन्फेक्शन हो सकता है।
0: हमें तो देख कर दर्द हो रहा है, मालती को कितना दर्द हुआ होगा, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
2: अरे गुदवाई लो हो गुदनवा, गुदवाई लो।

0: हर चीज पर आपके पास लोकगीत होता है, कानों को कितने मीठे लगते हैं।
1: आप लोग हमको गोंडा का बाजार घुमा देंगी? बहादुर की लड़की आई है शादी के बाद पहली बार, उसको मुझे कुछ देना था तो सोचा वहाँ से कुछ खरीद लूं।
2: चलो हम चलते हैं गोंडा के चौक बाजार में, कपड़े की चूड़ी की बहुत सी दुकान है।
0: पर सब ई रिक्शा से चलेंगे, पहले किरण दी गाने के जरिए गोंडा बाजार घुमाएंगी, फिर शॉप पर लेकर चलेंगी।

0: हम लोग बाजार जा रहे हैं मालती, तुम आराम करना और अपने हाथ का ध्यान रखना।
1: खुशबू, गोंडा में दो बाजार हैं, एक रानी बाजार और दूसरा चौक बाजार, दोनों बहुत पुराने हैं।
2: अब तो दुखरनाथ मंदिर से GGIC तक कई ब्रांडेड शॉप खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं।
3: लीजिए, ई रिक्शा आ गया, चलो सब लोग वहाँ। 89.6 FM पर गांव की गूंज चल रहा है। समता मैम, आपका फेवरेट लोकगीत।

0: यह रघुनंद मार्केट है, इसके बाद पीपल चौराहा, यहाँ से सब पैदल चलते हैं, तभी बाजार का मजा आएगा।
1: लौटते समय जय माता दी हॉट एंड कूल पॉइंट पर कॉफी पियेंगे, अभी तो पेट बहुत भरा है।
2: जगत, झाबड़ा, सेठ, लक्ष्मी, यह सब बहुत पुरानी शॉप है, चलिए चूड़ी वाली गली में चलते हैं।
3: ये गली तो कितनी पतली और कितनी सकरी है, और इतनी सारी शॉप्स। ये तो लखनऊ के अमीनाबाद से भी पतली गलियां हैं।
0: हाँ, चूड़ी की शॉप, लेस बहुत सुंदर मिलती है, यहाँ शादी का हर सामान मिलता है, और इन शॉप में बर्थडे पार्टी का सामान भी है, और यह शॉप है जहाँ कॉस्मेटिक सामान है।
1: खुशबू, यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, पूरी गली में ज्ञानस्थली रेडियो सब सुन रहे हैं। हाँ भाई, यह वही किरण दीदी है जिनका गाना आप सभी सुन रहे हैं।

0: चूड़ी वाली गली को घूमने में तो लगता है पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, हमारे मतलब भर का सामान हो चुका है,
1: चलिए फिर वापस चलते हैं। सीधे सीधे चलिए, हम लोग फल वाली मंडी के पास निकलेंगे।
2: ये गली चार अलग अलग सड़क पर खुलती है, क्रॉस के शेप में है।
3: यहाँ सारी बुक्स स्टेशनरी की शॉप है, इसके पीछे सब्जी मंडी, चलो ई रिक्शा लो, तुम्हें राधा कुंड घुमा दे।
0: हाँ, याद आया, कृष्णा मैम ने एनएसएस की स्टूडेंट्स को भेजा था इस कुंड की सफाई के लिए।
1: अब तो यह बहुत सुंदर हो गया है, दीपावली पर दिए भी जलते हैं।
2: हेलो, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो गांधी पार्क चलते हैं। वहाँ ना एक लेडीज क्लब का प्रोग्राम्स है, जिसके लिए बुला भी रहे थे।
3: चलिए चलिए, वहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब खाने को मिलेगा, सब नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे।
1: वहाँ महात्मा गांधी की स्टैचू है, वह एरिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। क्लियर इंडिया मिशन के चलते इसे बहुत साफ कर दिया गया है।
2: जिम्मी खुशी समता, सबसे मिलो तुम लोग। रोली, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। लाओ लाओ लाओ ढोलक, बस दो मुझे दो। इस सुंदर मौसम में धमाल करते हैं।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं जब भी आती हूँ किसी भी शो में, तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि भाई जिंदगी का आनंद उठाइए। अब देखिए, जिंदगी का आनंद उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी तो भाई एक ही है और इसी जिंदगी का अगर आनंद नहीं उठाएंगे तो बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे, जब दांत टूट जाएंगे, शरीर झुक जाएगा, तब आप सोचेंगे कि भैया बहुत ज्यादा गलती कर दी जो हमने जिंदगी का आनंद नहीं लिया। और आपको पता है, जिंदगी का आनंद उठाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपका स्वस्थ रहना। और आपको कैसे स्वस्थ रहना है, आपको स्वस्थ रहने की सारी जानकारी जो है वो आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में आती है। जी हाँ, आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त RJ आयुषी लेके आपको अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम हेल्थ की कुछ बातें करते हैं, कुछ बीमारियों के बारे में आपको जागरूक करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उससे बचना है, कैसे उसको पहचानना है और आखिर वो बीमारी है क्या। हालांकि मुझे पता है कि हमारे सभी श्रोता कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, तो ये जो नहीं जानते हैं वो आज के शो को बहुत ही ध्यान से सुने और जो जानते हैं वो उससे भी ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि भैया आप लोग ना, हम इंडियंस हैं और मैं भी ये अच्छे से समझ सकती हूँ कि इंडियंस को थोड़ी जानकारी मिल जाती है ना, मुझे भी मिल जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अरे मुझे तो सब आता है, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जो हम तब भी छोड़ देते हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं लेकिन कुछ बारीक जानकारियां ऐसी भी हैं जो आपको जाननी चाहिए और वो डेफिनेटली आप नहीं ही जानते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड की, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल यही लेते हैं कि आखिर ये टाइफाइड है क्या। अब देखिए दोस्तों, टाइफाइड कोई मामूली बुखार नहीं होता, बल्कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी एक जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी। इसके पीछे दोस्तों जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है सेल्मोनेला टाइफाई। जी हाँ, ये नाम जितना स्टाइलिश लग रहा है ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में अंदर आता है, जब वो एंटर करता है, तो सबसे पहले हमारी आंत यानी कि इंटेस्टाइन को ये संक्रमित करता है और फिर धीरे धीरे अपना काम करने लगता है, यानी कि हमारे खून यानी कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता कैसे है। देखिए, इसका जवाब हम विस्तार से समझेंगे आगे कई सारे, और सबसे बड़ी बात, आज एक पूरे घंटे में टाइफाइड में बात करने वाले, तो आज तो हम इसे बहुत अच्छे से टाइम देंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसका सीधा कनेक्शन है आपके खाने पीने से और साफ सफाई से। अब देखिए भैया, बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, और बारिशों में क्या होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी गंदगी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे गली नुक्कड़ पे आपको पानी दिख जाएगा, नाले से पानी बाहर निकलता दिख जाएगा, और अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं और अगर आप रेगुलर जाते हैं सब्जी खरीदने, तो आप ये जानेंगे कि जब सब्जियां हम लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन सब्जियों पे भी मिट्टी कीचड़ कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो कैसे हम करें जो हम बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से खाना खा सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें, और उससे भी ज़रूरी बात, जो हम पे डिपेंडेंट है जैसे कि हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चे, उनका कैसे ध्यान रखें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, टाइफाइड को कई जगह मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बुखार एक निश्चित समय तक चलता है और धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, और अचानक से तेज बुखार की तरह नहीं आता ये, बल्कि पहले तो ये हल्का बुखार होता है और फिर अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये बुखार कुछ ही दिनों में 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और एक बात जो मैं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये है कि टाइफाइड कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम हल्के में ले सकते हैं या हल्के में लिया जा सकता है। खासकर हमारे ही देश में यानी कि इंडिया में, जहाँ कहीं जगह साफ पानी नहीं है, स्ट्रीट फूड का चलन बहुत ज्यादा हो रखा है। हमारे यहाँ टाइफाइड के मामले आज भी दोस्तों काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बच्चे हो या बड़े, या किसी भी उम्र का है, कोई भी वर्ग का है, कुछ भी है, कोई भी है, सबको टाइफाइड हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? एक ऐसा देश जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वहां पे जहां इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छता अभियान, हम खुद चाहते हैं कि हम सुरक्षित जगह पे रहें, साफ जगह पे रहें, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है जो इंडियंस में टाइफाइड बहुत ज्यादा कॉमन है? तो दोस्तों, आज हम इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि टाइफाइड का हर वो पहलू जो हमें जानना जरूरी है, और हम जानेंगे भी कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे फैलता है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, और अगर हो जाए तो इसका निदान क्या है, इसको कैसे ठीक करना है। तो बने रहिए आज मेरे साथ आज के पूरे एक घंटे के शो स्वास्थ्य संगिनी में, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइफाइड की, जानेंगे इसको और भी ज्यादा डिटेल में, बहुत विस्तार से, लेकिन अपनी आरजे के साथ, फन करते हुए, एनर्जी के साथ। जी हाँ, ले दो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक भी जा रहे हैं लेकिन आपको छोड़ जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। ब्रेक के उस पार आएंगे और बात करेंगे इस बहुत ही अहम मुद्दे पे। स्टे ट्यून्ड।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या, आरजे संध्या। और आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपकी संध्या यानी नई नई आरजे। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूं, आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं? प्रोग्राम चल रहा है ज्ञानस्त्री लाइव, जो कि आपका अपना शो है, आप इंजॉय करिए मेरे साथ। दोस्तों आज पता है आपको कि आज क्या है? अगर पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शानदार और इंटरेस्टिंग है, जिन्हें आप मतलब इंजॉय की तरीके से मतलब बहुत अच्छे दिनों में जी सकते हैं। मतलब ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्योंकि आज तो सबको पता है कि 15 अक्टूबर है, जो कि मतलब बहुत अच्छा दिन है। आज है वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, मतलब हाथ धो अभियान। आपने आप सबको मतलब ये लगता होगा कि हाँ, पहले हम लोग की मम्मी जो थी वो बोलती थी हाथ धो लो हाथ धो लो, पर हम लोग उन चीज़ों को मानते थे, लेकिन मतलब उनको परेशान करके ही मानते थे। लेकिन अब तो ये हमारा वर्ड भी मान रहा है कि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, तो हमें इन चीज़ों को मतलब खुद पे अप्लाई करके खुद को हेल्दी और वेल्दी बनाना है। और आज एक ही नहीं, दो दो स्पेशल डे है। आज विश्व स्टूडेंट डे है, मतलब आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, जो कि हमारे मिसाइल मैन थे। यहाँ तक कि उनको तो सब लोग जानते हैं, और उनके मतलब क्या ही कहें, उनको किन शब्दों में कहें कि उनको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिल से हैप्पी बर्थडे। भले वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी जो नॉलेज या क्रिएटिविटी थी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा, और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। तो कैसे हैं आप सब, अब बताइए, क्या आपको भी जानना है कि आज के बारे में APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या बताया था हम लोग के लिए? और जो हमारा अभियान चल रहा है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, तो क्या आप फॉलो करेंगे उसके मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है, क्या आप फॉलो करेंगे? हाँ, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर आते हैं ब्रेक के उस पार और बताते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

जाने वो कैसी होगी रे, सच में बताओ कैसी होगी? मुझे तो नहीं पता कैसी होगी, पर बहुत अच्छी होगी। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब कैसा क्या हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपनी हेल्थ के लिए लापरवाही बहुत करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं मतलब वर्ल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के बारे में। आज की तारीख है 15 अक्टूबर और कैलेंडर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है आज का पहला दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, यानी हाथ धो अभियान। हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, क्या आप हमें बताएंगे? जी हाँ, आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि पहले की बात करते हैं, पहले मतलब हम लोग के साथ में क्या होता था कि मम्मी हम लोग की चिल्ला चिल्ला के कहती थी, भाई हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धोकर ही खाना खाओ। क्योंकि मतलब मम्मी हम लोग के लिए सोचो कितना ज़्यादा केयर करती थी हम लोग की, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, मतलब इतना जर्म्स के बारे में उन्हें नहीं पता होता था, फिर भी वो हम लोगों से यही कहती थी कि हाथ धुल के मतलब खाना खाओ। देखो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ये जानता था कि हाँ कुछ ना कुछ तो गंदगी लगी है, इसीलिए हम अपने बच्चों को रोकती थी कि हाथ धुल के खाना खाओ। लेकिन हम क्या करते थे, जीन्स पर 2 बार हाथ रगड़ा और क्या, फिर हम समझते थे कि हमारे हाथ सैनिटाइज हो गए। आप ये बात मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हो तो अब से मान लो। क्योंकि जम्स बिना वीजा के हमारे हाथों के रास्ते पेट में एंट्री मार लेते हैं, इसलिए आज के दिन का सीधा सा ज्ञान है, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धुलो। अब आप अंदाज़ा लगाओगे कि 20 सेकंड में हम कितनी देर हाथ धुलें, क्या करेंगे, इतनी देर हम क्या ही क्या करेंगे। तो उसमें करना कुछ नहीं है आपको, उसमें सिर्फ इतना करना है कि जब आप हाथ धो रहे हों उस टाइम आप अपने मन में हैप्पी बर्थडे, मतलब जो ये सॉन्ग है हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये वाला सॉन्ग आप अपने मन में 2 बार गाइए, तब तक आपके 20 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे। फिर क्या, हमारे हाथ भी फ्रेश हो जाएंगे और हम भी फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या इरादा है कि आपसे आज से आप ये काम करेंगे? और अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि

अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो मतलब पहले आप अपना हैंड वॉश करिए, और सच बताइएगा कि आज लोग, बहुत से लोग जो नाश्ता करने से पहले किस किस ने हाथ धोया था। सच कहूँ तो मैंने नहीं धोया था, पर आप भी बताओ सच क्या है। क्या आप मेरे तरीके से केयरलेस हो? अगर हो तो अब खुद को चेंज करो, क्योंकि मैंने तो खुद को आज से चेंज कर लिया है कि बिना हाथ धुले मुझे कुछ नहीं खाना है। वैसे मैं मजाक कर रही थी, मैं धुल के खाई थी। ठीक है, तब तक के लिए आप, हम सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे जो कि बहुत अच्छा है। तब तक आप इंजॉय करियो, फिर लौट के आती हूँ और फिर बताती हूँ कि दूसरा स्पेशल डे आज क्या है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट संध्या और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और शो चल रहा है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली लाइव, जो कि आपके साथ आपको मैं बताऊंगी कुछ आपके नॉलेज की बातें और कुछ अपनों के लिए अच्छी बातें। कैसे हैं आप सब हमें ज़रूर बताएंगे। और आज दूसरा है स्पेशल हम लोग के लिए डे, जो कि है मतलब स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जो कि हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए मनाया जाता है। आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मतलब मिसाइल मैन को मैं अच्छे शब्दों में विश करना चाहूँगी, क्योंकि वो हम लोग के मतलब इस एजुकेशन को लेके और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहे हैं। क्योंकि हाँ, वो हमें एकदम अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें बताए हैं और उनकी लाइफ भी बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगलफुल रही है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों मनाते हैं और ये होता क्यों है, क्योंकि हम लोग और फिर कोई कोई स्टूडेंट होता है जो खुश होता होगा कि हाँ, आज अगर वर्ल्ड लेवल का स्टूडेंट डे है तो हमें अपने टीचर से गिफ्ट मिलेंगे। हाँ, बेशक आपको गिफ्ट मिलेंगे, पर अगर आपका टीचर देना चाहे तो, क्योंकि मैंने तो अपने टीचर से बोला, सर ने बोला संध्या एक्सचेंज कर लो, आज तुम मुझे दे दो, जब फिर कभी होगा मेरा तो मैं तुम्हें दूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं है, आप लोग भी अपने टीचर से गिफ्ट बेशक ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, ज़रूरी बात है कि आप उनसे ज्ञान लीजिए, नॉलेज और उनका आशीर्वाद चाहिए हम लोग को। अब मैं बताती हूँ ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा मतलब समझिएगा कि हाँ ये एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट सब सुनते ही हमें क्या याद आता है, आप हमें ज़रूर बताइए। रात भर रील स्क्रॉल करना और सुबह एग्जाम हॉल में पेन चबाते हुए छत के पंखे को देखना, यार ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, और वो कसम जो हर सेमेस्टर के पहले हम खाते हैं कि इस बार तो भाई पहले दिन से ही पढ़ूंगा, पर क्या कोई पढ़ता है? नहीं, क्योंकि हम बस खुद से ये प्रॉमिस करते हैं बट उस प्रॉमिस को हम निभाते नहीं हैं। वो पहला दिन कैलेंडर में आता ही नहीं है कि जिससे हम पढ़ना स्टार्ट करें। कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब हमारे वाले सपने हमें इसलिए नहीं सोने देते क्योंकि हम रात को 2 बजे भूतिया रील्स देखते हैं। आप कौन सा रील देखते हैं अब आप ही जानते होंगे, पर पढ़ते तो नहीं हैं, क्योंकि अगर पढ़ते तो फिर हम लोग को कोई दिक्कतें ना आती, ना ही सोचना पड़ता, क्योंकि हमारे ज़रूर में मतलब लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन के चलते हम अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उनको अपने कलाम साहब को मतलब लिटरली दिल से धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन के जो बैकबोन है वो हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छा काम किया है, जिन्हें कि हम स्टूडेंट्स कभी भूल नहीं पाएंगे, और उन्हीं की वजह से ये वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तब तक के लिए हम लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर उसके बाद मिलते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। तब तक के लिए बाय बाय।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे संध्या और आपने ट्यून कर लिया है ज्ञानस्थली लाइव। प्रोग्राम चल रहा है। आप हमें बताइए कि आपका या जो स्टूडेंट फेज है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट लाइफ कुछ ऐसा है कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अभी पढ़ लूँगी अभी पढ़ लूँगी, पर मैं पढ़ने के सिवाय मैं सारा काम करती हूँ। मैं घर के काम कर लेती हूँ, ऑफिस का काम कर लेती हूँ, पर मैं पढ़ नहीं पाती। जब भी पढ़ने का मन भी बनाता है तो ये फ़ोन में जो शॉर्ट या रील्स हैं उस पे जाने के बाद मेरा पूरा का पूरा मतलब फोकस उसी पे चला जाता है। ना तो मैं पढ़ पाती हूँ और वो रिग्रेट भी बना रहता है कि हाँ मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो क्या करूँ, क्योंकि ये रील और शॉर्ट आपके फ्यूचर का मुझे तो लगता है एक हद से तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, पर उससे ज़्यादा उसके बैड इफ़ेक्ट हैं। तो आप रील स्क्रॉल करना थोड़ा कम कीजिए। अगर रील स्क्रॉल ही करना है तो कुछ अपने पढ़ाई का, अपने सिलेबस का, आपको जो टॉपिक नहीं आती है और आप AI का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है AI। अब हम बात ये करते हैं कि स्टूडेंट होना सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं, बल्कि लाइफ टाइम कुछ नया सीखते रहना है। कलाम साहब खुद आखिरी सांस तक एक टीचर और स्टूडेंट बने रहे। तो आज के दिन अपनी उस रील वाली उंगली को थोड़ा आराम दीजिए, कोई अच्छी किताब उठाइए, थोड़ा रीडिंग डे मना लीजिए। हैप्पी वर्ड्स स्टूडेंट डे टू ऑल द बेस्ट बैक बेंचर्स एंड टॉपर्स फ्रेंड, क्योंकि मैं भी उसी में इंक्लूड हूँ, तो मुझे भी बेस्ट ऑफ लक, मतलब मैं खुद को बोल रही हूँ बेस्ट ऑफ लक टू मी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट के फेज़ में चल रही हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात आपको बता रही हूँ वो खुद अप्लाई ना करूँ, तो मैं आज से ये बातें मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन दी होल लाइफ। क्योंकि जो ये हम लोग मान लेते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना हम लोग बहुत ज़्यादा स्किप कर दिए हैं अपनी लाइफ में, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड करिए। फ़ोन आप यूज करिए लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आप कर भी रहे हैं तो रील स्क्रॉल कर भी रहे हैं तो हाँ कुछ बस इंटरटेन के लिए, ना कि आप फुली टाइम उसी में दे दीजिए। क्योंकि मैं अपना, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़िए। और मैं तो आज से ये मतलब बहुत अपने में चेंजिंग लाऊंगी कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो रील स्क्रॉल करके मैं परेशान हो जाती हूँ, जबकि मेरा मन उसमें भी लगा रहता है कि हाँ मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं रील स्क्रॉल, मतलब अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करती हूँ, पर मैं सामने से वो जाके मैं पढ़ नहीं पाती। और पता है हम लोग के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और उसमें ये देख लेते हैं कि 2 या 3 घंटे का क्लास है, तो फिर हमें उस बीच में इतनी नींद आती है, लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वो 3 नहीं अगर 3.5 घंटे का भी है तो हम बिना स्किप किए और कंसंट्रेटली एक एक सीन को, एक एक डायलॉग को याद कर लेते हैं। तो अगर हम उसी तरह अगर उतना ना 100% उसमें पढ़ाई में दे पाएँ, पर 50% तो दे सकते हैं ना, तो हाँ आप लोग भी, अब आप अभी तक आपने कैसे क्या किया मुझसे मैटर नहीं करता, पर मैं अब आप लोग को कहूँगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स के जोन में हैं, वो अपना टाइम रील स्क्रॉल करके उसमें ना वेस्ट करें। सबसे अच्छा है कि उसे यूजफुल बनाएं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तब तक के लिए लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप इंजॉय करिए ये वाला सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजी संध्या। और अब वक्त ने इशारा कर दिया है, अब हो गया है आपसे विदा लेने का समय। तो फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे और नॉलेज वाली बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आइडल जी। हेलो आइडल जी, कैसे हैं आप? आप सभी को जय माता दी, जय माता दी सभी से। और अब मैं एक बात आपको लास्ट में बताना चाहूँगी कि सच में अगर हम अपनी पढ़ाई को लेके अपनी मतलब क्या ही कहें कि मतलब अगर आप मैं किन शब्दों में कहूँ कि अगर आप अपनी स्टडी को लेके कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो आप अपने साथ में बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो अभी भी टाइम है, आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो भी इतने दिन आपने किया कैसे भी किया वो मतलब नहीं करता। लेकिन अब मैटर ये करता है कि आप अब अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दुनिया में आपका कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा ना चाचा ना दादी। इवन आपके पास पैसा है, और पैसा कहाँ से आएगा? या तो फिर आप कोई वर्क करेंगे तब आएगा, या फिर आप अगर पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई करने के बाद स्टार्टिंग लाइफ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बाद में जो हम सुकून की नींद लेते हैं और वो रिस्पेक्ट मिलती है जो हम कभी सोचते नहीं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को मेंटेन रखो, पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और बाकी तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं, मैं क्या ही बताऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप इंजॉय करिए ये वाला सॉन्ग।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: हो सकता है।
3: अच्छा, यानी सिर्फ ये देखकर तय नहीं किया जा सकता कि बच्चा पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत सेहतिया सिंह, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर शिवनति,
2: और मैं हूं आपकी अपनी टीकन भाभी।
3: भाभी, आज एक बात से शुरुआत करते हैं।
2: पूछिए।
3: कहते हैं ना, घर में बच्चे की हंसी गूंजती रहे तो घर खुशहाल रहता है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन बच्चा हंस तो रहा हो, खेल भी रहा हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर का पोषण पूरा ना हो।
2: हो सकता है।
3: अच्छा, यानी सिर्फ ये देखकर तय नहीं किया जा सकता कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है।
2: बिल्कुल नहीं।
3: तो आज इसी पे बात करेंगे।
2: हाँ, आज बात होगी कुपोषण की। इसे समय रहते कैसे पहचान लें, बच्चों को क्या खिलाएं, माँ के पोषण का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, और घर के बाकी लोग इसमें कैसे मदद करते हैं, इन्हीं पर होगी आज बात।
3: मतलब आज की बातचीत सिर्फ बच्चों की थाली पर नहीं होगी।
2: नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी पर होगी।
3: तो चलिए शुरू करते हैं। भाभी, सबसे पहले बिल्कुल आसान सवाल, कुपोषण क्या है?
2: जब बच्चे को उसके शरीर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त और सही पोषण नहीं मिल पाता तो कुपोषण की समस्या हो सकती है।
3: यानी सिर्फ खाना कम खाना ही कुपोषण है?
2: अरे नहीं, बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है।
3: अच्छा।
2: हाँ, बच्चे को ऐसा भोजन चाहिए जिससे उसे शरीर की बढ़त और विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व मिल सकें।
3: मतलब बच्चा रोज पेट भरकर खा रहा है, फिर भी अगर खाना असंतुलित है तो दिक्कत हो सकती है।
2: हाँ।
3: तो पहचानेंगे कैसे?
2: कुछ संकेतों पर ध्यान दिया जा सकता है।
3: जैसे?
2: सबसे पहले बच्चे का वजन। अगर उम्र के हिसाब से बच्चा बहुत हल्का है या उसका वजन नहीं बढ़ रहा तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
3: मतलब सिर्फ ये देखना है कि बच्चा दुबला है या मोटा?
2: नहीं, बल्कि उसकी बढ़त पर ध्यान देना है।
3: अच्छा।
2: और दूसरा संकेत है सुस्ती। बच्चा जल्दी थक जाता है, खेलने में मन नहीं लगता और हमेशा सुस्त दिखाई देता है।
3: और तीसरा?
2: बाल और त्वचा। बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और त्वचा सूखी हो सकती है।
3: और चौथा?
2: भूख कम लगना। अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए।
3: और पांचवा?
2: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जैसे बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण होना।
3: तो पांच बातें याद रख सकते हैं, वजन, सुस्ती, बाल, त्वचा, भूख और बार बार बीमारी।
2: हाँ, और अगर ऐसी कोई चिंता दिखे तो बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को दिखाना चाहिए।
3: भाभी, अब एक घर की बात करते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ परेशान, फिर बच्चा बोलता है मुझे बिस्किट चाहिए,
2: और माँ कहती है चलो कुछ तो खा रहा है।
3: बिल्कुल।
2: अरे यही हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।
3: क्यों?
2: क्योंकि बच्चे के लिए सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पौष्टिक और संतुलित भोजन भी चाहिए।
3: तो बच्चा खाए क्या?
2: उसकी उम्र के अनुसार भोजन देना चाहिए।
3: चलिए शुरुआत बिल्कुल छोटे बच्चे से करते हैं। जन्म के बाद क्या?
2: जन्म से 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए।
3: और पानी?
2: पानी इस उम्र में बच्चे के लिए माँ का दूध ही मुख्य पोषण है।
3: माँ का दूध इतना खास क्यों है?
2: क्योंकि इसमें बच्चे की जरूरत के मुताबिक जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें फैटी एसिड और एंटीबॉडी भी होती है जो बच्चों की बढ़त और बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं।
3: यानी माँ का दूध सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं,
2: बिल्कुल बच्चे के शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए जरूरी है।
3: अच्छा, और 6 महीने के बाद?
2: तब माँ का दूध जारी रखते हुए बच्चे को ऊपरी आहार भी देना शुरू करना चाहिए।
3: अब आता है असली सवाल, 6 महीने के बाद बच्चे की थाली में क्या आए?
2: शुरुआत में बच्चे को नरम और आसानी से खाने योग्य चीजें दी जा सकती है, जैसे खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फल का गूदा।
3: और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए?
2: तब उसके खाने में दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसी चीजें भी शामिल करनी चाहिए।
3: यानी घर का सामान्य पौष्टिक खाना ही बच्चे के लिए बहुत काम का है।
2: बिल्कुल,
3: कोई बहुत महंगी चीज जरूरी नहीं।
2: बात पौष्टिक और संतुलित भोजन की है,
3: मतलब हमारे रसोई में मौजूद दाल, अनाज, सब्जी, फल जैसी चीजों को सही तरीके से बच्चे के खाने में शामिल करना ही बहुत महत्वपूर्ण है।
2: हाँ
3: भाभी, एक बात मुझे हमेशा से दिलचस्प लगती है, हम खाना शरीर के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या खाने का असर बच्चे के दिमाग पर भी पड़ता है?
2: बिल्कुल।
3: कैसे?
2: बच्चे के जन्म के बाद उसका दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है, इस विकास के लिए भी सही पोषण जरूरी है।
3: और अगर सही पोषण ना मिले?
2: तो बच्चे के सीखने और विकास पर बहुत असर पड़ता है।
3: तो माँ का दूध यहाँ भी महत्वपूर्ण है?
2: बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 6 महीने में माँ के दूध से बच्चे को जरूरी पोषक तत्व जैसे फैटी एसिड और एंटीबॉडी मिलते हैं।
3: और 6 महीने के बाद?
2: तब ऊपरी आहार भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
3: जैसे?
2: जैसे दाल, खिचड़ी, सब्जी, फल, ऐसी चीजें। इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जैसी पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं।
3: मतलब बच्चे का खाना सिर्फ पेट तक नहीं जाता,
2: बल्कि उसके पूरे विकास से जुड़ा है।
3: अब भाभी, मैं जानती हूँ अगला सवाल सुनकर बच्चे मुझे पसंद नहीं करेंगे।
2: कैसा? क्यों?
3: क्योंकि बात होगी जंक फूड की।
2: ओह अच्छा।
3: चिप्स?
2: हाँ।
3: बर्गर?
2: ओहो।
3: फ्राइज?
2: हाँ।
3: कोल्ड ड्रिंक?
2: अब आप बच्चों के दुश्मन बन गई हैं।
3: लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना।
2: हाँ हाँ ठीक है, पूछिए।
3: क्या जंक फूड नुकसान कर सकता है?
2: अगर बच्चे के भोजन में इन चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए और पौष्टिक खाना पीछे छूट जाए तो समस्या हो सकती है।
3: क्यों?
2: क्योंकि बहुत ज्यादा तला भुना, मीठा या बहुत ज्यादा वेस्टर्न भोजन बच्चे की जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं देता।
3: और फिर बच्चा क्या करता है?
2: धीरे धीरे उसी स्वाद की आदत पड़ जाती है उसे।
3: फिर दाल सामने रखो, नहीं चाहिए।
2: सब्जी दो, नहीं चाहिए।
3: फल दो, नहीं चाहिए।
2: और चिप्स का पैकेट दिखा तो हाँ हाँ यही चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के रोजमर्रा के खाने में पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता मिले।
3: जंक फूड की आदत से क्या नुकसान हो सकता है?
2: बहुत ज्यादा जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापे का जोखिम बढ़ सकता है। ज्यादा मीठी चीजें दांतों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं।
3: और बच्चा फिर पौष्टिक चीजों से दूर?
2: हाँ, यही सबसे बड़ी चिंता है।
3: तो बात ये नहीं कि बच्चे ने कभी कुछ स्वादिष्ट खा लिया तो सब खराब?
2: नहीं, बात ये है कि रोज का भोजन पौष्टिक रहे और जंक फूड उसकी जगह बिल्कुल ना ले।
3: अब एक सवाल, हमने अच्छा खाना बना लिया लेकिन खाना खिलाते समय हाथ गंदे हैं, बर्तन साफ नहीं, तो
2: पौष्टिक खाना होने के बावजूद बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।
3: इसीलिए साफ सफाई भी जरूरी,
2: बहुत जरूरी है।
3: तो भाभी, क्या क्या ध्यान रखें?
2: खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास का वातावरण भी बिल्कुल साफ रखना।
3: यानी पोषण सिर्फ क्या खाया नहीं?
2: हाँ, बल्कि कैसे और किस माहौल में खाया भी जरूरी है।
3: भाभी, अब एक और सवाल, अगर हम बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं तो क्या इतना ही काफी है?
2: नहीं।
3: तो और क्या?
2: समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी बहुत जरूरी है।
3: क्यों?
2: क्योंकि बच्चे को बीमारियों से बचाने और उसकी सेहत पर नजर रखने के लिए।
3: मतलब अच्छा खाना, साफ सफाई, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच सब मिलकर बच्चे की सेहत को मजबूत करते हैं।
2: बिल्कुल, ये सही कहा।
3: अब भाभी, एक सवाल जो घर के बाकी लोगों को सुनना चाहिए, बच्चे की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है?
2: बच्चे की देखभाल केवल माँ या केवल पिता का नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।
3: लेकिन अक्सर होता क्या है?
2: होता तो ये है कि माँ से उम्मीद की जाती है कि वही बच्चे को खिलाए, वही खाना बनाए, वही दूध पिलाए और वही घर भी संभाले,
3: और बाकी लोग
2: कहते हैं तुम संभाल लो।
3: अरे
2: बच्चे की परवरिश में परिवार की मदद बहुत जरूरी है, अकेली माँ नहीं कर सकती कुछ भी।
3: और वो कैसे?
2: पिता, दादा दादी और घर के दूसरे सदस्य खाना बनाने में मदद कर सकते हैं,
3: बच्चे को खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, माँ को आराम का समय भी दिया जा सकता है
3: और घर की साफ सफाई में भी हाथ बटा सकते हैं।
2: बिल्कुल करना चाहिए।
3: मतलब माँ की मदद करना सिर्फ माँ की मदद नहीं
2: बल्कि बच्चे के पोषण में मदद करना भी है।
3: अब तक हमने की बच्चे की बात, लेकिन अब बात करेंगे बच्चे आने से पहले।
2: बहुत अच्छा सवाल है।
3: गर्भवती महिलाओं का खाना क्यों महत्वपूर्ण है?
2: क्योंकि गर्भवती माँ का पोषण उसके शरीर के लिए नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है।
3: तो उसकी थाली में क्या क्या होना चाहिए?
2: गर्भवती माँ की थाली में दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही और अनाज जैसे गेहूं, चावल और बाजरा तो जरूर होना चाहिए।
3: और अगर परिवार में अंडा या मछली खाई जाती हो
2: तो उसे भी भोजन में शामिल किया जा सकता है।
3: और बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना?
2: नहीं नहीं, मसालेदार या ज्यादा तला भुना तो कम ही खाना चाहिए।
3: अब बात करते हैं पानी की।
2: हाँ, साफ पानी पर्याप्त मात्रा में पीना भी बहुत जरूरी है।
3: अब एक बात जो गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर अक्सर बताते हैं।
2: मैं बताती हूँ, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों की।
3: हाँ,
2: गर्भावस्था में शरीर की जरूरत बढ़ जाती है, आयरन खून बनाने में मदद करता है।
3: और अगर आयरन की कमी हो जाए
2: तो एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी। महिला को कमजोरी, थकान या चक्कर जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
3: तो क्या इसका असर बच्चे पे भी पड़ता है?
2: बिल्कुल, बच्चे का वजन कम हो सकता है, समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ सकता है और गंभीर स्थिति में माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
3: और फॉलिक एसिड?
2: फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए जरूरी है।
3: इसीलिए डॉक्टर जो आयरन फॉलिक एसिड की गोली देते हैं उसे अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए।
3: अब बच्चा पैदा हो गया है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, अब माँ के खाने में क्या खास होना चाहिए?
2: माँ को खुद भी संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
3: कौन कौन सी चीजें?
2: अभी मैंने बताया ना, दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दही और अनाज जैसे गेहूँ, चावल और बाजरा।
3: कि माँ खुद कमजोर होकर बच्चे को मजबूत नहीं बना सकती।
2: बिल्कुल, माँ की अपनी सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितना बच्चे को स्वस्थ रखना।
3: और परिवार को यहाँ क्या करना चाहिए?
2: माँ को पौष्टिक खाना मिले, समय पर मिले और उसे पर्याप्त आराम भी मिले, इसी बात का ध्यान परिवार को रखना चाहिए।
3: भाभी, अब दो चीजों पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। हरी सब्जियाँ क्यों?
2: क्योंकि हरी सब्जियाँ शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर्स देते हैं।
3: और दूध दही?
2: क्योंकि इसमें कैल्शियम मिलता है जो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है।
3: तो माँ के खाने में ये चीजें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होती?
2: नहीं, बल्कि पोषण के लिए होती है।
3: अब एक सवाल थोड़ा अलग है। जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मांस, मछली या अंडा क्या फायदा दे सकता है?
2: मांसाहार में प्रोटीन होता है जो शरीर की ताकत और बच्चे की बढ़त के लिए बहुत जरूरी है।
3: और आयरन?
2: कुछ मांसाहारी खाद्य पदार्थ आयरन के भी अच्छे स्रोत हैं।
3: और विटामिन B12?
2: मांस, मछली और अंडे में विटामिन B12 भी मिलते हैं जो शरीर और नसों के लिए बहुत जरूरी है।
3: लेकिन हर परिवार तो मांसाहार नहीं करता ना?
2: बिल्कुल।
3: तो शाकाहार में माँ क्या करे?
2: शाकाहारी भोजन से भी अच्छा पोषण मिल सकता है।
3: और वो कैसे?
2: मांस, मछली और अंडे ना खाने वाली महिलाओं के लिए दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे जैसे विकल्प भोजन में शामिल किए जा सकते हैं।
3: दाल और पनीर?
2: हाँ, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
3: दूध और दही?
2: ये कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों के लिए जरूरी है।
3: हरी सब्जियां?
2: ये विटामिन मिनरल और आयरन सहित कई पोषक तत्व देते हैं।
3: तो बात सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि घर में मांसाहार बनता है या नहीं।
2: नहीं, बल्कि जरूरी है कि भोजन विविध और पौष्टिक हो।
3: अब मैं घर के पापा, दादा दादी, भाई बहन सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर घर में गर्भवती महिला या छोटा बच्चा है तो आप क्या कर सकते हैं?
2: परिवार के अलग अलग सदस्य माँ का हाथ बटा सकते हैं और ऐसे ही वो माँ का साथ दे सकते हैं।
3: जैसे?
2: जैसे खाना बनाने में मदद करना,
3: बच्चे को खाना खिलाने में मदद करना,
2: बिल्कुल माँ को आराम देना,
3: साफ सफाई का ध्यान रखना
2: और ये देखना कि माँ और बच्चे को पौष्टिक खाना मिल रहा है या नहीं।
3: मतलब मदद करने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं होता।
2: बिल्कुल नहीं,
3: घर के काम में भी हाथ बटाया जा सकता है।
2: हाँ, और माँ और बच्चे की सेहत मजबूत बनाने में भी योगदान दिया जा सकता है।
3: चलो भाभी, आज एक छोटा सा खेल खेलते हैं।
2: खेल? क्या खेल?
3: सही या गलत।
2: चलिए शुरू करते हैं।
3: पहला, बच्चा खेल रहा है और हंस रहा है, इसीलिए उसमें पोषण की कमी हो ही नहीं सकती।
2: गलत।
3: क्यों?
2: क्योंकि बच्चे की बढ़त और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है।
3: दूसरा, जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए।
2: बिल्कुल सही।
3: तीसरा, 6 महीने के बाद बच्चे को माँ का दूध देना बंद कर देना चाहिए।
2: गलत। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार शुरू करते हुए माँ का दूध जारी रखना चाहिए।
3: चौथा, जंक फूड पेट भर सकता है, इसीलिए वही रोज का मुख्य खाना भी हो सकता है।
2: बिल्कुल नहीं।
3: पांचवा, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है।
2: करेक्ट, बिल्कुल सही।
3: छठा, माँ और बच्चे की सेहत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल गलत।
3: तो सही जवाब,
2: पूरे परिवार का सहयोग जरूरी है।
3: और आखिरी, अगर गर्भवती महिला शाकाहारी है तो उसे अच्छा पोषण नहीं मिल सकता।
2: गलत।
3: क्यों?
2: क्योंकि दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे जैसे पौष्टिक तत्व इसके विकल्प हैं।
3: भाभी, अगर आज की पूरी बातचीत को हम एक थाली में रखें तो वो कैसी दिखेगी?
2: अच्छा सवाल है।
3: बताइए।
2: उसकी थाली में विविधता होगी।
3: दाल होगी,
2: सब्जी होगी,
3: फल होंगे,
2: अनाज होगा,
3: दूध दही जैसे खाद्य पदार्थ भी होंगे
2: और परिवार का ध्यान भी होगा
3: और साफ सफाई,
2: वो भी,
3: समय पर टीकाकरण,
2: बहुत जरूरी,
3: स्वास्थ्य जांच,
2: जरूरी है,
3: और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ,
2: उनका पोषण भी उतना ही जरूरी है।
3: तो भाभी, आज की इतनी लंबी बातचीत से अगर श्रोताओं को सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो
2: तो मैं कहूँगी कि सबसे पहली बात, बच्चे की बढ़त पर ध्यान दें और कुपोषण के संकेतों को नजरअंदाज ना करें।
3: दूसरी,
2: 6 महीने तक केवल माँ का दूध, उसके बाद माँ का दूध जारी रखते हुए उम्र के साथ उम्र के अनुसार पौष्टिक ऊपरी आहार।
3: और तीसरी,
2: बच्चे के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ के पोषण का भी ध्यान रखें और उसमें पूरे परिवार का सहयोग हो।
3: और मैं इसमें एक और बात जोड़ूं?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: जंक फूड को रोज के पौष्टिक खाने की जगह मत बनने दीजिए।
2: बिल्कुल।
3: दोस्तों, आज हमने जाना कि कुपोषण सिर्फ खाने की कमी का नाम नहीं है,
2: बल्कि सही और संतुलित पोषण, साफ सफाई, स्वास्थ्य जांच और परिवार की देखभाल सब मिलकर बच्चे की अच्छी सेहत में योगदान दे सकते हैं।
3: हमने जाना कि बच्चे का पोषण उसके शरीर के साथ साथ उसके विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है
2: और माँ का पोषण भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो गर्भवती हो या फिर बच्चे को स्तनपान कराने वाली।
3: इसीलिए अगर घर में बच्चा है
2: तो सिर्फ बच्चे की थाली मत देखिए,
3: माँ की थाली भी देखिए
2: जी, और परिवार का सहयोग भी दीजिए,
3: क्योंकि स्वस्थ बच्चा
2: स्वस्थ माँ
3: और स्वस्थ परिवार

0: टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
2: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
2: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
2: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
2: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
2: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
2: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो

0: तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
0: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
0: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा एनबीएसयू। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी, खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर एनबीएसयू दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा एनबीएसयू से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे। केएमसी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल, ना घी, ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं। और डॉक्टर जो तारीख दे, फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े, तो तुरंत वापस एनबीएसयू।
1: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
0: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ईएनसी हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
1: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
1: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
0: बस इतना ही,

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जय माता दी, जय माता दी। आज के पावन दिन यानी कि नवरात्रि के पांचवे दिन यानी माँ स्कंद माता को हम करते हैं नमन, और नमन करने के साथ साथ आइए हम शुरू करते हैं आज के अपने शो यानी आपके पसंदीदा शो, जिसका नाम है सुन सहेली। आप सभी को पता है कि कई दिन से हमारे साथ में अंशिका नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे गेस्ट हर दिन हम लेकर के आ रहे हैं सुन सहेली में। जिसे कहते हैं ना कि नवरात्रि चल रही है तो हर दिन अलग अलग माताओं का आगमन होता है, वैसे ही हमारे सुन सहेली में भी अभी काफी दिन से अलग अलग हमारे साथ आरजेज और गेस्ट का भी आगमन चल रहा है। तो आज फिर से हमारे साथ में निधि आई हुई है यानी आरजे निधि। हेलो निधि।
5: हेलो मैम, कैसी हैं आप?
4: बिल्कुल ठीक हूँ निधि, आप बताएं आप कैसी हैं?
5: जी मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, और हम अपने प्यारे लिस्नर से भी पूछ लेते हैं कैसे हैं आप, और आप सबको भी जय माता दी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
4: यस, और साथ ही साथ में निधि जो कि बहुत हमेशा से चुपचाप रहने वाली लड़की हैं, बहुत ही नर्वस रहती हैं, तो आज ऑफ माइक मैंने इसको बोला कि भाई नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि के दिन में क्या होता है कि हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक अलग सी ऊर्जा हम सभी के शरीर में होती है। क्यों होती है कि इन दिनों में क्या होता है, उपवास होता है, नई खुशियां होती हैं, माता जी आती हैं। और भाई माँ अगर बेटी के घर में आ रही है या बेटी अपने घर जा रही है यानी मायके जा रही है, तो किस माँ बाप को खुशी नहीं होती? दीदी मुझे पहले ये
5: मैम सबको खुश होती है। जैसे हमारे यहाँ जब माँ आ रही होती है तो मुझे लगता है 10-12 दिन पहले से जो खुशी मन में रहती है, नए चीजें लेने की, कपड़े लेने की, यहाँ अपनी खुशी छोड़िए पूरा मार्केट खुशी से झूम रहा होता है।
4: एग्जैक्टली पूरा मार्केट क्या, पूरा शहर और शहरों शहर। आपने कभी आज के जो कि नवरात्र आते हैं, जो ये शारदीय नवरात्र है ना ये?
5: जी मैम।
4: तो शारदीय नवरात्र जब होते हैं तो आपने इनकी रौनक बाजारों में, शहरों में, मैं अगर बात करूं अपने नवाबी लखनऊ की, तो लखनऊ में जो आज के दिन की रौनक होती है ना, मतलब ये जो 9 दिन की रौनक होती है, इत्तेफाक से मैं एक दिन गई थी तो मैंने देखा यार कि मतलब क्या है, मतलब जैसे लग रहा था कि जन्नत जन्नत बिल्कुल। और इतने अच्छे अच्छे सब दुकानों पे, कहीं दिए की दुकानें हैं तो कभी गणेश लक्ष्मी मिल रहे हैं, कभी माता जी की मूर्तियां मिल रही हैं, मतलब हर जगह रौनक ही रौनक। लौट आते हैं नवाबों के शहर से और अपने शहर यानी अपने गोंडा, क्योंकि कहते हैं ना आपन जिला गोंडा, क्या कहते हैं निधि के मुंह से सुनना चाहेंगे, आपन जिला गोंडा।
5: जी आपन जिला गोंडा है तो है ही।
4: हाँ।
5: और मैं अपना वो बताऊं, मैं कई जगह मूर्ति देखने गई मैम।
4: हाँ।
5: मुझे ऐसा लगता है वो मूर्ति मुझसे बात करना चाहती है।
4: अच्छा, एक अलौकिक रूप देखा है तुमने कि जब दर्शन होते हैं, जब दर्शन आते हैं तो वो एक साधारण से, जब उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है और जब तक उनकी आरती नहीं हो जाती है, पूजा नहीं हो जाती है, तो तब आप उनको सुबह से शाम के बीच का फर्क इतना आ जाता है कि लगता है वो मूर्ति बोल नहीं रही है, वो मूर्ति आपको बुला रही है, बुलाती है, बोलती है कि मेरे भक्तों और आ जाओ, मैं आ गई, और मेरे प्यारे बच्चों मैं तुमसे मिलने आ गई। मतलब ये अलौकिक जो एक दिव्य दर्शन होते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्यों, है ना?
5: जी बिल्कुल, आप कह रही हैं, सही कह रही हैं। और आज वही दिन है, आज ही के दिन माता रानी की पट्टी खुलती है, नवरात्रि का 5वां दिन है आज। ज्यादातर जगह, कुछ जगह मैम आज ही के दिन मूर्तियां रखी भी जाती, आपको ये बात पता थी
4: मुझे? अच्छा पंचमी के दिन ना। हाँ हाँ हाँ हाँ, पर पता है हमारे चौक में तो मतलब मुझे लग रहा था कि कल या हाँ कल मतलब चतुर्थी के दिन भी कई जगहों पर रख दी गई है। मतलब अब क्या होता है निधि, मैंने देखा है कि ना कई जगहों पर ना लोग ज्यादा से ज्यादा दिन, मतलब माँ का, माँ के आगमन पर बहुत ज्यादा से ज्यादा दिन में चाहते हैं लोग कि उतने दिन माँ रहे हमारे साथ में, है ना?
5: जी बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, पर माँ के आने की जो खुशी होती है वो सबके अंदर सेम भावना से होती है।
4: बिल्कुल। तो निधि आज के दिन को हम डिफाइन करेंगे कि पंचमी के दिन की आखिर क्या खास बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम जो कि है सुन सहेली में, आप सभी का फिर से एक बार हमारी आज मैं यानी आपकी आज समता की तरफ से स्वागत है। एंड एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पिछले 3 सालों से ये भी जानकारी है कि आज के दिन, मतलब पिछले 4 दिनों से जो हम करते आ रहे हैं, क्योंकि माता की चौकी का आयोजन, तो नवरात्रि में चाहे वो चैत्र वाली हो चाहे ये शारदीय हो, जो भी नवरात्रि होती है, हम हमेशा से अपने सुन सहेली प्रोग्राम में दोपहर 1:30 से 3 बजे तक माता की चौकी का आयोजन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप अपनी भेंट को लिख सकते हैं, आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अपने प्यारे प्यारे भजनों को लिख बोल सकते हैं। तो आइए फटाफट सुनते हैं आज हम प्यारी सी एक जो कि है एक प्यारी सी भेंट को सुनेंगे, वो इसलिए क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आज चैट बॉक्स से हम लोग अर्जी नहीं ले पाएंगे, तो आज निधि और मेरी तरफ से ही अर्जी है, उसी अर्जी को आप सुनेंगे। तो निधि ब्रेक ले लें?
5: जी मैम बिल्कुल, चलते हैं थोड़ा ब्रेक की तरफ, एक अर्जी लेके आते हैं।
4: तो बस यूं गए यूं आए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। जी तो आज आपको बताते हैं, आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो है स्कंद माता का, तो उनकी पूजा अर्चना कैसे होती है।
5: यस, यानी कि आज हम जानेंगे कि आज नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि पंचमी को हम इतना खास क्यों मानते हैं और आज के खास दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है।
4: जी मैम बिल्कुल, हम बताएं तो हमारी कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार उनकी आराधना से भक्तों को सुख शांति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है।
5: ओके,
4: माँ का वाहन सिंह जो है आप जानती होंगी, वो स्वरूप ममता के साथ साहस और संदेश का बल माना जाता है।
5: ओके, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ निधि, कि मैं यहाँ एक जैसे कहते हैं ना कि हम हमेशा से माँ से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, अक्सर माँ से सुख मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, अपने परिवार की खुशियाँ और उनकी सलामती मांगते हैं।
4: बिल्कुल सही।
5: लेकिन क्या कभी हम माँ से सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगते हैं? कभी महसूस किया? हाँ कि ना? कभी नहीं ना, कभी नहीं। मतलब हम हमेशा से मतलब कहते हैं ना कि वो सारा बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बट हम कभी ये नहीं मांगते हैं कि हमें सही राह पर चलने की शक्ति, क्योंकि जीवन में हर समस्या का समाधान केवल परिस्थितियों के बदलने में नहीं होता है, कभी कभी हमें खुद के भीतर भी बड़ा बदलाव लाना पड़ता है।
4: जी मैम, तो मेरा मानना है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए मेरा आज का विचार है, अगर आप अब कुछ मांगे माँ से तो केवल अपनी राह को आसान करने की प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि इतनी शक्ति भी मांगे कि कठिन राह पे चलते हुए आपके कदम कभी गलत रास्ते पे ना जाएं और कभी ऐसी राहों में आप डगमगाए ना, क्योंकि आस्था का अर्थ यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि आस्था हमें मुश्किलों का सामना करने की साहस देती है।
5: एग्जैक्टली, तो चलिए फटाफट अब हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आएंगे। आज के दिन यानी कि माँ स्कंद माता के दिन हमें कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और आज के व्रत के लिए हम कुछ बताने वाले हैं छोटे छोटे टिप्स खाने के, ठीक है? तो बहुत जल्दी से बस हम यूं गए यूं आए।
4: जी बिल्कुल, हम जाते हैं और फटाफट आते हैं।

क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562। ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं निधि। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट पे। आज की पंचमी दिन है माँ स्कंद माता का। तो माँ स्कंद माता के लिए आज हम लोग बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा खुश होते हैं ना आज के दिन को लेकर के। तो निधि, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या और मतलब कपड़े होने चाहिए आज के दिन, क्या खाना चाहिए, आज आप मुझे पहले विस्तार से बताएं।
5: मैम, वैसे तो जो मान्यता के अनुसार माना गया है कि कोई ऐसा वो कपड़ा नहीं लिया गया है, पर जैसे हम लोग शुभ अवसर पे कुछ खास होता है तो कुछ रंगों को ऐसा मान लिए हैं कि ये पहनना जरूरी है। आपके मन में दो कलर ऐसे उमड़ रहे होंगे, तो हम पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं।
0: हाँ।
5: जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और इसको शुभ माना गया है
0: जी।
5: आप सफेद भी धारण कर सकते हैं, जो शांति का प्रतीक है
0: जी,
5: जिससे आपकी सादगी भी पता चलती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार साफ सुथरे और पारंपरिक कपड़े पहने, जैसे साड़ी, सूट, कुर्ता, ऐसा नहीं है आप कोई भी कपड़े पहने, बस आप पहने।
0: ओके।
5: पर जैसे पीले वस्त्र की मान्यता बहुत ज्यादा है तो आप लाल पीला वस्त्र धारण कर सकती हैं, दिन बहुत शुभ माना गया है। और हम बात करें कि आज स्कंद माता को भोग क्या लगाएं।
0: हाँ, भोग के लिए मैं चाहती हूँ ना कि कुछ ऐसा कुछ खाने पीने का कुछ बताओ, ताकि व्रत में ना इतना अच्छा लगता है यार कि कुछ ना कुछ ऐसे अतरंगी वाला मतलब चाहिए होता है
5: जी। बिल्कुल, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ पे जो भोग लगाते हैं, पर स्कंद माता को जो भोग लगाना चाहिए वो केला, नारियल, सेब, दूध, शहद, ऐसी चीजें चढ़ा सकते हैं पांचवे दिन। और मैम, ऐसे भोग लगाने के बाद खाने की भी बारी आती है।
0: हाँ।
5: तो फलाहार में आप सुबह साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की रोटी, भुने हुए मखाने, केला से पपीता या अन्य फल,
0: अच्छा,
5: पानी, दूध, छाछ कुछ ले सकते हैं। आज के दिन जो अच्छा माना गया है कि हमें ऐसे ऐसे फलाहार खाने चाहिए, चढ़ाने चाहिए, पहनने चाहिए।
0: हाँ।
5: और पांचवे दिन को वैसे भी नवरात्रि में बहुत स्पेशल माना जाता है। आज के दिन शायद कुछ ज्यादा ही हर्ष उल्लास के साथ लोग मंदिर जाते हैं, माता रानी की चौकी पे भजन कीर्तन करते हैं। और हम भी आपको अभी ऐसे भजन कीर्तन सुना ही रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए
0: जी। बिल्कुल। और तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम आज के दिन की बहुत ही प्यारी सी एक रेसिपी जानेंगे, जो कि खासम खास व्रत में होने वाली है
5: जी। बिल्कुल।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: तो आप सुन रहे हैं सुन सहेली। जी हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे हैं माँ स्कंद माता की, अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली और अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। तो आज हमारी मैम बताएंगी आपको कि आपको कैसी रेसिपी बनाना चाहिए आज के दिन। आपने बहुत सी रेसिपी खाई होगी, पर मैम आज कुछ खास लेके आई हैं आपके लिए।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आज के दिन पता है आपको सभी को कि माँ के लिए कितना बड़ा वाला, मतलब आज के दिन कितना हम लोग खुश होते हैं। तो आज के दिन चलिए हम कुछ ऐसी रेसिपी लेकर के आए हैं जो कि है केले का हलवा। सामग्री है 2 पके केले, 2 चम्मच घी एंड 2 चम्मच चीनी। 2 चम्मच चीनी केवल, इतनी कम चीनी
0: मैम? इतना मतलब इतने कम सामग्री में वो देख रही हूँ।
1: देखते हैं, हो सकता है मुझे कम चीज में बनाई जा रही होगी, थोड़े में भी। तो आइए निधि, हम बताते हैं विधि।
0: जी बिल्कुल,
1: अच्छी लाइन है ना। आइए निधि, हम बताते हैं इस हलवे की विधि। तो केले को अच्छी तरह तरीके से आप इसको मैश कर लें, और कढ़ाई में देसी घी हो या फिर जिस भी घी में आप खाना चाहते हैं उसमें इसको गर्म करके केले को डालें। मतलब कढ़ाई में घी को गर्म कर लें और केले को डालें, लगातार चलाते हुए इसको पका लें। मतलब पकाते रहना है उसको, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद में चीनी और मेवे को डालकर कुछ मिनट तक पकाएं। वो इसीलिए करना होता है क्योंकि केला अगर आपने भूनना शुरू कर दिया तो वो काला ना पड़ जाए। तो उसके बाद में चीनी और मेवे को डालकर कुछ मिनट तक पकाएं, और उसके बाद माँ स्कंद माता को भोग लगाएं। क्या बात है। और एक चीज और, माँ स्कंद माता को केला, दूध और दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकती हैं। भोग लगाने के बाद इसको प्रसाद में बांट दें। एंड सबसे अच्छी बात बता दूं कि माँ स्कंद माता को केले का जो हलवा है वो और दूध से बनी हुई चीजें अति प्रिय होती है।
0: वाह मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी मुझे भी और हमारे श्रोतागण को भी।
1: हाँ।
0: मैम, और मुझे आज एक नई बात पता चली। ये हलवे में जो केला काला होता है मुझसे कई बार हुआ है।
1: हाँ।
0: पर जो अभी आपने मुझे विधि बताई है कि चीनी डालने से नहीं होता है, अब मैं शायद बनाऊं तो वो काला ना पड़े।
1: जी जी जी जी बिल्कुल, और उसमें क्या कहते हैं कि काला ना पड़े। तो आइए हम सभी जितने भी हमारे भक्तगण हैं जो कि व्रत रखते हैं स्पेशली, तो उनसे भी मेरा यही है कि आप लोग इस व्रत में इस हलवे को बनाएं और हमें भी खिलाएं और आप सब लोग भी खाएं। तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार फिर से मिलेंगे हम एक नई और बहुत ही प्यारी सी बात को लेकर।
0: जी बिल्कुल, तब तक आप जाइएगा कहीं नहीं, सुन सहेली सुनते रहिए।

क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: जी वेलकम बैक, आपका स्वागत है सुन सहेली में। जैसा कि आपने अभी सुना, हमने इतनी सारी बातें की, तो हम नवरात्रि के दिनों में नौ देवियों की पूजा अर्चना बहुत मन से करते हैं, और हमारी मान्यताओं के अनुसार हमें जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562। ये व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9216-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: हाँ जी, फिलहाल 3:05 और 3:05 हो गए। आपके शो का टाइमिंग है कॉलेट्यून गोंडा, वो शो जब आपकी मर्जी से हम चलते हैं, यानी आप बताते हैं कि भाई सॉन्ग्स कौन से प्ले होंगे, और खास कर कभी आप डेडिकेट करते हैं तो कभी सुनने का मन होता है, तो कभी कभी आपका मूड ही ऐसा हो जाता है कि आप ऐसे गानों को सुनना प्रेफर करते हैं। सो एक बार वापस से वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक, आज दोपहर में मौजूद है आपकी कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में। सो यस, फिलहाल मुझे ये बताओ भाई, पहला सवाल तो ये कि आजकल कौन सा गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसको हर किसी की जुबान से सुना जा रहा है? अगर ऐसा कोई भी आपके पास आइडिया है तो आप बता सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम वेलकम करना चाहेंगे आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम क्वालिट्यून गोंडा में। आज रहेंगे आपके साथ आपके अदनान। सो चलिए भाई, रिक्वेस्ट शुरू करते हैं, लिया जाए रिक्वेस्ट। तो पहली जो रिक्वेस्ट है वो सुनील कौशल जी की है, और आपने ऑफकोर्स रिक्वेस्ट किया है गूगल बता दो खुश रहने की दवा। ओहो, तो चलिए अब गूगल से पूछ रहे हैं तो गूगल ही बताएगा, नहीं तो हम अपना बताने वाले थे, लेकिन अब आपको गूगल पे ज्यादा यकीन है तो मैं क्या कर सकता हूं। फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: हाँ जी, सो फिलहाल मैंने पूछा है आपसे कि भाई आप चैट बॉक्स पर आकर के बता सकते हैं कौन सा गाना आजकल बहुत तगड़े से वायरल हो रहा है, बिल्कुल वायरल फीवर से ज्यादा उसका खुबार चढ़ा है, मतलब जितना बुखार अभी तक लोगों को नहीं चढ़ा, इवन मुझे खुद जुकाम हो गया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो जुबान पे लोगों के गाना है। जस्ट गेस करना है और बताना है चैट बॉक्स पर। फिलहाल चैट बॉक्स पर कुछ मैसेजेस जो हैं वो आ चुके हैं, और सबसे पहला जो मैसेज आज के इस शो में आया है वो आया गुलफशा का। गुलफशा लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपको हंसी इतनी तेज आ गई ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ऑलराइट, सो अरविंद भी मौजूद हैं, वेलकम करते हैं अरविंद आपका भी। एंड ऑफकोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग हमको सुन रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम्स का रिक्वेस्ट जो है वो आप करते हैं सॉन्ग्स की। So, आज आपके मॉर्निंग जॉग दोपहर में मौजूद हैं आरजे अदनान आपके क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम में। और फिलहाल अब हम चलते हैं अगले सॉन्ग के रिक्वेस्ट की तरफ और बताते हैं कि अगला सॉन्ग किसने रिक्वेस्ट किया है। सो फिलहाल साहिबा ने किया है, सबीहा ने, और सबीहा ने किया है ये तूने क्या किया। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अभी बस शो ही करना शुरू किया। अच्छा सॉरी, गाने के बारे में। ऑलराइट, सो चलिए भाई, जबरदस्त गाना है, जबरदस्त इमोशन है, फीलिंग है, और दोपहर भी तो जबरदस्त गुनगुनी सी है, हालांकि थोड़ा ज्यादा ही धूप है ना।
1: दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है।

ये तूने क्या किया? वायरल गाना नहीं बताया। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे गाने फिलहाल इस वक्त जुबान पे टपक रहे हैं, मतलब बिल्कुल एकदम घर घर में जा रहे हैं। जिस रील को आप स्क्रॉल करिए, हर दूसरी से तीसरी रील वैसी निकल रही है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा वायरल हो चुके हैं गाने। एंड फिलहाल कुछ चैट बॉक्स में मैसेजेस भी आ गए हैं, तो चलिए बताते हैं उसके बाद क्या क्या मैसेजेस आए हैं। हमने जो अभी तक मैसेजेस लिए थे वहाँ, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो मैसेज आ रहा है वो आया है कमल नैन का। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग वाले हम आई नो आरजे हैं, लेकिन फिलहाल आफ्टरनून में है। शायद अभी आपने लंच नहीं किया हमारी तरह, राइट, इसीलिए तो भटक गए। कोई बात नहीं। इसके बाद गुलफशा लिखती है, अदनान सर आप बताओ कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ, जुकामी आवाज़ एंजॉय कर रहा हूँ। आसिफ अंसारी फ्रॉम हैदराबाद, कैसे कैसे? ओ हो, हनी सिंह का गाना सुना, राइट। एंड अरविंद लिखते हैं, अदनान सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप शो में आए, थैंक यू सो मच टू यू कि आपने हमारा इतना बेहतरीन वेलकम कर दिया। सो इसके बाद जो है अब नेक्स्ट राजकमल यादव जी हैं ग्राम बरैया से, और लिखते हैं पोस्ट ब्लॉक सूरतगंज बाराबंकी से सुन रहे हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते, आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजी बहुत शुक्रिया, आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड अंबर जी हैं आज आप, जी हाँ कोई हैरानी। महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान, गुड आफ्टरनून। नमस्ते अदनान सर, गुड आफ्टरनून टू यू। नमस्ते आपको भी। एंड यस, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आप लोग, अच्छा क्यूट है, ओह माय गॉड, शर्मा देते हैं आप तो। बहरहाल चलते हैं, ध्यान देते हैं अपने शो पे और चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। सो अगली जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपको नहीं पता है ना, तो वही तो मैं बताने वाला हूँ। अगली जो रिक्वेस्ट आई है वो दरअसल संगीता जी की है, बलिया से। मैया जब तक तू जियो मैं सुहागन रहूँ, क्या बात है, थैंक यू सो मच इस ऑफकोर्स भक्ति सॉन्ग को रिक्वेस्ट करने के लिए। फिलहाल आइए आपकी रिक्वेस्ट पे इस भक्ति सॉन्ग को सुनते हैं आपके कॉल ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, क्योंकि आप लोगों ने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सो भाई ये आपने ऑफ कोर्स भक्ति सॉन्ग एंजॉय किया आपने कॉलेज ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, और ऑफ कोर्स भक्ति सॉन्ग क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी जो है वो नवरात्र चल रहा है और जब कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे जो खुमार चढ़ता है उसके आसपास की पूरी वाइब होती है और वही वाइब फिलहाल हम फील कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, अगली रिक्वेस्ट की तरफ। अगली जो रिक्वेस्ट आई है आपके कॉल के जरिए वो आए बाबू अंसारी की फ्रॉम बाराबंकी, प्यार का फंडा। भाई प्यार का फंडा तक तो हम ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि भाई आप भी कॉल कर सकते हैं, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, आप फ्रिक्वेंसी से इस वक्त कार में ड्राइव करते हुए, ट्रांजिस्टर पर खेतों में काम करते हुए, या फिर रेडियो गार्डन से दुनिया के किसी कोने में, और या फिर रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है भाई कोई गाना आपको अपने मनपसंद का सुनना है तो आप भी कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर, 6393316429 पर। और अब रिक्वेस्ट का वक्त है भाई, अगली रिक्वेस्ट की तरफ आपको ले चले। और जैसा कि हमने बता दिया कि अगले जो गाने की रिक्वेस्ट आई है वो बाराबंकी से आई है, बाबू अंसारी की प्यार का फंडा।

Right choice is your color tune. वेलकम अगेन आपकी कॉलर ट्यून गुंडा प्रोग्राम में। फिलहाल अगली रिक्वेस्ट जो है वो अगला गाना है। वैसे कई गानों को जब अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑफकोर्स ट्रांसलेट करके देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा साउंड करता है। अगर मान लीजिए कि जो गाना अगला रिक्वेस्ट हिंदी में बताने वाले हैं उसको अगर आप अवधि में अपनो ऑफकोर्स यहाँ की रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। हालांकि ये गुलाब शान सारी जी ने रिक्वेस्ट किया है, बट अगर इतनी ही लाइन को अगर हम अवधि में बोलना चाहें, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, तो आप कैसे बोलेंगे? और अगर कोई बोलने के शौकीन है तो भाई चैट बॉक्स पर आकर के आप बता सकते हैं कि हम ऐसे बोलेंगे। हाँ जी। फिलहाल गुलाब शान सारी जी ने रिक्वेस्ट किया है और चलिए भाई इनकी अगली रिक्वेस्ट की तरफ सुनते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है अलका और जी की आवाज़ में है और उदित नारायण जी बतौर मेल प्लेबैक सिंगर हैं इसमें, और साथ ही साथ ये अक्षय कुमार पर और दिव्या खोसला कुमार पर फिल्माया गया गाना है एंड ऑफ कोर्स आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए भाई इस गाने को एंजॉय करते हैं।

बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई आया है भैया कमल नयन जी का। क्या लिखते हैं आइए बताते हैं। ये लिखते नहीं बल्कि इंक उड़ेल की पूरा छाप देते हैं और ये लिखते हैं कि हम मैं तुसे इलू इलू आई लव लू हुई गवाह है। बहुत सही। वैसे हमें बोलना होता तो हम इतना खास ना बोल पाते, बस हम इतना ही बोलते कि हम मैं तुसे प्यार भवा है। अब का कीन जाए भैया, अब का करिए, अब बताओ हमरे कोनो गलती गलती रही का। जैसे आपस में हम लोग अक्सर ये कोई भी इस तरह की कॉन्वर्जेशन सुनते हैं और आपस में बोलते हैं कि भैया ये हो गया, बताओ का करी, हम का करी, कौन हम किए रहन का। तो इस तरह से जो है वो अवधि में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह आएगा। फिलहाल चलते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। एंड थैंक यू सो मच कमल जी कि आपने आकर के बताया। सो भाई मेरा शायद नाम सुनते ही और जानते ही कि मैं आया हूँ, तो इसलिए रईस जी ने जो है बड़ी अच्छी एक खूबसूरत सी रिक्वेस्ट कर दी है और अदनान समी का लिफ्ट करा दे। ऑफ कोर्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग, यस ऑफ कोर्स इसी में तो है। तो चलिए भाई ये गाना सुन लेते हैं और ज़बरदस्त है भाई, अदनान समी साहब है तो वैसे ही म्यूज़िक भी होने वाला है, वैसे ही फ़न भी होने वाला है। एंड अदनान समी गाने में आर जे अदनान स्टूडियो में आइला, क्या समा बन रहा है, वाह।

तो भैया ये गाना जब से चला हुआ ना तब से हम बचपन से परेशान है, पता है क्यों? क्योंकि बात ये है कि यार जब भी ये गाना कोई सुन के आता है तो मुझसे ही कहता है, अरे नान भाई लिफ्ट करा दे हमको। अब कौन सी लिफ्ट भैया, फिलहाल तो गोंडा में अब जाके कुछ हॉस्पिटल्स पे लिफ्ट देखने को नजर आई है। हालांकि दूसरी लिफ्ट ये होती है कि भैया ऐसे हाथ दिया, ओ भैया हम भी जा रहे हैं, अम्बेडकर चौरा लेके चलोगे क्या? सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, आपके आरजे अदनान। सो ये सब वक्त है अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ने का और थोड़ा सा सैडू सैडू हो जाने का, क्योंकि बहुत देर से आप खेल खिला रहे हैं, हमसे ये देखा नहीं जा रहा है। अगली सॉन्ग की रिक्वेस्ट जो है वो निशा जी ने की है, किसी को किसी की खुदाई ने मारा तो किसी को बाइक की घुमाई ने मारा, मतलब मुझे, क्योंकि रात में घूमने का शौक है, इस वजह से जो है वो जुकाम हो गया है। सो इसीलिए मैंने कहा भाई किसको किसने कैसे मारा ये नहीं पता, बट फिलहाल मुझे मेरी बाइक की घुमाई ने मार दिया है। हालांकि कोई बात नहीं, फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं आपकी कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 91.6 FM।

फिलहाल आपको तो नहीं जुकाम ने मारा है, अगर आपको ही मारा होगा तो भाई आप भी ऐसे ही याद कर लूंगे इस गाने को। फिलहाल जिनको भी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट करानी है अरविंद जी आपको भी, तो कॉल जरूर करना पड़ेगा और कॉलिंग का नंबर है 6393164329। ऑफकोर्स इसी नंबर पे कॉल करना है और यही कॉल आपकी हमारी रिक्वेस्ट को एक करती है यानी जोड़ती है। फिलहाल चलिए भाई चलते हैं अगले। ऑफ कोर्स भजन की रिक्वेस्ट आई हुई है और भजन किसने रिक्वेस्ट किया है ये भी हम बता देते हैं। सो अगला जो भजन है वो सृष्टि जी ने रिक्वेस्ट किया है। चलिए आइए आपकी रिक्वेस्ट पे इस खूबसूरत से भजन को सुनते हैं आपके क्वालिट्यून गुंडा प्रोग्राम में विद योर जॉक आर जे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली।

सो बड़ा ही खूबसूरत सा भजन आपने सुना, ऑफ कोर्स निशा जी की रिक्वेस्ट पर। अब फिलहाल वक्त है अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ने का। अगली जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है साक्षी की, और साक्षी को सुनना है आशिकी 2 का वो गाना जिसने अरिजीत के करियर को पहुंचा दिया उरूज पर और पहुंच गए ऑफ कोर्स फलक पर। तो आइए इस लाजवाब, इस शानदार, इस बेमिसाल सॉन्ग को सुनते हैं आपके क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम में, आपके जौकार जो नाग।

कुछ ऐसे म्यूजिक्स, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं कि भाई साहब, मतलब जिनको आप सुन लो तो ऐसा लगता है कि भाई क्या चीज़ है यार, मतलब क्या चीज़ है। सो ऐसी ही ये सॉन्ग है और इसी ने करियर को ऑफ कोर्स अरिजीत के काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। फिलहाल आइए इसी के बाद चलते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट, जो कि महेंद्र ने फ्रॉम राजस्थान से किया है इस इश्क मोहब्बत की। सो ये मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का नगमा है और जुल्म की पुकार मूवी से है। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं आपके साथ आपके क्वालिटी नू मुंडा प्रोग्राम में।

क्या बात है भाई, ये ऑफ कोर्स जो रिक्वेस्ट ली है हमने महेंद्र की फ्रॉम राजस्थान से। अब चलते हैं अगले गाने की रिक्वेस्ट की तरफ, और अगले गाने की जो रिक्वेस्ट आई है वो सुरेंद्र यादव जी का ऑफ कोर्स। ये भजन सुनने का मन था, और आइए नवरात्रि स्पेशल ये भजन आपको सुनाते हैं आपके कॉल ट्यून गुंडा प्रोग्राम में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम।

क्या बात है भाई, बड़ा ही खूबसूरत सा भजन आपने रिक्वेस्ट किया, थैंक यू सो मच टू यू। अब इसके बाद देखिए, यही तो मज़ा है कि फ्लेवर मिलता है कभी किधर का कभी किधर का। सो अगला जो है वो रिक्वेस्ट आई है खमसा की, और इनका भैया कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न वाला है, जिन जी ट्यूशन में बदमाशी। हालांकि ये मैंने खुद भी नहीं कभी सुनी, अब आइए देखते हैं भाई कि क्या है ऐसी बदमाशी की बात इसमें की जा रही है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

भैया ये है ट्यूशन बदमाशी का। फिलहाल इतनी बदमाशी हमारे टाइम में नहीं चलती थी। मतलब यार अभी भी खौफ था, मतलब जैसे ही देख ले अपने टीचर को साइड से चेंज होकर के निकल जाते, रास्ते ही चेंज कर लेते थे। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त दौर भी हमने भी जिया। और आज के बच्चे भाई बहुत आउटस्पोकन है, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार हम अपनी चीज़ों को नहीं कह पाते थे, बट आज का जेंजी कह पाता है, खुल के बात करता है। दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली यार, ये अप्रिशिएट करने लायक है बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलिए भाई अब चलते हैं अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ। और आसिफ अंसारी जी की है अनदेखी अनजानी सी। ऑफकोर्स ये गाना मुझे भी बहुत पता नहीं क्यों पसंद आता है, शायद म्यूजिक इसका ऐसा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो चलिए भाई आपको भी ये सॉन्ग सुनाते हैं आपके कॉलर ट्यून गुंडा प्रोग्राम में, सिर्फ और सिर्फ आरजे अदनान के साथ, है ना।

अनदेखी अनजानी सी थी, लेकिन जो देखा हुआ और जाना सा है वो सुरेंद्र यादव जी का कहना है गौरा चौकी से कि भाई आज उनके यहाँ चौकी गौरा चौकी बाजार में माँ भगवती का विशाल जागरण का आयोजन है जिसमें सभी श्रद्धालु आमंत्रित है। तो चलिए भाई, अगर आपके पास भी मौका है तो आप जरूर जाइए गौरा चौकी और इस जागरण का ऑफ कोर्स पूरा का पूरा फायदा उठाइए। और फिलहाल अब हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ, और अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट जवाहरलाल प्रजापति जी ने किया है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम जी, ये चीज़ तो बहुत पहले आपने कह दिया था। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं आपकी कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में। आपने ट्यून कर लिया है कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अपने आज के दिन आपके रेडियो जॉक आरजे अदनान के संग, है ना। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं भाई।

सुबह ही काफी सारे मैसेजेस भी हैं। सुरेंद्र यादव जी ने थैंक्स बोला, थैंक्स आपको भी कि आपने हमको बताया इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट। रोशनी रावत जी हैं, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। धर्मेश त्रिपाठी, हेलो हेलो हाय धर्मेश। एंड यस ऑफ कोर्स, इसके बाद जो मैसेज आया है गुलफशा का, काफ़ी मज़ा आया है। पप्पू जी हार्डवेयर गोंडा से, आपका भी स्वागत है। एंड यस ऑफ कोर्स, इतने सारे मैसेजेस, इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। भाई बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ और बताते हैं अगला सॉन्ग किसने रिक्वेस्ट किया है और ऑफ कोर्स कौन है इसको रिक्वेस्ट करने वाले हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, अर्ज किया है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट किया है मुमताज साहब ने। चलिए, वैसे कोई ये शेर नहीं था, हालांकि बस बनाने की एक असफल सी कोशिश थी, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको पसंद जरूर आया होगा। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं जो आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक माना जाता है।

0: है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, क्या बात है। थैंक यू सो मच टू यू एंड राजकमल यादव जी। दरअसल गाने जो हम प्ले करते हैं वो करते हैं हिंदी सॉन्ग्स या फिर पंजाबी, फिलहाल भोजपुरी नहीं प्ले कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकमल यादव जी। एंड नरेश प्रजापति जी भी आ गए हैं और आपने कहा है गोंडा की शान है ज्ञानस्थली एफएम। यस ऑफ कोर्स, हमेशा की तरह। फिलहाल आइए कमल नयन जी के रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा भजन, मैया की मुखड़ा निहाल कलियेबा। सो भैया चलिए इसको सुनते हैं, और फिलहाल इस भजन को सुन लेने के बाद भी कुछ और रिक्वेस्ट हैं जिनको हम सुनने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं।
1: माता के दरबार में आए सभी भक्तों की।
0: सो भाई इस प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए अपना, और आप हमारे साथ बने रहिए अपने क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम में।

0: हमार शक्ति के स्रोत परमादरणीय श्रोता नायक हम माई के भक्त लोग
1: और सच में कितना बेहतरीन होता है भाई इस तरह से भजनों को सुनना, स्पेशली जब नवरात्र चल रहा हो। चलिए इसी कड़ी में अब हम चलते हैं आगे रिक्वेस्ट की तरफ। और अगली जो रिक्वेस्ट आई है वो राजू सलमानी की आई है, आया आया अटरिया पर कोई चोर। अरे भाई देखे जरा हम भी कौन है ये चोर। चलिए भाई इसको पहचानते हैं फिलहाल और सुनते हैं आपका क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम आपके ऑफकोर्स आरजे अदनान के साथ।

क्या बात है, आया अटरिया पे कोई चोर आया। तो फिलहाल इस ऑफ कोर्स सॉन्ग को हमने सुना, काफी ज्यादा एंजॉय किया। अब चलते हैं हम अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट, जो कि नरेश जी ने लिखा है और भेजा है हमारे पास में, और लिखा है दुनिया से दूर जा रहा हूँ। तो चलिए आइए इस खूबसूरत से भजन को ही सुनते हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, और उसके बाद वापस से आते हैं और कुछ चंद रिक्वेस्ट और अभी भी रह गई हैं।

दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। और ये भी भजन था ऑफ कोर्स नरेश जी की रिक्वेस्ट पर, चूंकि इस वक्त माहौल जो है वो नवरात्रि का है, और बड़ा ही खूबसूरत सा ये भजन हमने सुना हमारे क्वालिटी गोंडा प्रोग्राम में। फिलहाल सुरेश कुमार जी ने भी भेजा है एक भजन की रिक्वेस्ट, तो चलिए भाई आपकी रिक्वेस्ट पे भी आपको ये भजन ज़रा सुना देते हैं, और क्यों ना इस भजन को एक साथ मिल करके ऑफ कोर्स सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं।

हाँ जी, तो भाई ये सुरेश कुमार जी की रिक्वेस्ट पे था ये ऑफ कोर्स भजन, और अब हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ, और ऑफ कोर्स बताते हैं किसने किया है। दरअसल शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने किया है इस गाने को, बादल यूं गरजता है। ओके, सो चलिए भाई देखें कैसे गरजता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपकी कॉल ट्यून गोंडा प्रोग्राम में, और सुनते आइए इस जबरदस्त से गाने को।

हाँ जी, तो भाई ये ऑफ कोर्स हमने बताया कि इसकी रिक्वेस्ट जो है हमारे शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने की थी, और ऑफ कोर्स इसके बाद आज हम चलते अपने आखिरी सॉन्ग की रिक्वेस्ट की तरफ। फिलहाल वो अनु ने कहा था, और कहा था 2026 का कोई भी सॉन्ग जो ऑफ कोर्स हो वो कर दिया जाए, और सभी को डेडिकेटेड रहेगा वो। ऑलराइट, तो चलिए भाई सभी के लिए जाते जाते 2026 का एक ज़बरदस्त हिट सॉन्ग आप ही लोगों के लिए। फिलहाल आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। कमेंट आ गए हैं, ऑफ कोर्स नरेश प्रजापति जी आपका भी स्वागत है, और यस बहुत सारी रिक्वेस्ट को हमने लिया आज, और जो छूट गई है उनसे माजरत, और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कीजिएगा, आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी की जाएगी। फिलहाल आर्जनान को दीजिए इजाज़त, और फिलहाल इस सॉन्ग को करिए एंजॉय कॉलचिंग गुंडा प्रोग्राम में। फिलहाल ऑफ कोर्स सुनते रहिए अपना रेडियो 11 89.6 FM।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बिलसर रोड, गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
2: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आने के बाद मेरा सबसे पहला आज आपसे कहना होगा जय जवान जय किसान। दरअसल आज है बृहस्पतिवार, और आप सभी को पता है कि हर बृहस्पतिवार शाम 5 से 6 बजे हम गोधुली स्पेशल खेत खलिहान प्रोग्राम लेकर के आते हैं। और आज भी हम एक खास विषय पे लेकर के इस प्रोग्राम को हाजिर हैं, लेकिन अभी तक के इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमारे इस प्रोग्राम में दो बल्कि हमारे गेस्ट होंगे। जी हाँ, सो खाद चूंकि इतना बहुत बड़ी विषय की बात है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हमारे साथ में दो गेस्ट हैं, और हमारे को होस्ट हमेशा की तरह इरफान शाह जी हैं। सबसे पहले तो हम इरफान शाह जी का वेलकम करते हैं अपने इस शो में।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हम बता दें कि आज हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि है वो है मिस्टर SP मिश्रा, ADU ISB रिटायर्ड, आपका हम स्वागत करते हैं।
4: थैंक यू।
2: और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, जो कि एडवाइजर हैं ऑर्गेनिक के, आपका भी हम स्वागत करते हैं।
5: थैंक यू सर,
2: थैंक यू सो मच। सो हमारे श्रोताओं, हमने जैसा कि बताया कि आज का हमारा विषय जो है वो बहुत ज्यादा खास है, विषय का नाम है खाद। तो हमारे किसान भाइयों को तो खाद के बारे में बड़ी अच्छे से जानकारी होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसे कई सारे मिथ्स होते हैं, या शायद जानकारी के अभाव में चीजें बेहतर नहीं हो पाती हैं, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन जो भी श्रोता इस वक्त हमको शहर से सुन रहे हो और वो सिर्फ जानते हो कि खाद जैसी कोई चीज होती है, तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न मैं मिस्टर SP मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि खाद किसे कहते हैं, पहले तो आप हमको ये बताइए।
6: खाद जो फसलों को, फूलों को, फलों को स्वस्थ बनाता हो उसे खाद कहते हैं। हमारे जीवन में ये सभी बहुत उपयोगी हैं। इसके जो अच्छे गुण होते हैं उसको किसानों को जानना चाहिए, और किसान भाई बहुत से जानते भी हैं।
2: जी, तो आपने ये कह दिया कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट है, तत्व है। अब चूंकि बात आपने बता दी खाद किसे कहते हैं, अगला प्रश्न मेरा आपसे ही यही है कि खाद कितने प्रकार की होती है?
6: मुख्यतः खाद चार तरह के खाद हैं जो ज्यादातर प्रचलित हैं किसान भाइयों के बीच में। हरी खाद, कंपोस्ट खाद, रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद।
2: जी, तो ये चार तरह की आपने खाद का नाम लिया। अब हम चाहेंगे कि उन खादों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप बताएं कि हरी खाद में क्या होता है, कंपोस्ट में क्या होता है, रासायनिक में क्या होता है और जैविक खाद में क्या होता है।
6: थैंक यू सर। रासायनिक खाद जो केमिकल से बनी हुई हमको मार्केट से तमाम कंपनियां बनाती हैं, DAP है, यूरिया है, NPK है, सुपरफास्फेट है, पोटास है, ये तो रासायनिक खादें मिलती हैं। साथ में कंपोस्ट खाद जो है वो हमारे किसान भाई बनाते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी एग्रीकल्चर विभाग भी देता रहता है, अगल बगल से भी लोग सीखते रहते हैं। इसके लिए 3x2x1 मतलब 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें घास फूस, गन्ने की पत्ती, हमारे धान के पुआल जो होते हैं उन सबको इसमें डाल के सड़ाया जाता है, ऊपर से गोबर की खाद डाली जाती है और यह 3-4 महीने 5 महीने में सड़ करके अच्छी भुरभुरी काली खाद बन जाती है जो कंपोस्ट खाद कहलाती है।
2: जी, तो अभी आपने खाद के बारे में बताया लेकिन आपने एक नाम इस्तेमाल किया, गोबर की खाद। अब प्रश्न ये भी उठता है कि भाई गोबर की खाद तो हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन दरअसल इस प्रश्न का उत्तर हम जानना चाहेंगे मिस्टर विनोद त्रिपाठी जी से कि आप बताइए कि ये गोबर की खाद के क्या फायदे हैं और कैसे बनती है।
4: नमस्कार सर, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके इस रेडियो स्टेशन में आने का और मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले पूर्व में हमारे किसान भाई गोबर के खाद से जो कि गाय और भैंसों से जो है मतलब उनके गोबर निकलते थे, फिर उसको एक घूर एक गड्ढे में डालते थे, वो सड़ जाती थी और उस खाद को हम खेतों में बुवाई के समय यूज करते थे, प्रयोग करते थे और उससे क्या होता था कि हमारी फसल बहुत अच्छी होती थी, उसमें स्वाद होता था, उसमें जो सब्जियां पैदा होती थी उसमें स्वाद होता था। आपको पता होगा सर कि जैसे गोभी आलू की सब्जी बनाते थे पहले तो उसमें पूरे कमरे में महकता था और बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत अनाज में भी और गन्ने में भी बहुत सारे जगह पे आपको उसकी स्मेल मिलती थी, लेकिन आज नहीं है। उसकी वजह ये है कि आज हम ज़्यादातर आसानी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय भैंस सब नहीं रखते हैं तो वो उनके पास गोबर की खाद नहीं हो पाती है और हमें इस बीच में जब केमिकल फर्टिलाइज़र का उद्भव हुआ, उसका जन्म हुआ तो उसके बारे में जनाया गया किसानों को। हमारे किसान भाई DAP यूरिया और ये पोटास और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके बारे में जानते ही नहीं थे, तो हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने जो उस विभाग में काम करते थे किसान भाइयों को बताया कि अगर इसको आप डालते हैं तो आपको आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो फसल बढ़ने की लालच में, पैदावार ज़्यादा होने की लालच में किसानों ने उसका प्रयोग करना शुरू किया और प्रयोग इस हद तक करना शुरू कर दिया कि आज हमारी मिट्टी बीमार हो गई है। आज हमारी मिट्टी, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हम जो देते हैं वही पाते हैं
2: जी।
4: तो जो हम आज हम खेतों में जहरीले पदार्थ डाल रहे हैं, अधिक से अधिक डाल रहे हैं, तो हमारी मिट्टी, हमारी हमारा खेत हमें वही प्रदान कर रहा है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज अल्जाइमर, पार्किंसंस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं कि हम देखते हैं कि आज देखा जाए तो आज के समय में सभी लोग प्रॉपर भोजन ले रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी और सब कुछ आपके थाली में ऐसा मिल रहा है, फिर भी लोग वीकनेस के शिकार हैं, फिर भी लोग थकान महसूस करते हैं, फिर भी लोग का माइंड कमज़ोर हो गया, भूलने की आदत पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत असर कर रही हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा है और हम किसान भाइयों को गोबर की खाद की तरह जैसे पहले खेती किया करते थे गोबर की रेखा से, वैसे ही अगर उनके पास नहीं है, आज के समय में गाय भैंस ज़्यादा नहीं रख पाने की क्षमता उनके अंदर है, तो कई सारी कंपनियां जो है इस टाइप से ऑर्गेनिक खाद देने की, इस तरीके की खाद बना करके मार्केट में बेच रही हैं। तो मैं कहूँगा कि उसको ले करके खेतों में डालें और हमारी मिट्टी को सुदृढ़ करें, और हमारी मिट्टी शुद्ध हो, उसका पीएच बैलेंस हो, और तो हमें उस अनाज में ताकत भी मिलेगी और हम स्वस्थ महसूस करेंगे।
2: जी, तो ये तो आपने बताया कि गोबर की अगर हम खाद बनाते हैं तो उससे बड़ा फायदा है, क्योंकि आपने बताया कि शुरुआत में हमारे किसान भाई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त हमारे पास अनाज तो बहुत उत्पादन नहीं होता था, लेकिन जो होता था वो प्योर होता था।
4: जी।
2: और आपने कहा कहीं ना कहीं वो शरीर को लगता था कि लोग बहुत मेहनत वाले जो काम होते थे वो आसानी से कर लेते थे, आज आलस का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपने कहा, और इस तरह न जाने और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नजर आती है।
4: जी जी जी।
2: अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये रासायनिक खाद कब लगभग आई और इसको किस तरह से क्यों बढ़ावा दिया गया? उत्पादन बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है या लोगों का स्वास्थ्य भी हमको ध्यान में रखना है?
4: बहुत अच्छा आपने सवाल किया है सर। मैं इस पे बताना चाहूंगा कि मैं बहुत, अभी मैं अपने ही एज की बात करूं तो आज के 20 30 25 साल के पहले जब हम खेतों में केवल जो है गोबर की खाद डाला करते थे, मैंने तो देखा भी है और अपने खेतों में डलवाया भी है। हमारे यहाँ ही 8-8 भैंसे रहती थी, बैल रहते थे, फिर बैल से ही खेती किया करते थे, तो उस समय पर्याप्त मात्रा में गोबर हुआ करता था और आदमी लगा करके हम लोग पूरे खेतों में इतना मतलब लगवा देते थे गोबर की खाद की पर्याप्त मात्रा में हो जाता था, और उसी से धान पैदा होता था, मक्का पैदा होता था, और उसी से जो है गेहूं पैदा होता था, लेकिन स्वाद भी था और स्वास्थ्य भी था, दोनों बातें थी। लेकिन हम ये किसान भाइयों को दोष नहीं दे रहे हैं, जब किसान भाई की पैदावार केमिकल फर्टिलाइजर डालने से होने लगी तो उनके अंदर अधिक पैदावार की लालच उनको जो है ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने पे मजबूर कर दिया। तो लेकिन वो इस बात से अनजान रहे कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, आज मैं बहुत सर आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो सब्जी हमारे किसान भाई पैदा कर रहे हैं उसमें कोराजीन जैसे जहर, बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ डाल रहे हैं कि वो खुद ही नहीं अपने घर में वो सब्जी को बनवाना चाहते हैं या अपने परिवार को देना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि मैंने गलत किया है या मैंने इतना ज़्यादा जहरीला पदार्थ डाला है कि मेरे परिवार को। लेकिन मैं एक बात सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम पैदा कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारी चीज़ें अपने खेत में पैदा कर लूँगा, कुछ ना कुछ चीजें तो हमें अलग से लेनी पड़ेगी। तो जो हम कर रहे हैं वही दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास सर आप लोगों के माध्यम से, आपके रेडियो स्टेशन के माध्यम से ये है कि अगर हम ज्यादा ना कर सकें तो अपने परिवार के लिए 2-3 बीघे ही ऑर्गेनिक खेती करें। तो अगर हर परिवार, हर किसान अपने परिवार के लिए ही अगर ऑर्गेनिक खेती करेगा तो भी हम बहुत सारे परिवार बीमारी से बचेंगे और डॉक्टरों के पास जाने का चक्कर जो है वो खत्म होगा, क्योंकि अनाज स्वस्थ मिलेगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा।
2: क्या बात है, तो आपने कहीं ना कहीं बताया कि हाँ एक जमाना, यानी आपने अपनी बात की कि 25 से 30 साल पहले की अगर आप बात देखते हैं कि गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था, स्वाद भी होता था और स्वास्थ्य भी होता था, और आपने कहा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इस तरह से दिया गया, किसान भाइयों के मन में डाला गया कि उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ा तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भी आया कि हाँ ये बेहतर तरीका है। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि शायद ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उन्होंने दो तरह से उगाना शुरू किया, एक बेचने के लिए जो हम और आप खाते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर्स खाते हैं, एक अपने घर के लिए जो कहीं ना कहीं वहाँ शायद वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो अब अगला प्रश्न ही आता है जैविक खाद के बारे में, तो जैविक खाद के बारे में मैं मिस्टर एसपी मिश्रा सर से पूछना चाहूंगा कि जैविक खाद में तो हमने अंतर जान लिया कि जैविक खाद से फायदा है और रासायनिक खाद से कहीं ना कहीं उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो जैविक खाद में ऐसी कौन कौन सी चीज पड़ती है, हम आपसे जानना चाहेंगे।
6: जी सर, जैविक खाद जैसा कि आप जीवाश्म जिसमें कहा जाता है, जीवाश्म जो जीव होते हैं, हमारे मित्र जीव जो हैं जैसे केचुआ हैं, केचुआ जो होते हैं वो हमारे लोगों के मित्र कीट माने जाते हैं, और छोटे छोटे ऐसे भी जीव हैं जो हमारे फसलों को परागण करते हैं, बहुत ही अच्छा उसको स्वास्थ्य देते हैं। तो उन सब का ह्रास होता जा रहा है रासायनिक खादों को डालने से। हमारे खेतों में अब केचुए नहीं दिखाई देते हैं, नहीं पहले केचुए खूब दिखाई देते थे लोगों को, तो ज़मीन से हमारे केचुए पलायन कर रहे हैं, वो लगभग समाप्त, मतलब उनका जीवन लीला समाप्त होती जा रही है, और केवल रासायनिक खादों का और रासायनिक दवाओं का ही दुष्परिणाम है, जिससे कि हम सभी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जी, जो जैविक खाद हमारी है वो जीवाश्म है, हम उसमें कई तरह से बना पाते हैं, जीवामृत जैसे हम बनाते हैं, या कंपोस्ट भी हम बनाते हैं, उसमें भी हमारे ह्यूमिक ही बनता है। इसी तरह से हम अगर हरी खाद डालते हैं तो हरी खाद का भी हम प्रयोग जब करते हैं तो हरी खाद भी हमको सनई ढेंचा हम खेतों में बोते हैं, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उसी में जुताई करके छोटे छोटे टुकड़ों में पानी भर करके उसको हरी खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
3: जी अब एसपी सर से हम जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छी खाद कौन सी होती है।
6: सबसे अच्छी खाद हमारी ऑर्गेनिक खाद जिसे हम कहते हैं, जीवाश्म खाद, जिसमें हमारे वो सारे तत्व होते हैं जो फसलों को, फलों को, फूलों को स्वस्थ रखते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाते हैं। हम यदि इस तरह से खेती करें कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, जीवन हमारा अच्छा हो, तो हमको ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए।
3: जी, खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए और खाद कब डालना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को सर आप बताएं, क्योंकि जब मात्रा अच्छा होगा तो पैदावार भी उसका अच्छा होगा।
6: थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं और वो प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हमारा बीपी हमारा अगर हाई है तो दिक्कत है, लो है तब भी दिक्कत है। इसी तरह से हमारे मिट्टी को, हमारे धरती माँ को वही चीज़ चाहिए जो बैलेंसिंग हो। बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो हमारी धरती माता वो चीज़ हमको नहीं उत्पादन करके देंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। इसके लिए तीन चार तरह की खाद, तीन चार तरह का हमारा जीवाश्म खाद जो है वो है, और उसको हम बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के पहले हम डाल सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम डाल सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं, जो किसान जिस तरह से उसको चूज करेगा उस तरह से वो डाल सकता है। और हम यही एडवाइज करेंगे किसान भाइयों को, अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम यही एडवाइज करते हैं कि जो हमारी सब्जियां इस समय तैयार हो रही हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं, बहुत ही नुकसानदायक हैं सभी लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर।
2: जी, चूंकि अभी हमारे जो को होस्ट हैं उनके सवाल पे आपने बखूबी आंसर किया कि कितनी मात्रा में खाद होनी चाहिए और कब डालना है, तो कब का मैं एक बार वापस से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कोई स्पेशली कोई ऋतु होती है जिसमें खाद डाला जाए, या पौधा जब लगा रहे हों, फसल बुआई कर रहे हों तब डाला जाए, या बाद में भी डाला जाए? लेकिन इस सवाल का जवाब मैं मिस्टर विनोद त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगा।
4: बहुत सही सर आपका सवाल है। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, जैसा कि आप जानना चाहते हैं, तो इस चीज को तो वैसे हमारे किसान भाई भी बाखूबी जानते हैं और वो निरंतर समय समय पे खाद डालते हैं, लेकिन आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई फसल लगाना चाहते हैं, जैसे अभी धान की फसल आ गई है, तो खेत में हमें उसी समय खाद को, क्योंकि जैसे हमारे शरीर को मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह के विटामिन्स हमारे शरीर में अलग अलग हमारे जो ऑर्गन है उसमें काम करते हैं, ऐसे हमारे मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम बुआई के समय खाद खेत में डाल देते हैं और खाद डालते हैं और हमारी मिट्टी सुदृढ़ होती है, अपने आप में ताकतवर होती है, तो वो ताकत वो हमारे पौधे को प्रदान करती है। यानी फिर हम दोहराना चाहेंगे वही बात कि इस प्रकृति में हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो हम अपने मिट्टी को जिस प्रकार की खाद प्रदान करते हैं, उस प्रकार का अनाज उस तरीके के तत्व के साथ मुझे वो प्रदान करती है। और रही बात खाद किस समय, तो हम अधिकतर बुवाई के समय हम पहले खेत को बनाते हैं, जुताई करते हैं, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद में दूसरी प्रक्रिया जब पानी की आती तो पानी डालते हैं। लेकिन बुवाई के समय ज़्यादा उपयुक्त रहता है खाद का डालना। उसके बाद जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके ग्रोथ के लिए फिर हम खाद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम 2-3 बार खेतों में जो है खाद का उपयोग करते हैं अपनी फसल की ग्रोथ के लिए।
2: जी, बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया। आपने बताया कि कहीं ना कहीं मिट्टी को पहले, चूंकि वो बेस है, सारी फसल सारा पौधा मिट्टी में ही पनपना है, तो पहले मिट्टी को सशक्त बनाना होगा।
4: बिल्कुल।
2: और उसके बाद जब पौधे बड़े होते हैं, यानी जैसे एक होता ना बच्चा पैदा होने के बाद जब बड़ा हो रहा होता है
4: जी,
2: तो उसकी ग्रोथ के लिए पोषण की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की।
4: जी बिल्कुल,
2: जो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए।
4: जी सर।
2: तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक बार की बात नहीं है, वक्त दर वक्त आपको डालते रहना पड़ता है अच्छी फसल के लिए।
4: सर,
2: ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर इसी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है
4: जी
2: मेरे जहन

0: ऑर्गेनिक खाद अगर हम डालते हैं तो वो एक संपूर्ण खाद होती है अपने आप में। उसमें ह्यूमिक एसिड जो गोबर से बनाया जाता है और उसमें अधिक मात्रा में होता है, तो उसको हम जो है जब बनाते हैं तो सूक्ष्म, जैसे कहते गागर में सागर भरना, तो ह्यूमिक एसिड जो हमारे खेत के लिए बहुत ही जरूरी होता है, पोटेशियम हो गया, फॉल्विक एसिड हो गया जो फूलों को गिरने से रोकता है, फूलों की ग्रोथ के लिए होता है, जो ब्रांचेज होती हैं यानी कि जो हमारे पौधे के डंठल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उन सब चीज़ों में अकेले ये मतलब ऑर्गेनिक खाद जो है वो काम करता है और एक संपूर्ण खाद होता है। जब ये मैं सर आप जानते हैं कि पहले इसी से केवल अनाज पैदा हुआ करता था, बस बात इतनी सी थी कि अनाज कम पैदा होता था, लेकिन आज ये है कि अनाज ज्यादा पैदा होता। लेकिन मैं इस विषय पे किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अनाज हम ज्यादा पैदा कर लें और अस्पताल में रहें तो उस पैदावार से क्या फायदा।
1: बेशक ये बात तो बहुत सही आपने कही है और साथ ही साथ इसी से जुड़ा दो बड़ा प्रश्न जो है वो हमारे मन में चल रहा है।
0: जी सर।
1: एक बड़ा प्रश्न ये है कि भाई आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी, इतने सारे तत्व होते हैं, अब मान लिए मैं ही खेती कर रहा हूँ तो मुझे इतना इतना समय है और ना शायद इतनी ज्यादा समझ है कि मैं हर चीज को ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक खाद खुद से घर पे बना पाऊँ। पहली बात, क्या ये खाद बनी बनाई भी मिलती है, ये मेरा प्रश्न होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि आपने बताया है कि भाई रासायनिक खेती में जो है वो कहीं ना कहीं उत्पादन जो है वो ज्यादा है, तो अगर मान लीजिए कि विनोद त्रिपाठी जी के कहने पे हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल करते हैं यानी ऑर्गेनिक खाद की तरह हम जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका उत्पादन जो है वो घट जाएगा। तो इस सिचुएशन में, इस समय, इन परिस्थितियों में, यानी रासायनिक खाद को हटा करके अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक खाद की तरफ हम जाते हैं तो उससे किसानों को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये हम दो बड़े अहम प्रश्न की तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे और अपने हम दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। हम बता दें कि आज का हमारा विषय है खेत खलिहान में खाद और हमारे साथ हमारे आज जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मिस्टर एसपी मिश्रा हैं जो कि रिटायर्ड एडीयू आईएसबी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में आज मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जो कि एडवाइजर हैं ऑर्गेनिक। सुनते रहिए अपना गोंडावाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, और आज दिन है बृहस्पतिवार का। और ऑफ कोर्स आज ही के शाम हम स्पेशल एपिसोड लेकर के आते हैं, गोधुली स्पेशल खेत खलिहान, जिसमें आज का विषय है खाद। हमारे साथ मौजूद हैं बतौर एक्सपर्ट मिस्टर एसपी मिश्रा, रिटायर्ड एडीओ आईएसबी, और साथ ही साथ डॉक्टर विनोद त्रिपाठी, एडवाइजर ऑर्गेनिक। एक बार वापस से हम आप सब लोगों का वेलकम करते हैं।
6: थैंक यू सर।
7: थैंक यू।
0: और साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे को होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं इरफान शाह जी का भी हम वापस से वेलकम करते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा पहला जो प्रश्न है वो मिस्टर एसपी मिश्रा जी आपसे है, क्योंकि आपने बताया था कि ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाया जा सकता है। तो बताने के आपने तरीके तो बताए थे कि किस तरह बनती है, लेकिन मान लीजिए हर किसान भाई के पास ना इतना समय है और ना कोई ये सोचता है कि भाई इतना हम ना टाइम दे पाएंगे ना इतना मेहनत कर पाएंगे, हमको मिल जाए क्योंकि हमको बाकी भी काम होते हैं। तो उस तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या खुद के बनाने के अलावा मार्केट में भी कुछ ऐसी कंपनीज है या कोई ऐसी खाद आती है जो बनी बनाई मिल जाए और बिल्कुल जैविक खाद हो?
7: जी सर, कई कंपनियां बना रही हैं जो रासायनिक खाद जहां लोग बेच रहे हैं वहां ऑर्गेनिक के रूप में भी अपने पास रखते हैं। उसमें अब बाबा रामदेव जी भी ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं, वो भी उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे करके। और साथ ही साथ तमाम कंपनियां अपना इस क्षेत्र में आ रही, चूँकि सरकार भी ये चाहती है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खाद करें, जैविक खाद करें का खेती करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा पर्यावरण अच्छा हो, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है इन खादों के वजह से, रासायनिक चीज़ों से। तो जैसा कि वर्ड्रिच भी बना रही है, ऐसे ही तमाम कंपनियां हैं जो मार्केट में आई हुई हैं और इनकी उपलब्धता भी लोगों के पास हो रही हैं, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा लिया जा सकता है।
0: जी, तो आपने नाम तो बता दी कि कई कंपनियां आ रही हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे मोटे मोटे तौर पे, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो, इतनी सारी खाद आपने देखा है, कई किसान भाई आपके सामने इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसी खाद जिसका रिव्यू बहुत अच्छा आया हो, जिसको इस्तेमाल करने के बाद उसके परिणाम बहुत अच्छे आए हो, आप कौन सी खाद सजेस्ट करना चाहेंगे?
7: थैंक यू सर। एक भूमिका प्लस, जैसे कि डॉक्टर लोग अपना प्लस का निशान बनाते हैं कि उसमें प्लस ही प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, इसी तरह से वर्डिज कंपनी भूमिका प्लस बनाती है, जो भूमि के लिए और किसान के लिए और सभी लोगों के लिए वो प्लस का ही काम करती है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है।
0: एक तो आपने अहम बात बताई कि वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्या जो आप जिस खाद का नाम ले रहे हैं भूमिका प्लस, क्या ये जैसे अगर मैं फूलों की खेती कर रहे हैं उसमें भी क्या पड़ जाएगी, फलों की और सब्जियों की खेती, क्या सभी के लिए ये एक समान है?
7: जी सर, ये बहुत ही अच्छा फूलों के लिए, फसलों के लिए, फलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको डालने से हमारे फल, फूल, फसल बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बहुत किसानों से हम लोगों को रिजल्ट मिले हैं।
0: अच्छा, तो मतलब आपको जो ग्राउंड से रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि भूमिका प्लस जो है वो चाहे फूलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो, या फसलों में कुछ भी हम अगर लगाते हैं, तो उसमें भूमिका प्लस अपनी भूमिका पूरी निभाती है।
7: जी जी,
0: चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इसको चूंकि अच्छा कहा है, तो हम थोड़ा सा आपसे इस बात को भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें इसमें मिलाई जाती है जिसकी वजह से आप इसको अच्छा कहते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी से।
1: थैंक यू सर। आपको मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी हमारे मित्र मिश्रा जी ने बताया, तो मैंने भी देखा कि ओसवाल कंपनी की भूमिका के नाम से आती है समथिंग 750 रुपए में एक किलो के करीब, 500 ग्राम के करीब पैकेट है उसकी, और बायर की भी आती है। बहुत सारी कंपनियां जो है ऑर्गेनिक खाद बनाती हैं भूमिका के नाम से, लेकिन एक वर्डरिज कंपनी है जो मतलब भूमिका प्लस के नाम से बनाती है, तो उसके पैकेट को मैंने देखा तो उसमें ह्यूमिक एसिड भी 70% है, बहुत ही अच्छे मात्रा में है, जो हमारे मिट्टी के उपजाऊ के मतलब उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उसमें फॉल्बिक एसिड है, जैसे फॉल्बिक एसिड में क्या है कि वो हमारे जितने भी जो पौधे हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसके डंठल, उसकी पत्तियां, उसके फूल, बहुत सारे पौधों में देखते होंगे फूल गिर जाते हैं तो फल ही नहीं लगता, तो उसके लिए भी बहुत जबरदस्त काम करता है। उसमें पोटेशियम भी है जो हमारे फसल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को भी कि जैसे ये भूमिका प्लस जब आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं, तो हमें रासायनिक जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर है, चूंकि खेत हमारा जैसे कोई नशा करता है तो उसको आदत बन जाती है, तो अगर उससे एकाएक उसके नशे को छुड़वाया जाए तो वो नहीं छोड़ सकता, तो धीरे धीरे करके डॉक्टर्स उनको जो है एडवाइस करते हैं, धीरे धीरे करके छुड़वा सकते हैं। ऐसे ही हमारे खेत जो है बहुत ही जहरीले हो चुके हैं, हमारी मिट्टी से सुगंध गायब हो गई है। और मैं जब लोगों को, मैं किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि जब आपको ये केमिकल फर्टिलाइज़र अधिक मात्रा में डाल चुके हो और आपकी हैबिट बन चुकी है, इससे आपकी लागत भी बहुत ज़्यादा लग रही है। किसान भाई ज़्यादातर तो इस बात के लिए परेशान हो, वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे लेकिन खाद ज़रूर खरीदेंगे। आज के समय में तो मैं देख रहा हूँ किसान भाई हज़ारों रुपये का तो खाद एडवांस में खरीद के रखते हैं कि पता चले कि हो सकता मिले या ना मिले। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि उस खाद को, केमिकल फर्टिलाइज़र को 20% पहली बार में कम करना है, और जो ऑर्गेनिक खाद है उसको डालना है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इसका डोज जो है 200 ग्राम प्रति बीघा, जहां इतनी बड़ी बड़ी बोरियां 50-50 किलो की साइकिल पे लाद के लेके किसान भाई धोते रहते हैं, वहां पे हमारा मात्र 500 ग्राम का पैकेट है और उसको आप एक झोले में 50 बीघे के लिए खाद ला सकते हैं, एक झोले में लटका के ला सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इस खाद का भूमिका प्लस का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन, हमने अमरूद में देखा उसका रिजल्ट, हमने सरसों में देखा उसका रिजल्ट, हमने जो है गेहूं में देखा उसका रिजल्ट, और जो किसान भाई खुशी से वो उछलते रहे, वो उन्होंने हमें फोन कर कर के बताया कि मतलब सर ये खाद आपकी बहुत जबरदस्त काम कर रही है और इसको हम भारी मात्रा में कैसे उपयोग करें, उसके बारे में मैंने उनको बताया। और किसान भाई को मैं अपना नंबर भी दूंगा कि अगर वो फोन करेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है और इसका लाभ कैसे लेना है। और अपने तरफ से एक बात जरूर किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार से बढ़के कुछ भी नहीं है, हम स्वस्थ अनाज खाएं और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम अपने परिवार को बीमार होना नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं एडवाइस करता हूं, कहना चाहता हूं कि हम जरूर ऑर्गेनिक खेती करें।
0: जी, आपने ये ऑर्गेनिक खेती के फायदे तो बता ही दिए और साथ ही साथ बताया कि किस तरह से आपने जो एक नाम लिया भूमिका प्लस
1: जी।
0: उसके बारे में आपने बताया कि किस तरह से उसके परिणाम किसानों को डायरेक्ट देखने को मिले, उन लोगों ने आपसे कॉन्टेक्ट करके बताया कि बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है वो मेरे जहन में उठता है कि हम बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं
1: जी,
0: और दवा की या मार्केट में मिलने वाली हर खाने की चीज का एक एक्सपायरी होता है
1: जी।
0: तो जो पौधों को हम खिला रहे हैं, क्या इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है?
1: जी सर, इसकी भी एक्सपायरी होती है, क्योंकि कोई भी चीज इस धरती पे निर्माण होता है तो वो मृत प्राय होता भी है, तो ऑर्गेनिक खाद का भी एक्सपायरी होता है और वो जो जितनी भी कंपनियां बनाती हैं वो उसमें एक्सपायरी डेट लिखते भी हैं, 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है। तो किसान भाई पैकेट पे देख सकते हैं, जब भी वो पैकेट खरीदें तो ये ज़रूर देखें कि इसकी एक्सपायरी क्या है।
0: जी, तो आपने बताया कि जैसे बाकी चीजों की एक्सपायरी होती है वैसे ही खाद की भी अपनी एक्सपायरी होती है और उस पे लिखा होता है पैकेट पे
1: जी,
0: उस कंपनी की फला खाद कब एक्सपायर हो रही है
1: जी।
0: हमारे साथ में हमारे को होस्ट मौजूद है इरफान शाह, ये चलते हैं देखते हैं इनके पास क्या प्रश्न है।
6: हम जानना चाहेंगे डॉक्टर विनोद त्रिपाठी सर से कि अगर किसान भाई इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो सर कैसे प्राप्त करें?
1: जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसे इसको अभी तो इसकी जो भूमिका प्लस आया है मार्केट में, अभी ये नया है लेकिन बहुत ही बेजोड़ है, यूनिक है और किसानों को बहुत अच्छा लाभ भी पहुंचा रहा है। तो इसको कुछ लोग इसका स्टोर बनाने की सोच रहे हैं, अभी स्टोर इसका ओपन भी होने वाला है, लेकिन किसान भाई को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर अगर वो कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनको तुरंत जैसे भी वो चाहेंगे उनको खाद उपलब्ध हो जाएगी
6: जी। चाहेंगे सर नंबर बता दें?
1: हाँ, हम बताना चाहेंगे कि 2 नंबर हम किसान भाई को देना चाहेंगे
6: जी,
1: 9918838335, दूसरा नंबर है 9721072411। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ, 9918838335, दूसरा नंबर है 9721072411।
0: हम चाहेंगे कि एक बार आप इसी नंबर को हिंदी में भी दोहरा दें ताकि हमारे
1: जी 9918883335, दूसरा नंबर है 9720172411। जैसा कि अभी सर आपने पूछा कि इसकी मात्रा
6: जी,
1: तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अभी हमारे किसान भाई बहुत बड़ी बड़ी बोरी में 50 किलो की बोरी में खाद लेके आते हैं मार्केट से, एडवांस लेके आते हैं, कई बार साइकिल पंचर हो जाती है इतना खाद लाद लेते हैं, लेकिन ये छोटे पैकेट में 500 ग्राम के पैकेट में ये खाद आती है। तो कई बीघे की खाद आप एक छोटे से झोले में ला सकते हैं, तो जैसे आप छोटे से झोले में खाद ला सकते हैं ऐसे आपके खेत में ये बहुत कम मात्रा में पड़ता है और ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। जहाँ पे 100 किलो खाद काम करती है वहाँ ये 200 ग्राम काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्र कि ये खाद प्रति बीघे 200 ग्राम की मतलब डोज में रहेगी, इसकी मात्रा जो है 200 ग्राम प्रति बीघा अगर डाला जाए तो किसी भी फसल के लिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो फूल की फसल हो, चाहे किसी फल की फसल हो, 200 ग्राम बीघे, जैसे पेड़ों की अगर आप बात करोगे कि तो पेड़ जितने मोटे होते उसके अनुसार उसके जो है डाइट बढ़ जाती है, उसका मतलब डोज बढ़ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि किसान भाई जो ये नंबर मैं अभी दूंगा अपना नंबर, तो उस पर पूछ सकते हैं कि अगर आम के पेड़ में डालना चाहते हैं या अमरूद के पेड़ में डालना चाहते हैं या किसी और पेड़ में, तो उसकी मात्रा कुछ अलग होगी। लेकिन सर फसलों की जहाँ तक बात है, वो किसी भी फसल के लिए, वो गेहूँ हो, धान हो, ये फूल हो, उसकी एक मात्रा ये है कि 200 ग्राम प्रति बीघा पर्याप्त रहेगा।
6: जी, अब किस तरह से डालना चाहिए?
1: हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो इसको डालने की विधि बहुत ही अच्छी है। एक तो जैसे ही खेत आप तैयार कर दिए, जुताई हो गई, जुताई करने के बाद में आप जो भी खाद मतलब केमिकल वाली डालना चाहते हैं उसको 20% कम करें। इस खाद को 200 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से उसमें मिक्स करके और खेत में डालने के बाद उसमें पानी लगा दें।
6: जी,
1: पानी में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग विशेष होता है, वो तुरंत कैप्चर करता है, हमारी मिट्टी उसको तुरंत कैच करती है।
6: जी, अब सर एक सवाल ये है कि कब कब डालना है, कि जैसे मान लीजिए अगर हम पौधा लगा दिए तब डालना है, उसके बाद में अगर हमारा पौधा तैयार हो गया है, ग्रोथ हो गया है फसल हमारा, तो क्या उस समय भी लगाना है?
1: हाँ, अभी ये सवाल आपने किया है, मैं फिर एक बात ये कहना चाहूंगा कि खाद का प्रयोग मिट्टी को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। तो जब हम किसी भी फसल को लगाने जा रहे हैं, धान गेहूं या चना या मटर कोई भी चीज, तो उससे मतलब कुछ भी बोने से पहले हम उस मिट्टी में खाद एक बार मिश्रित करा दें, मिला दें और उसमें पानी डलवा दें, तो उससे खाद जो है पूरी मिट्टी में मिक्सराइज हो जाएगी और वो मिट्टी हमारी स्वस्थ हो जाएगी, तो फिर आपकी फसल को अच्छी ग्रोथ देना शुरू करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपकी फसल थोड़ा सा उग आती है, 1 इंच 2 इंच या 4 इंच 5 इंच की हो जाती है, यानी कि जब दूसरी सिंचाई आप करते हैं उस समय भी इस खाद का उपयोग करना है। यानी कि हम बात करना चाहेंगे कि जितनी बार आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते थे उतनी बार उसको कम करके इसको भी मिक्सर करके उसके साथ डालना है। बस इसका डोज जो रहेगा वो 200 ग्राम प्रति बीघा रहेगा।
0: जी, तो कितनी मात्रा में डालना है और कैसे डालना है, ये तरीका आपने हमारे को होस्ट इरफान शाह जी के सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा मेरे मन में भी एक प्रश्न आ रहा है। आपने बताया कि जब पहली बार हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो 80-20 का रेशियो आपने बताया कि 80% वही आपकी जो रहेगी रासायनिक खाद और 20% का मतलब जो रहेगा ये आपका ऑर्गेनिक खाद रहेगा। तो इसके बाद मान लीजिए अगला किस तरह टेन्योर तय करे कि अब कितने परसेंट हमें रासायनिक खाद कम करना है, क्या धीरे धीरे करके हम बिल्कुल रासायनिक खाद से ऑर्गेनिक खाद को रिप्लेस कर देंगे, कैसे क्या होगा?
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये हमारा तो मकसद ही है कि केमिकल फर्टिलाइजर को दूर किया जाए हमारी मिट्टी से और हम बीमारी से बचे, हमारा परिवार स्वस्थ हो, ये मेरा मिशन है। मिशन की बात मैं करूँ तो मेरा जो मिशन है उसका नाम है अमृत तुल्य खेती स्वस्थ भारत। इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और किसान भाइयों के बीच में जा करके और उनको ये बताते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है और इफेक्ट क्या है। तो जैसा कि आपने पूछा कि किसान भाई कैसे निश्चित करें कि हमें इसमें कितना डालना है, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप खाद डालने जाते हैं तो अपनी उस खाद को केमिकल फर्टिलाइजर को कम करते जाएं और धीरे धीरे, लेकिन इसकी मात्रा तो उतनी ही रहेगी और उसकी मात्रा आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी और 4-5 स्टेप में 6 स्टेप में आपका वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं भी डालोगे तो भी ये आपका जो है इससे फसल होगी। जैसा कि मैंने इसको मतलब अकेले भी डलवा के देखा है, इससे फसल हो रही है।
0: जी, तो ये तो आपने बताया और साथ ही साथ इसी प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा कि मिस्टर एसपी मिश्रा जी दे।
7: जी सर, जैसा कि अभी 20% लेस करने की बात रासायनिक खाद की हम लोग कर रहे हैं, तो हर बार हमको 20% लेस करना है। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर 10 किलो डाल रहे हैं पर बीघा, तो हम 8 किलो रासायनिक खाद डालेंगे प्लस भूमिका प्लस डालेंगे। अगले बार जब हम डालेंगे तो 6 किलो डालेंगे प्लस भूमिका प्लस डालेंगे। अगले बार जब हम डालेंगे तो 4 किलो डालेंगे प्लस भूमिका प्लस डालेंगे। अगले बार जब डालेंगे तो हम 2 किलो डालेंगे प्लस भूमिका प्लस डालेंगे, अगले बार हम खाली भूमिका प्लस ही डालेंगे और हमारा उत्पादन जो होगा वो 10% से लेकर 25% तक बढ़ जाएगा।
0: क्या बात है, मतलब आपने इसको सीधे सीधे एक टेक्निकल वे में बता दिया कि हम 20-20% के हिसाब से कम कर सकते हैं। 10 किलो का भैंस आपने एक उदाहरण
7: दिया
0: कि मान लीजिए अगर कोई 10 किलो से ऐसे डालता है तो इस तरह करके कम
7: अब इससे
0: कर
7: अगर ज्यादा वो डाल रहा है तो उस हिसाब से 20% लेस करेगा। अगर वो 20 किलो डाल रहा है तो 16 किलो डालेगा, फिर 12 किलो डालेगा, फिर 8 किलो डालेगा, फिर 4 किलो डालेगा, फिर कुछ नहीं डालेगा।
0: जी जी,
7: अगर इसी मात्रा में आगे वो बढ़ा रहा है तो 20% लेस करना,
0: यानी कुल मात्रा से 20-20% करके कम होते जाते जीरो पे आ जाएगा। और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब हम पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती कर रहे होंगे, यानी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसमें आपकी फसल जो होगी वो स्वस्थ फसल होगी।
7: जी सर,
0: ये बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न का उत्तर मैं मिस्टर विनोद त्रिपाठी जी से ही जानना चाहूंगा कि आपने बताया था कि भाई रासायनिक जो खाद है उसका इस्तेमाल किसान भाई मान लीजिए आपके कहने से हटा देते हैं, उत्पादन में कमी आ जाएगी, तो आखिर ऐसा करने से उनको नुकसान क्या हो सकते हैं और फायदा क्या हो सकता है, इसके बारे में बताएं।
1: सर, आपका सवाल बहुत ही उत्तम है। मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि पहले भी कम पैदावार होती थी जब वो गोबर की खाद डाला करते थे हमारे किसान भाई, हो सकता है बहुत हमारे बुजुर्ग किसान भाई सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि उनके समय में गोबर की खाद ही हुआ करती थी, पत्तियां हुआ करती थी, गन्ने की पत्तियां हुआ करती थी, उसी को सड़ा के वो जो है उससे फसल निकालते थे। लेकिन जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र आया उससे पहले भी लोग जी रहे थे, खा रहे थे, स्वस्थ थे, बीमार नहीं होते थे, तंदुरुस्त होते थे और खुशहाल होते थे। आज आप देखते हैं कि हर घर में अरे हम अनाज बहुत ज़्यादा पैदा कर लें सर, लेकिन अगर हम बीमार रहें, हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाएं, तो उस अनाज ज़्यादा अनाज पैदा करने से मेरा कोई ये नहीं मतलब निकलता कि बहुत अच्छा हो रहा है। अनाज तो उतना ही इंसान खाता है, जैसा कि आपके घर में भी परिवार हैं तो ये आपको एवरेज जो शुरू में था वही आज भी है कि इतना कुंटल चावल खाते हैं, इतना कुंटल साल में गेहूं खाते हैं, ये तो जब उतना तब भी था आज भी है, लेकिन हम पैदावार थोड़ा बेचने के लिए ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के नाते हमें ये लगता है, मेरे दिल में ये बात आई कि जब लोग अनाज से बीमार हो रहे, जो मेरा जड़ ही खराब हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे आगे चल के। हम मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हैं, समय से पहले बुढ़ापे का लक्षण है। तो ये सब चीजें सर मेरे को नहीं लगता कि हम रासायनिक खाद बहुत डाल करके बहुत अच्छा मतलब कर पा रहे हैं।
0: जी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां तक मैंने सुना है कि अब जो एक कल्चर आ रहा है, जो लोगों में जागरूकता आ रही है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सी फसल उनको ऑर्गेनिक खेती की मिल रही है, इवन उसका ज्यादा पैसा तक देने को तैयार है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि जो बेसिक हमारे खाने पीने की चीज हो वो। दूसरी बात आपने पहले ही बता दी थी कि मिट्टी भी जहरीली हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम जितना केमिकल पे डिपेंडेंट होते जाएंगे एक दिन शायद ऐसा आएगा कि फिर उत्पादन घटने लग जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल बात थी जो प्रकृति ने बनाई है, जब हम उससे अलग हट जाएंगे तो नेचुरल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात आपने बहुत सही कही कि अगर हम एक दूसरे को बेच के खिलाने के लिए ऐसा करते रहेंगे तो अगर आपकी 2-4 चीजें जो आप खुद उगा रहे हैं उसको तो आपने ले लिया, लेकिन आपकी जरूरत 20 चीजों की है तो बाकी आपको भी मिलावटी चीजें ही मिलेंगी। तो बिल्कुल इस बात से हम पूरी तरह से अग्री करते हैं।
1: थैंक यू सर, आपको
0: थैंक यू सो मच टू यू। और साथ ही साथ अब मुझे लगता है चूंकि चलने का वक्त बहुत करीब आ गया है तो अंतिम प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, और साथ ही साथ पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर जो है एसपी मिश्रा जी से जानना चाहूंगा कि आप गोंडा में काफी वक्त से हैं, आपने कई किसानों के साथ काम भी किया है, देखा भी है, ट्रेनिंग भी दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि गोंडा में स्पेशली किसानों के मन में खाद को लेकर क्या भ्रांतियां होती हैं या किस तरह का मोटिवेशन है, क्या आप देखते हैं किसानों में खाद को लेकर के।
7: खाद को लेकर के किसानों में मोटिवेशन जो देखा गया है वो एक कंपटीशन के दौर में चलने लगे हैं, एक दूसरे के कंपटीशन में हैं कि अगर मिस्टर सिंह 1 बोरी डाल रहे हैं तो मिस्टर तिवारी 1.5 बोरी और 2 बोरी डालेंगे। इसीलिए सरकार बोरियों का वजन कम करना चालू किया है, पहले 50 किलो में आती थी, और अब 45 किलो में है, 40 किलो में आने वाली है कि लोग अब किलो में न डाल करके बोरियों में डाल रहे हैं, जो बहुत नुकसान कर रहा है, जमीन को भी नुकसान कर रहा है। इसीलिए हमारे ट्रैक्टर का जो हार्स पावर है वो बढ़ाना पड़ रहा है। छोटे ट्रैक्टर हमारे खेतों की जुताई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जब ऑर्गेनिक पर आएंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाएगी, उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, उसमें वायु का संचार होगा, उसमें पानी के धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमारी जड़ें मजबूत होंगी, जड़ें विकसित होंगी और उससे हमारा पैदावार बढ़ जाएगा।
0: जी क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। और हमारा प्रश्न सिंपल सा ये था कि आप गुना में काफी वक्त से किसानों के साथ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि खाद को लेकर के उनका क्या नजरिया? यही प्रश्न मैं मिस्टर विनोद त्रिपाठी जी से भी पूछना चाहूंगा इसका जवाब।
1: सही है सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। अभी हमारे मित्र मिश्रा सर ने बताया कि खाद डालने की एक होड़ है, और ये तो मैं ये कहूंगा कि एक जानकारी का अभाव मैं कहूंगा, क्योंकि हर चीज का एक मात्रा है और उसी मात्रा में वो चीज अच्छी लगती है, और ज्यादा होने पर अति सर्वत्र वर्जते, मतलब कहा जाता है कि कोई भी चीज की अति होती है तो वो जो है नुकसानदायक होती है। तो हम किसान भाई से यही कहना चाहेंगे कि आपकी आपका खेत बोल नहीं सकता। जैसे कि आप खाना खाते हो, आपको कोई 4 रोटी से ज्यादा 5 रोटी दे रहा है तो आप मना कर देते हो, हाथ दिखाते हो कि नहीं अब नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है, लेकिन आपका खेत नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब उसके ऊपर अत्याचार ना करें, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो आप ज्यादा से ज्यादा डालते जा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें कुछ नहीं होगा। वो समय दूर नहीं कि जब घर घर में बीमारियां चपेट में आ जाएंगे लोग, तो वो दूसरे लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और हम सब पूरा परिवार बीमार है, तो कोई ना कोई बताएगा कि इसको ना डाल के अब ऑर्गेनिक पे आ जाओ, नहीं तो बचना है। तो मैं किसान भाइयों को सचेत कर रहा हूँ कि जो चीजें कल आपको करनी है वो अभी से करना शुरू कर दो।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जो चीजें इन फ्यूचर हमको परेशान करने वाली है और शायद बहुत विकराल रूप ले ले, उससे पहले हमको इस बात को समझना होगा, इसकी सीरियसनेस को जानना होगा।
1: जी सर,
0: ये हमारा चूंकि इस विषय से संबंधित अंतिम प्रश्न था, अब हम चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। और मेरा अंतिम प्रश्न एक जनरल, अब हम खेती किसानी से संबंधित आप दोनों से करना चाहते हैं, ये तो हमारा खाद से जुड़े हुए प्रश्न थे। हम जानना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि आप चीजें आधुनिकता की तरफ बढ़ रही हैं। आज भी हमारे किसान भाई हैं जो बहुत पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऑल ओवर अच्छी खेती करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और आप किसानों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आज के दौर में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके जरिए अच्छी जानकारी लेकर के वो अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं?
7: थैंक यू सर। जैसा कि खेती किसानी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एक सप्तऋषि कहा जाता है, समय से सब चीज का एक समय होता है, उस समय पर अगर हम करें तो हमारे जो अपने भारत देश में या हम अपने उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की बात करें तो 3 क्रॉप लिए जाते हैं ज़्यादातर, खरीफ, रबी और जायद। उनमें हमको क्या करना होता है कि हमको समय से खेत की जुताई करना, अच्छे गुणवत्ता का बीज हमको समय पर डालना, अच्छे समय पर सही समय पर हमको जब जब पानी की आवश्यकता हो तो सिंचाई करना, यदि खरपतवार हैं तो उसकी निराई गुड़ाई करना, और उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में जब वो मांग रहा हो तब उसमें ऑर्गेनिक खाद को डालना, साथ ही साथ समय पर कटाई और उसकी थ्रेसिंग करना। ये सप्तऋषि का एक फार्मूला होता है, 7 पॉइंट होते हैं, जैसे 7 दिन होते हैं, ऐसे ही 7 बिंदुओं पर अगर हमारे किसान भाई ध्यान दे दें तो हमारे खेती का जो रूप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत बढ़िया पैदा होने लगेगा।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने ये तरीका बताया कि सप्तऋषि के 7 बिंदुओं को फॉलो किया जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अब हम चलते हैं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी जी की तरफ, और इस प्रश्न के साथ उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सर आपका बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, अभी हमारे मिश्रा सर ने बताया कि हमें सप्तऋषि

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्या द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

नवरात्रि का पांचवा दिन, माँ स्कंद माता की महिमा बड़ी अपरंपार है। सभी मेरे प्यारे श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम पर लाइव हूँ मैं आपकी अपनी आरजे बीना, आपके शो गोंडा मैसे मसाला के साथ। आज की शाम पुनः बड़ी खूबसूरत है क्योंकि धीरे धीरे गोंडा शहर में माँ दुर्गा का आगमन शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों कहा शुरू हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना, वैसे तो घरों में माँ की पूजा शुरू हो जाती है किंतु मूर्ति की स्थापना चौथे, पांचवे, छठे, सातवें दिन की जाती है। शाम का खूबसूरत समय, भक्ति से भरा हुआ वातावरण, माँ की जयकारे और मन में अटूट विश्वास। सच कहें तो माँ दुर्गा का नाम जुबा पे जैसे ही आता है तो मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। पहले तो सवाल मन में आता है कि माँ स्कंद माता कौन है, पांचवें दिन इनकी पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक मान्यताओं की अगर बात करें तो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। माता पार्वती जब अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती हैं तो उनका नाम स्कंद माता कहलाता है। माँ स्कंद माता की चार भुजाएं मानी जाती हैं। वे अपने दो हाथों में कमल धारण किए हुए, एक हाथ में बाल रूप स्कंद को संभालती हैं और दूसरे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, कमल पर विराजमान है और कमल पे विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्वरूप की बात करें तो ये अद्भुत भावों का प्रतीक है। एक और माँ की ममता, दूसरी और उनकी शक्ति, दोनों एक साथ हमें ये बताती है कि माँ आवश्यकता पड़ने पर उसी शक्ति के माध्यम से अपनी ममता की छांव हम पर बना के रखती है और हमें हर बाधा से बचाती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दिन माता की पूजा की जाती है, आज का विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। और बात करूं आज के दिन माँ को क्या भोग लगाते हैं, वैसे कल तो मैं बताना भूल गई थी, कल के दिन माता को कद्दू का भोग लगाया जाता है, वैसे आप लोग जानते होंगे, किंतु आज के दिन माता को केले का भोग लगाया जाता है। स्वच्छता, श्रद्धा और शांति के साथ माता की पूजा करें और माँ को केले का भोग लगाएं, माँ प्रसन्न हो जाती है आसानी से। तो चलिए, जैसा कि हमारा जो नियम चल रहा है हर दिन की भांति, आज भी मैं आप लोग के बीच चमनलाल भारद्वाज द्वारा लिखी दुर्गा सप्तशती की के दूसरे अध्याय को आप सबके बीच साझा करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सुन के इस काव्य रूप में सप्तशती को महसूस कर रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे और आई होप ये पूर्णता आपकी, जो कहते हैं ना कि उम्मीदों पे खरा उतरने वाला पाठ है, ना सिर्फ पाठ है ये बल्कि हम सभी के लिए आशीर्वाद है। सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत और चलिए दूसरे अध्याय की ओर रुख करते हैं और दूसरे अध्याय में जानते हैं कि माँ कैसे असुरों का संहार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इस अध्याय को ना सिर्फ श्रवण कर रहे होंगे बल्कि समझ भी रहे होंगे क्योंकि ये हिंदी में अनुवाद है।

मेधा ऋषि बोले तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करे करे सबका कल्याण। देव असुर भयो युद्ध अपारा, महिषासुर देतन सरदारा, योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़ियो वर्ष शतरणे न फिरियो। देव सेना तब भागी जाई, महिषासुर इंद्रासन पाई, देव ब्रह्म सब देह पकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्म देवन संग पधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे, कहीं कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, भवे तनी मन क्रोध बढ़ाए, नैन भरे त्रिदेव के लीला, मुखन के निलियो तेज विशाला। तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी तेज इक जा मिट जाई, अतुल तेज बल परे पलखाई, ताही तेज को प्रगटी न नारी, ते देख देव तब भयो सुखारी। शिव के तेज से मुख उपजायो, धर्म तेज से केश बनायो, विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुज में तन चंदा तेज समाए, नासिका तेज कुबेर बनाए, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाए, ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज से हाथ बनाए, तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु को पदा वायु से पाए। सब देवन जब तेज मिलाया, शिवा के दुर्गा नाम धराया, अट्ठास कर गर्जी तब दुर्गा आद भवानी, सब देवन ने शक्ति ये माता करके मानी। शंभु ने त्रिशूल चक्र, विष्णु ने दीना, अग्नि ने शक्ति और शंखवणी से लीना, धनुष बाण तरकश वायु में भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों कामा को हार पहनाया, सूर्य ने सब रोम किए रोशन, माता के वज्र दिया इंद्र ने हाथ में जगदाता के, ऐरावत ने गले की घंटी माँ को दे डाली, सिंह हिमालय ने दीना करने को असवारी, काल ने अपना खड़ग दिया फिर शीस निवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाए, विश्वकर्मा ने अद्भुत एक फरसा दे दीना, शेषनाग ने छत्र माता को भेंट कीना, वस्त्राभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रत्न जड़ित मैया के सिर को मुकुट सुहाए।

सब देवों ने मिल तभी कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्ग भवानी, देव सेन को साथ लिए, सब हथियार सजाए रण के अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब समाचार उनका पाया, लेकर अश्रु की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में रणने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली लाशों पे लाशें पड़ने लगे। भगवती का ये रूप देख असुरों के दिल कांप रहे, लड़ने से घबराते थे कुछ भाग रहे कुछ हाँप रहे। असुर के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए, देख के दल महिषासुर का व्याकल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दशो दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सिर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा थी। महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा, तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए। श्वास श्वास में अंबाजी ने लाखों गण तप प्रकट किए। बलशाली गढ़ बड़े तो आगे सजे सभी हथियार से, गूंज उठा आकाश तब माता की जय जयकार से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी बहने लगी, बच नहीं सकता दैत कोई भी ललकार के देवी कहने लगी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों को बरसाए माता का जय जयकार किया। चमन जो श्रद्धा प्रेम से पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वो रहेगा बचता मनवांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय, चमन भवानी की दया सुख संपत्ति घर में आए। तो ये 6 मिनट में पूर्ण हुआ आपका ये दूसरा अध्याय, जिसमें हमें समझ में आता है कि महिषासुर ने जब देवों को परेशान करना शुरू किया तो वो विष्णु और शिव भगवान के पास आए, और उन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बचाइए तो भगवान का गुस्सा बहुत ज़्यादा अपार था, और उस गुस्से से देवी का जो कहते हैं ना आविर्भाव हुआ, और फिर देवी को अस्त्र शस्त्र से सजाने का काम सभी देवताओं असुरों और सभी देवताओं ने और ईश्वर ने किया। जब देवी पूर्ण रूप से रणचंडी बन गई तो उनसे निवेदन किया और उन्हें महिषासुर के वध के लिए आग्रह किया। माँ महिषासुर के वध के लिए आगे जाती है और वहाँ भी महिषासुर की सेना माँ के सामने ललकारती हुई आती है। भाई भले वो दैत्य थे, किंतु अगेन मैं ये कहूँगी कि दैत्य को चाहती तो माँ एक बार में ऐसे ही मतलब पल के झपका के ख़त्म कर देती, लेकिन माता का ये था कि मैं दैत्यों को भी, वो भी इन्हीं के मतलब अंश हैं, तो उनको भी एक कहते हैं ना कि ऐसी मौत मिले जिससे उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा तो मतलब हम लोग भी चाहें तो भगवान के सामने कभी आ सकते नहीं, वो पापी होके भी भगवान के सामने देवी के सामने पहुँच गए, इट मीन्स कुछ तो अच्छे काम किए ही होंगे। एनीवे, तो ये था दूसरा अध्याय। अब चला हम सब चली अपने गांव के ओर, यानी कि भोजपुरिया शाम के करा जाए स्वागत। और आज है भोजपुरिया शाम, तो आज आप सभी के अपने पसंद के जो न कहा था ना गीत सुने का मिली, शुभ संध्या सभन के और भोजपुरिया शाम मारोवालोकन के स्वागत है। और आज हम बात करबे एगो ऐसन गीत के बारे में जो उनकी कला हमारे सबके यूपी बिहार के प्रसिद्ध कला है और ख़ास तौर पे देवी का समर्पित है, यानी कि माता जी का समर्पित है। तो चला सुना जाए शारदा सिन्हा के आवाज़ में ई भोजपुरी गीत और आज के संध्या सभन के मुबारक। और आज के जो कहा था ना कि आप लोगन के जो आगमन है उकर हम आवाहन करी थे, तो चली कोई कहूँ जाई ना, आज हम सब देवी के गीत तो सुनब, लेकिन आज एगो ऐसन कला के बारे में भी बात करब जिकरे बारे में हमें सबका पता ही नहीं रहा, और एक ऐसी शख्सियत के बारे में भी बात करब जिकरे पास नेत्र नाई है, लेकिन नेत्र ना होए के बावजूद भी ये दुनिया में वो ऐसन काम करते है जोने का करे के लिए हमें सबका सोचे का परी। जी हाँ, कुछ देर के लिए अगर अखिया के सामने वहाँ अंधेर छाए जाते हैं तो हमें सब एक कलम उठाए कि अपन नाव भी सही से नहीं लिख सके, लेकिन एक ठो ऐसन इंसान भी है जो उनकी मतलब जीवन माँ उगरे आँख या रोशनी ना रही, लेकिन रोशनी के अभाव में भी वह ऐसन कला जानते हैं जो उनकी हम सब सोच भी नहीं सकी। तो चली सुना जाए शारदा सिन्हा की आवाज़ में एक खूबसूरत भजन।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जैसन कि आप सबन का पता है कि हमरे सब भाई बहन जे कि गोंडा अवध और पूर्वांचल से हमें सुनत हैं, सबके प्रणाम। अब आप सबन का बताई कि नवरात्रि के समय है, तो आज बात भी कुछ ऐसा हो चाहिए जेकर सुने के बाद मन माँ भक्ति के लहर उठ जाए। कहूँ मंदिर माँ घंटा बजत है तो कहूँ माई के दरबार सजत है, कहूँ ढोलक के थाप और कहूँ मंजीरा के झनकार से पूरा शहर गूंजत है। तो आज के सांझ है समर्पित हमरे अवध और पूर्वांचल के वो अनमोल परंपरा के लिए, जो उनकी भक्ति के संगे संग हमरे संस्कृति के भी पहचान है। आज हम बताए जाते हैं आप सबका पचरा गायन के बारे में। तनी मजीरा और ढोल के कल्पना करी, माई के दरबार सजा है, फूलन के खुशबू महकत है और भक्तन के स्वर मां गूंजत है। एगो ऐसन गीत जो उनकी पूर्वांचल के पहचान है। अब जना आप सभी सोची कि ये पचरा गायन का हुए, सुनता जात है कि देवी के खुश करे के लिए कोनो गीत ऐसन जो उनकी खुश करत है वो है पचरा। पचरा पूर्वांचल खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और भोजपुरी अवधि लोक गीतन मा अपन कहते ना कि जीवन बिताए है। ये पारंपरिक देवी गीत माना जात है। बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग अचलन मा भी देवी उपासना के लोक गीतन के समृद्ध परंपरा दिखावत हैं। चैत्र नवरात्रि होए चाहे शरद नवरात्रि, माई के जागरण होए चाहे गांव के देवी स्थान, पूजा पाठ पचरा के स्वर भक्तन के मन मा अलगे उत्साह भरत है। पचरा खाली गीत नहीं होत, ईता भक्त और भगवती के बीच प्रेम विश्वास और अपनापन के संवाद है। ई भक्त के

दूर होई के केवल स्तुति नाही करत, उ माई के मन के बात कहत है, आपन पीर बतावत है, दुख सुख बांटत है। अगर सरल भाषा में कही तो ई माँ और बिटवा के बीच माँ या माता और भक्तन के बीच माँ संवाद रूप माँ गीत होता है, जिसे कवाली होता है जवाबी सवाली, वैसे जो उन पचरा होता है ए मन संवाद होता है भक्त और देवी का। पचरा माँ माई से सीधे बतियावे के भाव दिखात है। जब बच्चा अपने माई के कुछ मांगत है तो बड़ा बड़ा शब्दन का प्रयोग करत नहीं है, वो सिर्फ सीधे अपने माई से अपने बात कह दिया थे। वो तो कहत है कि माई हमका ई चाही, हमका ऊ चाही। ऐसे ने पचरा माँ भी माई से जोन मांगे है वो मांग लिन जात है, या माई के अपने बचपन से कोनो जो उन कहा था ना कि संवाद करे है वो कह लिया था। अब एक खासियत बताई, परंपरा के रूप से पचरा समूह में गावा जात है। इमा एगो एक मुख्य गायक होत है और पंक्ति उठाए वाले बाकी लोग होते हैं। ढोलक के टाप पड़त है, मजीरा छनकत है और झाल के आवाज जोन है हारमोनियम के साथ सुर के वातावरण बनाए दिए थे। गीत के लय में ऐसन ऊर्जा रहा है मानो सुने वाले के मन भी झूम जाए। एक तरफ मुख्य गायक माई के महिमा गावत है, दूसर ओर समूह के लोग एक सुर में जवाब देते हैं। धीरे धीरे पूरा माहौल माई के जयकारन से भर जात है। और अब गांव के महिलाएं जो होती वो पचरा उठावत ही संगे संग, और ई दृश्य में पूजा ही नहीं बल्कि आपसी मेल मिलाप और संस्कृति एकता के प्रतीक भी देखा जाता है। अब पचरा के कुछ लोक प्रतीक भी होते हैं, जैसन कि पचरा माँ निमिया के डाढ़, अड़हल के फूल और मालिन के जिक्र जरूर रहत है, मतलब पचरा गीत माँ ई शब्द जरूर आवत है। और संगे संग हम तो यहाँ गोंडा शहर के ओर देखे ने, जब पचरा देवी का प्रसन्न करे के लिए उनके देवस्थान पे गावा जाता है तो एक पुरुष जो उनके माता के रूप धारण करते हैं वो जवाबन के जो उत्तर है वो दियत है, और ये संवाद देखे माँ बड़ा भावुक लागत है। निमिया यानी कि नीम के पेड़ के डार, लोक गीतन माँ नीम के पेड़ के माई का ठिकाना माना गया है। छाँव और आस्था के जरिए देखा जाता है कि माई निमिया के पेड़वा पे रहा थी। कल्पना से देखें तो ईश्वर हर जगह है, पर कहते ना कि हम सब हर जगह हर तरह से नहीं रहित, कुछ एकमात्र जगह ऐसन हमारे सबके व्यवहार रहता है, कोई भी मंदिर में जाके गाली नहीं दिया, कोई भी पीपल के पेड़ के पास जाके केहू से हट और अपशब्द में प्रयोग नहीं करते, सबका लागत है कि ईश्वर यहाँ निवास करते हैं। पर सचता यही है कि ईश्वर हम सब माँ निवास करते हैं। अड़हल यानी कि गुड़हल के लाल फूल, देवी माई का लाल फूल चढ़ावा जाता है और लाल रंग उत्साह शक्ति और देवी के तेज का प्रतीक है। अगर एका विज्ञान के भाषा में भी समझें तो अड़हल के फूल में उकर पाती से लेके उकर जड़ तक, उकर फूल से लेके उकर जितना भी बीज है वो सब अपने आप में आयुर्वेदिक गुण रखते हैं। देखिए कितना सुंदर कल्पना है, प्रकृति पेड़ पौधा फूल माला और साधारण लोग सब माई के सेवा में जुड़ जाते हैं। यानी कि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि माई बड़े बड़े जो श्रृंगार है सोना चांदी भोग एकर भूखी नहीं है, माई सिर्फ और सिर्फ हमरे और आपके श्रद्धा के भूखी, आस्था के भूखी। और हमें लागत है कि आप सबके साथ आप सबके यहाँ मौजूदगी ये बतावत ही कि आप ये संवाद सुन के समझ पावत हैं कि आपन परंपरा कितनी महान है। अब भाई जे जे जहाँ जहाँ से सुनत हैं तनी फटाफट से उठ जाएं, कहे कि 7 बजे से आप सबके भोजपुरी फरमाइश भी शुरू हो जाए। अब अवध के माटी के बारे में बताई तो हमारे सबके अवध माँ लोक गीतन के समृद्ध परंपरा रही है, चाहे सोहर होए चाहे कजरी बिरहा फागुन और बिद बिद के गीत, पर हिमा जो पचरा गावे के कला है उस सबका नया अवध। पचरा हमका याद दिलावत है कि भक्ति केवल मंदिर के या दीवारन के या देवतन के पूजा से नहीं होत, मंदिर ता घर

के आंगन माँ होत है, खेत खलिहान माँ भी होत है, गांव के चौपाल माँ भी होत है और आवा जाए माँ भी होत है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सबके संस्कृति एक आगे बढ़ावत है। आज जरूरत है हमें सबका अपने बचपन के उन लोक गीतन से परिचित होए गए, उन्हें बताए के कि हमार लोक संगीत मनोरंजन नहीं रहा बल्कि हमार सबके इतिहास, भाषा, परंपरा और सामूहिक स्मृति का खजाना रहा। तो अब आपके बारी है, का आपका भी कब मौका मिला है पचरा गीत सुने के? हमें कोई पूछे तो हम कहा हाँ कई बार, और एक पचरा के कुछ पंक्ति हम सुनावे के प्रयास करे थे। वैसे तो हमें पचरा गीत आवत नहीं, लेकिन एक गीत जोन कि हमारे दिल के बड़ा करीब है उहे हम आप सबके सामने सुनावा चाहिए थे, कोशिश करी थे, काहे कि हमार जो गायक के जो कहा था ना भाव भंगिमा है उतनी अच्छी नहीं है, तो भूल चूक माफ़ करी और हमारे संगे ई खूबसूरत गीत एका महसूस करी।

छोटा सा प्रयास हमरे तरफ से पचरा गीत गावे के जिमन की माँ मालिन और माता जी के संवाद है, जिमा माँ झूला नीम के डाल पे डाल के ऊपर झूले थी और उन्हें गीत गावे के बड़ा अच्छा लागत है और गावत गावत उनका प्यास लग जात है। फिर वह मालिन के घर जाए के पानी बुझावे के लिए प्यास अपन बुझावे के लिए पानी के मांग करती, तब मालिन अपने बात का उनके सामने रखती। तो ई रहा भाव ई खूबसूरत गीत के एगो पचरा हम आपका सुनावा चाहिए थे। सुने के बाद आप सबके भोजपुरी फरमाइश जोन है वो शुरू हो जाए। अब आप सब बताई हैं कि आप सबका ई पचरा गीत कैसन लगा।

अब जैसे कि आप सबका पता है, आप सबके आज भोजपुरी फरमाइश पूरी हुई और सबसे पहली जो फरमाइश है वो आप सबन के लिए हमरे तरफ से पूजा के फरमाइश है। पूजा सुना चाहती गीत, अब आप बताई हैं कैसन है गीत। गुलरी के फूल, आ हा हा का बात है, बड़ा प्यारा गीत है। वैसे सुने में लगा था कि कोई हैप्पी सॉन्ग हुई, लेकिन बड़ा दर्द वाला गाना है। सुन के बताएं कैसन है।

अब बारी है प्रीति के फरमाइश के गाना सुने के। भाई आज भोजपुरी गाना के दिन है, लेकिन आज आप सब कहूँ कहूँ गल अलग अलग बिजी लागत हो, लेकिन आप सबका बताई कि आज फ़ोन वाली फरमाइश बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। अगर आपका भी अपन फरमाइश के भोजपुरी गाना सुने के तो 6393 31 64 29 से फरमाइश कह सकत हैं। और चलिए एगो पुराना गीत सुन के आज के शाम के शुरुआत कह दी जाए। प्रीति जी के फरमाइश के गाना है

अब बारी है अगला फरमाइश के सुने के। बहुत प्यारा गाना है, और अगर हम बात करी भोजपुरी गीतन में तो ये गाना हमेशा से खास रहा, कहे कि ये पवन सिंह के आवाज़ में है। तो चलिए सुनी और बताई कैसन है गाना।

अगला गाना है शालिनी के फरमाइश के, मिले खातिर दिल बेकराल होला का बात है। अभी भी समय है, अगर आपका अपने फरमाइश के गीत सुने के या तो चैट रूमा या 6393 3164 29 नंबर पर अपन फरमाइश भेज सकते हैं।

अगला गीत के फरमाइश है हमारे सबके श्रोता अविनाश के, जे कि हमें सबका त्रिपुरा से सुना था।

अब बारी है अगला भक्ति गीत सुने के, और ये गाना के फरमाइश है अंकित के। अंकित कोई भी भक्ति गीत सुना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्यारा सा गीत हमारे तरफ से।

तो चलिए अगला गाना सुने के बारी है और सुरेंद्र यादव सुना चाहते हैं अपन गाना। चलिए देखिए कौन गाना है जो उनके इनके फरमाइश के है। सबके फरमाइश आज एक जैसन है और सब माता का रिझावे के प्रयास करते हैं। जुगल जी शुभ संध्या, जय माता दी, रवा के का हाल है? तो सबन के फरमाइश अभी बजे के जोन की अभी बाद में आए ही, तो हम थोड़ा थोड़ा सबके प्ले करो। तो पूरा गाना सुनने के लिए समय से फरमाइश करेंगे, बात का ध्यान दिए हमेशा, ताकि 7 बजे फरमाइश शुरू हो जाए।

0: ए चंपा चमेली कलिया।
1: अगला गाना सुरेंद्र के फरमाइश के।

0: आशु के फरमाइश के गजबे रूप सुहावन माई के।
1: देखी आज बहुत सौभाग्य के बात बा कि टीम कंपनी के ओर से जागरण के प्रोग्राम बा, और इस जागरण में देखी सभे जुटल बा। टीम कंपनी म्यूजिक के मालिक माननीय श्रीमान गणेश पांडे जी, वहाँ के साथे साथे मनोज मतलबी जी एकदम कॉपी ओपी लेके बैठल बन जे का लिख दी गोड़ लागत नहीं माने। वहाँ के साथे साथे राघवेंद्र जी और ये टीम के म्यूजिक डायरेक्टर आन बान शान मानिए घुंगुरु भैया, साथे साथे हमार सब राइटर लोग, वाह वाह क्या बात है, हरदा उड़ा दिला लो भाई। मानिए प्यारे लाल कबीर जी और हमार छोट भाई आजाद सिंह, सभे जुटल बा आ सभे झाल ढोलक लेके आयल बा कि आज माई के जागरण में ताली बजावे के बाद झूम के गावे के बाद।

अभी शाम के अंतिम फरमाइश जोन की है आप सबके लिए पप्पू हार्डवेयर के, और ही के साथ है हम का दें इजाज़त। हंसत रहें, मुस्कुरावत रहें और बजावत रहें अपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 यह गोंडा शहर के धड़कन, और ये चलत चलत अंतिम गाना पप्पू की तरफ से।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं, तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
5: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: अरे सुना
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
14: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
15: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
14: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
15: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
14: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरननाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद आवर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल. और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन. स्टे ट्यून्ड.

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, आहा, आ चुकी है आपकी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वंस अगेन हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सो किसके यहाँ पंडाल सज चुका है, किसके यहाँ माता जी की स्थापना हो चुकी है, या फिर किसके यहाँ माता जी को लाने की तैयारियां चल रही है, किसके यहाँ माता जी की आरती गाई जा रही है, जागरण हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जय जयकार लग रहे हैं, ढोल नगारे बज रहे हैं और इसके साथ में डीजे की रुनक झुनक चल रही है और पवन सिंह के गानों पे ठुमके लगाए जा रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा आज का पहला गाना, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, पप्पू हार्डवेयर गोंडा से, आवाज विकास गोंडा से, रवि जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, अनुष्का श्रावस्ती से, विजय रावत और आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, निभा जी रानी बाजार सुनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, उस्मान खान स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, निशा पटेल नगर गोंडा से स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, एंड यू नो व्हाट दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश तो है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा के, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है लखबीर सिंह लखा की आवाज में देवी भजन। सो एंजॉय करते हैं मैया का चोला है रंगला, शेरो वाली का चोला है रंगला, सिर्फ और सिर्फ लखबीर सिंह लखा की आवाज में, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए। और मेरे मित्रों अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। फिलहाल बोलिए साचे दरबार की जय, जय माता दी।

वाओ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा देवी भजन लखबीर सिंह लखा की आवाज में हमारी आशु मिश्रा। ओहो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी की फरमाइश पर आप दोनों मिश्रा मिश्रा है ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, माइंड मत करना। हाँ सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश एंड शिवम पांडे, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की पटेल नगर गोंडा से, उनको सुनना है गाना ओ ए मैया कलशा धरेबू। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से भोजपुरी नवरात्र स्पेशल से सुपर डुपर हिट देवी भजन सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अंबर गोयल, आपका स्वागत है। शुभ संध्या।

अंगना ले पे वो ए मैया कल साधा रही वो। हमने एंजॉय किया है ये गाना पवन सिंह की आवाज में निशा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों जग्गू दादा की। हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है लखबीर सिंह लखा की आवाज में एक माता जी का भजन। सो एंजॉय करते हैं झूठी दुनिया से मन को हटा ले लखबीर सिंह लखा की आवाज में जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और एक बार फिर से नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड।

0: सच्चा है प्यार और दरबार सब कुछ मांबे का। और अगर हम लोग माता जी की पूजा पाठ तो करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनसे कोई गलती होती है तो माफी भी मांगते हैं, कोई खुशी मिलती है तो उनको थैंक्स भी करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम लोग माता जी से ये सीख लेते हैं कि सच्चाई की ही राह पे चलना चाहिए। अगर अगर अगर सच बोलने से आपका थोड़ा सा मुनाफा नहीं हो रहा है तो थोड़े से घाटे में ही चले जाओ भैया, काय को वही नहीं आप भी। सबके सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए झूठ, एक झूठ के चक्कर में इंसानों को हजार झूठ बोलना पड़ता है ना। एक झूठ को छुपाते छुपाते छुपाते छुपाते एक को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, अब उन तीसरों को छुपाने के लिए चौथा, फिर डायरेक्टली ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, सिचुएशन बढ़ती जाती है, हालात बढ़ती जाती है और झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं। और फिर अपने ही दिमाग में भले ही सामने वाले को भाई ना पता चले, भाई सामने वाला आंख पे पट्टी बांध के रखा है अपनी तरफ से, हाँ, लेकिन आपके गिरेबान को तो पता है ना। आप जब आईने में अपने आप को देखते हैं तब तो हिट करता है ना कि बहुत गलत किया आपने। तो अगर अपनी नजर में नहीं गिरना चाहते हैं, लोगों की नजर में गिरना उठना डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन अगर अपनी नजर में उठना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप से तो ईमानदार रहो ना मित्रों, ऑनेस्ट जरूर रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अपना दिल साफ रखते हैं ना उन पे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, जो आपके लिए अच्छा होता है वो आपको मिलता रहता है। क्यों सही कहा ना मैंने जग्गू दादा जी, सो एंजॉय किया है हमने जग्गू दादा की फरमाइश पर, ये बहुत ही खूबसूरत सनंग बनाओ। लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। सो एंजॉय करेंगे एक बार फिर से लखबीर सिंह लखा की आवाज में नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत सा भजन। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरविंद, आपका स्वागत है। और इसी के साथ में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी और मुस्तफा जी साउदी से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय कर लेते हैं अब हम हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बोलिए साचे दरबार की जय। और जैसे कि हम सभी को पता है कि आज स्कंद माता का दिन है और स्कंद माता माता कार्तिकेय को गोद में रखती हैं, और इसे मतलब माता कार्तिकेय जी की माता होने के नाते उनको स्कंद माता कहा जाता है। और आज का दिन आपको पता ही है ज्ञान शक्ति और किसका होता है, आज का दिन होता है ज्ञान शक्ति और मोक्ष का। ज्ञान तो हम बटोरते ही रहते हैं चाहे तब भी ना चाहे तब भी, शक्ति हमें मिलती रहती है अपने आत्मबल से अपने मनोबल से, और मोक्ष ओह माय गॉड स्कंद माता बस मोक्ष ही चाहिए।
1: मगन हो

ये गाना था स्कंद माता के लिए किसकी तरफ से, बताओ ना, आशा मिश्रा जी की तरफ से जो कि है लखनऊ से। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मैं कहना चाहूंगी कि अब शायद नवरात्रि वाले प्लेलिस्ट में लगने वाला है थोड़ा सा स्टॉपेज। जी हाँ, क्योंकि अब हम एंजॉय करने जा रहे हैं अनुष्का जी की फरमाइश को। हमारी अनुष्का जी हैं दोस्तों श्रावस्ती से, और उनको सुनना है गाना यार बदल ना जाना मौसम की तरह। वैसे सब बदलते हैं मौसम की तरह, बस परिस्थितियां बदलने की देरी होती है, सिचुएशन बदलने की देरी होती है, हालात बदलने की देरी होती है। अपने तो

दिल बेचारा होता है, दिल पागल होता है, दिल मूर्ख होता है, दिल बेवकूफ होता है। जब उसको ये सारी सिचुएशंस बनानी होती हैं तब तो बड़ा मजा आता है अनुष्का जी, लेकिन जब वो सिचुएशन बन जाती है और आप उस अंजाम पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में आपके दिल को रियलाइज होता है तब कि कहीं ये मैंने गलत तो नहीं किया। अब भैया यही पूछना चाहिए दिल से, किसी और से पूछो चाहे ना पूछो, लेकिन दिल के लिए ये कहावत एकदम परफेक्ट है कि अब पछताए हो का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब दिल लगा गधे से तो परी क्या चीज है, या फिर जब दिल लगा परी से तो गधा क्या चीज है। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अगर गलत हाथों में गया भैया दिल, तो दिल का चूर चूर होना तो एकदम निश्चित है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने सही इंसान को दिल दिया है ना, तो आपके दिल की परवाह आपसे भी ज्यादा वो करेगा, इसीलिए दिल हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को, और अगली फरमाइश भी है कुछ इसी तरह के गाने की। जी हाँ दोस्तों, हम एंजॉय करेंगे विजय रावत की फरमाइश को, और विजय रावत को सुनना है गाना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। आहा, सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू जी की आवाज में दीवाना का ये गाना। वैसे दीवाना बनो तो ऐसे ही दीवाना बनना चाहिए, क्यों सही कहा ना मैंने।

0: अरे वही होगा जनाब जो मंजूर खुदा होगा, क्यों सही गाना मैंने सामने एंजॉय किया, दीवाना का ये गाना, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। और आवाज थी कुमार सानू जी की और फरमाइश थी मेरे मित्रों पता नहीं क्यों हमारे मोदी जी से मेरा मित्रों कहने की आदत पड़ गई है और फिर ये मित्रों मेरा जा ही नहीं रहा है। सो दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये गाना विजय रावत की फरमाइश पर, और इस गाने को सुनने के बाद में हमारे एक लिसनर हैं, उनका कहना है कि कैसे दीवाना बनना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे दीवाना बनना चाहिए, सोच समझ के दीवाना बनना चाहिए। इन्होंने भी तो कहा है कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करें कि नहीं, तो इसलिए सोच लेना चाहिए कि प्यार करना चाहिए इस इंसान से कि नहीं, दिल को इसके लिए बेकरार करना चाहिए कि नहीं, कि फालतू का हम अपना समय यहाँ वेस्ट करें और फिर उसके बाद में दिल चूर चूर हो जाए। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकर जी, आपका स्वागत है। और अब अगली फरमाइश है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गुलशन कुमार जी का गाना नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से, और गाना है कि बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। एंजॉय करते हैं नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये गाना मोहित की फरमाइश पर जो की है मालवे नगर गोंडा से।
1: बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए,
0: बेटा बुलाए तो माँ को आना चाहिए, लेकिन भाई जब कुछ बेटे यहाँ ऐसे भी होंगे इस दुनिया में जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, है ना, तो दोनों पक्षों को देख के चलना चाहिए। मूर्ति की पूजा कर रहे हो और अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, शर्म करो। स्टे ट्यून्ड, सबकी बात नहीं की लेकिन हैं कुछ ऐसे मूर्ख लोग।

जो बुलाए माँ को आना चाहिए। गुलशन कुमार जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। इस गाने को सुनने के बाद में हमारे एक लिस्नर का कहना है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि माँ पुकारे तो बेटा नहीं जाता, लेकिन बीवी पुकारे तो एक आवाज में चला जाता है। देखिए, मैं यहाँ कोई कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूँ, माँ बीवी पिता हस्बैंड नहीं भाई बहन नहीं, कंपैरिजन क्यों करना है। हाँ, हर एक रिश्ते की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक जरूरत होती है ना। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि माँ पापा तो कभी किसी के बहकावे में नहीं आए ना अपने बच्चों के लिए, उनके लिए तो पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, है ना। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कुल मिला के यही तात्पर्य है कि बच्चा लाख बुरा क्यों ना हो, बच्चे में लाख कमियां क्यों ना हो, माँ बाप कहते हैं ना कि हाँ ये मेरा ही बेटा है या फिर ये मेरी ही बेटी है, हाँ इसने गलती की है लेकिन मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन आपको आपसे एक दो दिन नाराज रहा जाएगा, दुखी रहेंगे अपने आप से इसलिए नाराज रहा जाएगा, लेकिन फिर बैक टू नॉर्मल आपको उतना ही प्यार करने लगेंगे, मतलब करने लगेंगे क्या, जितना करते थे उतना ही करेंगे। सो अगर हमारी गलतियों को देख के, हमारी वीकनेस को देख के, हमारी स्ट्रेंथ को देख के, हमारी बेवकूफियों को देख के हमारे मम्मा पापा ने कभी स्टेप पीछे नहीं किया, बैक स्टेप नहीं लिया, तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना दोस्तों। अब जैसे वो कहते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं हमारे मम्मा पापा, हम बड़े हो जाते हैं हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं फिर हम उनको सिखाने लगते हैं। हम अगर छोटे थे उनसे हजार बार कोई एक चीज पूछेंगे वो हजार बार वही सेम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अगर उन्होंने तीन बार कोई चीज पूछ ली चौथे बार पूछेंगे तो हम इरिटेट हो जाएंगे ना भाई, तो नहीं करना है ना। उन्होंने 20-30 साल हमें संभाला है, उनकी एज हो चुकी होगी तो हमें भी 20-30 साल उन्हें संभालना चाहिए। अरे कम से कम जो दिया है वो तो लौटा दो, वृद्धा आश्रम तो मत भेजो दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से, और उनको सुनना है गाना तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। मोहम्मद रफी जी की आवाज में एंजॉय करते हैं ये गाना प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर जो की है बहराइच से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,

मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा भजन। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी दोस्तों प्रीति शुक्ला जी के बहराइच से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है शिवम पांडे की लवा टपरा गोंडा से। और शिवम पांडे चैट बॉक्स में लिखकर बता रहे हैं कि मैडम जी मेरा भी गाना बजा देना, डियर मैम मैं वही हूँ शिवम पांडे लवा टपरा से। अच्छा जी, लवा टपरा वाले शिवम पांडे जी, खाली फरमाइश आपने भेजी है, कुछ मीठा भेजा ही नहीं। कुछ मीठा भी भेज देती तो फरमाइश जल्दी पड़े हो जाती। सो एंजॉय करते हैं शिवम पांडे की फरमाइश। इनको सुनना है गाना तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और इसी के साथ में शिवम पांडे का कुछ कहना भी है दोस्तों, उसको कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग। हाँ, इनका कहना है कि जिस दिन मैं लिखूंगा, लिख तो दिया आपने, जिस दिन मैं लिखूंगा भीड़ को भ्रम लिखूंगा, एकांत को सत्य लिखूंगा, दोस्ती को फरेब लिखूंगा, प्रेम को छल लिखूंगा, रिश्तों को षड्यंत्र लिखूंगा, जिंदगी को मौत, मौत को सुकून लिखूंगा, फिर तोड़ दूंगा अपनी कलम और खुद को रिहा लिखूंगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली लाइंस। एंजॉय करते हैं आपकी फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

संभाले तो हमें कौन संभाले, हमने एंजॉय किया गाना शिवम पांडे की फरमाइश पर जो कि है लवा टपरा गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है गल्ला मंडी के पीछे से मुकेश जी की। और गल्ला मंडी के पीछे आप क्या करते हैं? सॉरी मजाक करी थी। सो मुकेश जी की फरमाइश है, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, उससे उड़ के आई है माँ शेरों वाली। सो एंजॉय करते हैं ये गाना मुकेश जी की फरमाइश पर जो की है गल्ला मंडी के पास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। पीछे नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए पीछे इस बार नहीं बोला मुकेश जी।

0: से उड़ के आई है माशेरा वाली। ओहो, रघुवीर सिंह लखा की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से सुपर डुपर हिट देवी भजन। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को, लेकिन उसके पहले शिवम पांडे का कहना है कि मैडम जी, हाँ बताइए जी, इनका कहना है कि मैम एक बार प्रकाश पांडे जी का नाम ले लेना प्लीज। अरे प्रकाश पांडे जी, आपका नाम ले लिया मैंने, और इनका कहना है कि ये आपके बहुत बड़े फैन है। थैंक यू सो मच, अगर आप मेरे बहुत बड़े फैन है तब तो लोअर टपरा मेरा अक्सर आना जाना रहता है, जब भी आऊँगी बताऊँगी, लेकिन कैसे बताऊँगी। वैसे अगर आप इतने बड़े फ़ैन हैं, अगर मैं दिल से आपको याद करूँगी प्रकाश पांडे जी, तो आपको पता चल जाएगा ना कि मैं लोअर टपरा आई हुई हूँ। वो जो पावर प्लांट है ना, पावर प्लांट ही तो है, हाँ वो जो पावर प्लांट है उसके पास मैं पहुँचूँगी और 3 बार आँखें बंद करके आपका नाम लूँगी, प्रकाश पांडे, प्रकाश पांडे, प्रकाश पांडे। और मुझे पता है कि अगर आप मेरे इतने बड़े फैन हो तो आप ज़रूर आ जाओगे मेरे से मिलने के लिए कि अरे मैडम जी मैं आ गया, आप भी आ गई, चलिए चाय पीते हैं। लेकिन चाय के साथ में कुछ मीठा भी चाहिए मुझे, मीन्स चाय तो मीठा होता ही है, लेकिन उसके बाद में कुछ हलवा वगैरह भी है ना। सो इन्जॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है हमारे पास में अंबर गोयल की। अंबर गोयल को सुनना है गाना, मैया के बिंदिया लीला र बड़ा निकला गेला। सो इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ अंबर गोयल की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ओहो आई लव दिस सॉन्ग, बचपन से पचपन तक वाला गाना, एकदम मज़ेदार गाना, एकदम चनचनौवा गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: लागेला निकला गेला, ओहो

सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना अंबर गोयल की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवी नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवी नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाना जब राम नाम ले ले। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवी नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। इसी के साथ में शिवम पांडे का कहना है कि जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। ओह माय गॉड। फिलहाल जो भी हाल होता है अच्छा होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कर्म करते जाओ फल ऊपर वाला देगा। राम राम। इंजॉय करते हैं मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। डोंट यू गाइस थिंक कि मुझे एक कथावाचक बन जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए फिर बनना चाहिए कथावाचक। डोंट यू गाइस थिंक कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना है क्योंकि इस दुनिया की मोह माया से तो मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, बहुत पीछे जा रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4-5 सालों में सच में दोस्तों मेरी ऐसी ही नौबत आ जाएगी कि मुझे संन्यास ही लेना पड़ेगा। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।

कितनी बड़ी हो मुश्किल आसान हो जाए। हमने एंजॉय किया है ये गाना मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की फरमाइशी गीत की तरफ अगली। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिलाना चाहेगी आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल कि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, स्ट्रे, व्हाट इज स्ट्रे, नथिंग इज स्ट्रे, इट्स स्टे ट्यून्ड। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम सिंह की लखनऊ से। शिवम सिंह को लखनऊ से सुनना है गाना चार चक्का वाली गाड़ी। सो एंजॉय करते हैं एक बार और एक डिवोशनल सॉन्ग भोजपुरी में, लेकिन इस बार शिवम सिंह की फरमाइश पर जो कि है लखनऊ से। इस गाने पे पिछली नवरात्रि में मैंने बहुत ताता थैया किया था, दो चार ठुमके तो लगाए ही थे। इनफैक्ट विसर्जन में बहुत मजा आया था। इस बार नवरात्रि के विसर्जन में कौन सा गाना ट्रेंडिंग है, लेट्स सी।

फिलहाल अब तो चार चार चक्का वाला गाड़ी इज ऑलवेज लाइक इजी ना, टू व्हीलर से अच्छा तो फोर व्हीलर ही हो गया है। बढ़िया आराम से गोंडा में अपनी सिटी में अपने ही टाउन में चलना है तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से बेस्ट कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। सो इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है, उदालक शर्मा की मन का फोर सिस्टर। स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं एक बार फिर से नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से ये सुपर ड्यूपर हिट गाना। ओहो चुनरिया ले ले, आवाज है केशारी लाल यादव की। स्टे ट्यून एवरीवन।

सॉन्ग मुझे खेसारी का ये गाना बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, और इन सब गानों को सुनने के बाद ही तो लगता है दोस्तों कि फाइनली फाइनली फाइनली आ चुका है नवरात्रि, फाइनली होगा विसर्जन, फाइनली होंगी जय जयकार, होंगी डीजे की धूम धड़ाके एवरीवेयर एवरीवेयर। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को मेरे मित्रों, और गौर से सुनिएगा क्योंकि अगली आवाज है समर सिंह की, और एंजॉय करेंगे नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से समर सिंह की आवाज में गाना खूब ना चल जाई नागिन धुन बजाए के का ख्याल है पब्लिक। ओहो बोले साचे दरबार की जय, हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन।

हमने एंजॉय किया समर सिंह की आवाज में एक बार फिर से नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट वाला गाना एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनू निगम के गाने की, एंजॉय करते हैं ये नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से गाना सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पंडाल में ही बैठी हूँ, पंडाल में ही। जितने भी लिसनर्स हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं अरे सिंपल ये वाला गाना बजाना, और मैं बजा दे रही हूँ, खूब मजे करें, खूब डांस करें। वाओ, पंडाल में चलना चाहिए ना दोस्तों। स्टे ट्यून्ड।

सावन की रुत है आज हम हमने एंजॉय किया है सोनू निगम की आवाज में ये डिवोशनल सॉन्ग नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट से। नागेश्वर धाकर की थी ये फरमाइश, एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की को। और अगली फरमाइश है हमारे पास में दोस्तों अरविंद की और प्रमुख कुमार जी के लुधियाना से। अरविंद को और प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना सुना राजा अड़ुलता जा। से एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ये भोजपुरी और बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नवरात्र स्पेशल प्लेलिस्ट से। एंड आई थिंक इस बार धूम धड़ाका इसी गाने पे होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, आई डोंट नो वाई लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी बार भी माता जी मेरे घर के पास से जा रही थी उतनी बार मैंने ये गाना सुना और मेरा मन हुआ कि प्लीज़ मुझे बुला लो ना, एक डांस करना है, प्लीज़ दो मिनट के लिए रुक जाओ ना।

सो ये तो गाना था खेसारी लाल यादव का, अरविंद की फरमाइश थी और प्रमुख कुमार जी की फरमाइश थी। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चकला है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल का, आप सभी से अलविदा लेने का। सो दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है जी लागे से बाबिया में गाने की, और इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई हुई है निबर जी की तरफ से, और इसी के साथ मैं अब लेना चाहूँगी अलविदा। सो दोस्तों, बस यही इतना कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सबके लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल फिर से एक नई बात के साथ, एक नई जज्बात के साथ, एक नई गीत के साथ और बहुत सारे इन्ने सारे ढेर सारे प्यार के साथ।

नमस्कार दोस्तों, रात के इस सन्नाटे में जब दिन भर की आवाजें थम जाती है और इंसान अपने ही ख्यालों के साथ अकेला रह जाता है, तब कुछ सवाल बहुत गहरे सुनाई देने लगते हैं। क्या इंसान सचमुच मौत के बाद भी जिंदा रहता है? और अगर कोई अपना अचानक इस दुनिया से चला जाए तो क्या उसकी यादें ही लौटती है या वो खुद भी लौट सकता है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी प्रेमिका

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 872-661-8000।

0: सी आपकी अपनी शॉप। अरे सुना
1: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। और इसी सिलसिले में बहारे गजल लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ। सुकून का वक्त होता है ये, थोड़ी सी राहत चाहिए होती है, थोड़ी सी अच्छी बातें चाहिए और कुछ प्यारी सी गजलें जो हमारे दिन भर की थकान को हल्का सा कम करती है। हम बात करते हैं नींव के उन ईंटों की जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिनके दम पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। जी हाँ, हम बात करते हैं कलमकारों की, दानिश्वरों की, जिन्होंने गजलें लिखी, संगीतकार ने उन्हें धुन दी और फिर किसी गायक कलाकार ने उन्हें गाकर सदा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही विभिन्न शायर आपकी महफिल में आते रहते हैं, महफिल की शोभा बढ़ाते हैं और आज उसकी नुमाइंदगी करने के लिए हमने जो शायर चुना है उनका नाम आप सभी ने सुना होगा। उर्दू अदब की दुनिया का एक ऐसा चमकता हुआ नाम जिसे हम डॉक्टर नवाज देवबंदी के नाम से जानते हैं। लल्लन टॉप पर हुआ उनका इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा सराहा गया, पसंद किया गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही उनके बारे में। उन्होंने कहा वो जो उनकी गज़लें हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी की, वो सिर्फ महबूब से गुफ्तगू नहीं करती, सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करती बल्कि ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं, ज़िंदगी की जो जंग होती है, उस जंग से कैसे लड़ा जाए उसका भी एक सुहाना सा सलीका सिखाती हैं। बड़े हैं और उनके अंदर बड़प्पन भी है, ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो एक ऐसे ही एक बड़े आदमी, एक बड़े शायर को आपकी महफिल में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि सफ़र में मुश्किलें आएं तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर आप सफ़र में हैं और मुश्किलें अगर आ जाएं तो ठीक है, ओके, हम निपटेंगे। अंग्रेज़ी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा तो उनकी एक पोएम है प्रोस्पीके, तो कहते हैं कि आई वॉज एवर ए फाइटर्स सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मृत्यु अगर सामने खड़ी हो तो मैं घबराऊंगा नहीं, मैंने जिंदगी में तमाम सारे युद्ध लड़े हैं तो एक लड़ाई और लड़ूंगा, किसके साथ, मौत के साथ। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, हवा हो और साथ में बारिश भी आ जाए, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आप पर झूठ बोलने का दबाव बने, लेकिन यकीन मानिए अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो आपकी हिम्मत और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, मतलब आलोचना, क्रिटिसिज्म तनकीद को कहते हैं, मेरी कमज़ोरियों पर जब कोई तनकीद करता है वो दुश्मन क्यों न हो
उससे मोहब्बत और बढ़ती है। आपने हमारी कमजोरी हमको बताई है, थैंक्स अ लॉट फॉर इट, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये कहते हैं शायर कि मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो, उससे मोहब्बत और बढ़ती है। जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ। अब ये लाइन, ये पंक्ति आप अपने जीवन में देखिएगा कि अगर आपके कुछ अपने हैं और आपने उनकी सहायता कर दी धन से, अब ये पोएट का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो उन्होंने कहा कि जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, अरे रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। मतलब आपने अपना ही पैसा दिया और ज़रूरत में, और फिर आपने अगर मांगा तो फिर वो लगता है रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। शायद इसीलिए शेक्सपियर ने अपने बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में कहा था कि नीदर ए बारोवर ना दे लेंडर भी, ना अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को रुपया उधार देना, ना रुपया उधार लेना। कारण तो उन्होंने बताया कि अगर आप रुपये उधार देते हो तो जब उससे मांगोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, संबंध खराब होंगे, और अगर आपने रुपये लेने शुरू कर दिए उधार तो फिर शायद आप मेहनत से दूर भाग जाएंगे। जरूरत में अजीजों की अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत मतलब दुश्मनी और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अगर आपने बाजार में खड़े हैं और आपने आपको बेच रहे हैं तो आपके दाम घट जाएंगे, लेकिन अगर आपने न बिकने का इरादा कर लिया हो तो यकीन मानिए आपकी कीमत बढ़ जाती है। हमारे साथ साहित्य जी कोई हैं, और देखिए साहब ये कार्यक्रम जो है वो गज़लों का है, और सिद्धू मूसेवाला के गीत इस महफिल में नहीं बच सकते क्योंकि ये गज़ल का कार्यक्रम है। तो अगर आप कोई गज़ल कहें साहित्य जी तो बिल्कुल आपके लिए हम बिल्कुल उस गज़ल को सुना सकते हैं, चूँकि ये कार्यक्रम हमारा बहारे गज़ल है। गीतों के लिए अभी तक फरमाइशी का कार्यक्रम चल रहा था, आपकी बहुत ही फेवरेट डाली आरजे सिंपल जी आपके साथ उपस्थित थी। ये गीत जो सिद्धू मूसेवाला का है आप उनसे कल सुन लीजिएगा, फरमाइश वो पूरी करती हैं, मेरा काम गज़ल सुनाना है। हाँ, अगर आप कोई गज़ल सुनना चाहें तो ज़रूर हम आपकी उस आदेश को, आपके उस आदेश को शिरोधार्य करेंगे। फिलहाल आइए बढ़ते हैं गज़ल की तरफ। और आपने चूँकि हमने बात डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की है, तो डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की एक प्यारी सी गज़ल को आवाज़ दी है मखमली गले के मालिक यानी जगजीत सिंह साहब ने। जी हाँ, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की लिखी हुई गज़ल आवाज़ जगजीत सिंह की। चलिए आज के इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गज़ल के साथ, लिखी हुई डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की और गाई हुई जगजीत सिंह साहब।

कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। अभिजीत साहब की आवाज में ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए थी। हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं। शुभ संध्या आपको। श्याम नाम की पगली हमारे साथ हैं, माता जी चरण स्पर्श। और बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ, अच्छा लगा। कहते हैं ना कि वो जो चीज इंसान के पास नहीं होती, वो उसका मलाल या उसको पाने की ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही होती है। मुझे याद आ रहे हैं इस मौजू पर इस समय कि वो नहीं है तो उनको पाने की इच्छा बहुत है। कहीं पढ़ा भी था मैंने कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अब देखिए, जो चीज मिल गई हमको वो मिट्टी हो गई, उसका महत्व तो कम हो गया। जो नहीं मिली उसका वो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं। एक उम्र होती है, उस उम्र तक इंसान को गम और खुशी इन दोनों का एहसास होता है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, रोना है ना हंसना है। फिर इंसान की दुनिया ही अलग हो जाती है ना, बस जिंदगी है और जिंदगी चली जा रही है ना, बहुत ज्यादा खुशियों में खुश होने का समय और न दुख में बहुत दुखी होने की आवश्यकता। ये शायद हम सब की जिंदगी का एक सच है। और जो नहीं है उसका महत्व तो ज्यादा है। इस मौजू पर मुझको जान एलिया साहब याद आते हैं कि कितने ऐश रहते होंगे। जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उनको जाना पड़ा पाकिस्तान, लेकिन उनके सीने में हिंदुस्तान धड़कता था। तो उन्होंने कहा कि कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। उनके बाल जो है बहुत लंबे लंबे थे और लंबे बाल रखाए हुए वो, बहुत सभी आप सभी उनसे परिचित हैं। उन्होंने कहा कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। शाम हुए खुशबास यहाँ के पास मेरे आ जाते हैं, मेरे बुझने का नजारा करने आ जाते होंगे। और पंक्ति आ रही है कि वो जो ना आने वाला है ना, वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। अरे आने वालों से क्या मतलब, आते हैं, आते होंगे। और उन्होंने कहा कि यारों यारों कुछ तो हाल सुनाओ उनकी कयामत बाहों के, यारों कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों के। अरे वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। जी हाँ, जो नहीं मिला वो जिंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ वी डू नॉट हैव। जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ वही है जो हमारे पास नहीं है। अब हम बात करते हैं साहब, क्योंकि बात चल रही है डॉक्टर नवाज देवबंदी की, तो उन्होंने लिखा कि हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, आप पूछें तो बताने में मज़ा आता है। हाले दिल सबसे छुपाने में मज़ा आता है, आप पूछें तो बताने में मज़ा आता है। रोशनी बोझ सी लगती है शबे हिज्रा में, हिज्रा मतलब जुदाई। रोशनी बोझ सी लगती है शबे हिज्रा में, हाँ हाँ मगर दिल को जलाने में मज़ा आता है। जिसके कुछ तार उलझ जाते हैं दिल की सूरत, यही बात वहाँ भी है कि जो दिल को पसंद है और ये लगता है कि हासिल नहीं हो पाएगा। जिसके कुछ तार उलझ जाते हैं दिल की सूरत,
बस उसी साज पे गाने में मज़ा आता है। साज मतलब कोई भी वाद्य यंत्र जो भी आप कहें। जा बचाने का तसव्वुर, तसव्वुर मतलब ख्याल, जा बचाने का तसव्वुर भी बुरा लगता है, इश्क में जान गंवाने में मज़ा आता है। चाहते हैं कि इश्क में कुर्बान हो जाए और याद कर कर के वो गमों की भरी दोपहरें, याद कर कर के वो गमों की भरी दोपहरें, पहली बारिश में नहाने में मज़ा आता है। जी हाँ, हमारे साथ मोहम्मद मुशीफ जी भी जुड़ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। गुड इवनिंग डियर आरजे मनु भाई, कैसे हैं आप? हैप्पी नवरात्रि, आपको भी हैप्पी नवरात्रि। मुशीफ जी, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और चलिए, बात जान एलिया साहब की हुई है कि कितने ऐश रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। गायत्री अशोकन ने इस गज़ल को अपनी आवाज़ दी है। हमारे साथ कोई साहित्य है, वो हमारे साथ पहली बार हमारे चैट बॉक्स में है और उन्होंने कहा है जान एलिया साहब की कोई भी गज़ल। तो जी हाँ, आइए गायत्री अशोकन के द्वारा गाई गई गज़ल जिसको लिखा है जान एलिया ने, वही गज़ल जो मैंने अपनी आवाज़ में पढ़ी, अब गायत्री अशोकन की प्यारी सी आवाज़ में आप सुनिए। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, क्योंकि यह कोना नहीं बल्कि अब बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। फिलहाल जॉन एलिया के द्वारा लिखी गई और गायत्री अशोकन के कंठ से निकली हुई ये खूबसूरत सी गज़ल आप सभी के लिए।

0: जी हाँ, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी बहाने हमने दुनिया देख ली। आशा भोसले की आवाज में ये प्यारी सी गजल फिल्म आप सभी जानते हैं मुराओ जान, क्या बात है। यहां पर भी वही जो नहीं मिल सका उसी की बात हो रही है। इसके पहले भी हमने जब जान एलिया साहब की वो गजल सुनाई आपको, उसमें भी वही बात है कि वो जो ना आने वाला है ना, उससे मुझको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। आइए अब चलते हैं, फिर आपको ले चलते हैं नवाज देवबंदी की तरफ। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, अब परिवार पर वो आते हैं और कहते हैं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है। आज के जो मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन वर्तमान समय की जो पीढ़ी है वो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस है, और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो समझौता करते हैं अपने बच्चों के साथ। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है। देखते होंगे खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, मतलब जिसको हमने बोलना सिखाया वो कहता है कि अच्छा अब आप मत बोलिए। खुद को कितना छोटा करना पड़ता है, बेटे से समझौता करना पड़ता है जब औलादें नालायक हो जाती हैं। जब औलादें नालायक हो जाती हैं अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, यार मेरी औलाद मेरे साथ ये व्यवहार। हो सकता है में से कुछ लोगों के घर का सच ये भी हो। जब औलादें नालायक हो जाती हैं अपने ऊपर गुस्सा करना पड़ता है, सच्चाई को अपनाना आसान नहीं। सच बोलना बहुत कठिन काम है साहब, सच्चाई को अपनाना आसान नहीं, दुनिया भर से झगड़ा करना पड़ता है। जब जब सारे के सारे ही बेपर्दा हों, जब सभी लोग पर्दे में ना रहें, जब सारे के सारे ही बेपर्दा हों, ऐसे में खुद पर्दा करना पड़ता है। और सियासत पर देखिए कितना कितना प्यारा मतला लिखा कि प्यासों की बस्ती में शोले भड़का कर, प्यासों की बस्ती में शोले भड़का कर फिर पानी को महंगा करना पड़ता है। पहले शोले भड़का दीजिए, गर्मी बढ़ा दीजिए, उसके बाद पानी महंगा हो जाएगा। हंसकर अपने चेहरे की हर सिलवट पर इस दर्द को, इस कल्ब को शायद महसूस कर सकेंगे वो जो उम्र के थोड़े से ढलान पर है। पिता है कोई तो कहता है कि मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो हंसकर हंसकर अपने चेहरे की हर सिलवट पर शीशे को शर्मिंदा करना पड़ता है। जी हाँ, ये होता है, और ये संभवता ये शायद हम सभी के जीवन का सच, ईश्वर न करे कभी हो। हाँ, आशा भोसले जी की आवाज में एक प्यारी सी गजल आपको सुनाई, और ये नाइंसाफी होगी कि भाई एक बहन को सुना दिया तो एक बहन बाकी रह गई। आइए अब चलते हैं उनकी ओर, जिनको हम कहते हैं स्वर कोकिला। एक प्यारी सी गजल के साथ हम लता जी की आवाज पहुंचाते हैं आप तक। सुनते रहिए और रेडियो 89.6 FM, क्योंकि ये अब गोंडा की ही नहीं बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। फिलहाल लता जी की आवाज में ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: सुर में गाना सीखिए,

उन्हें हमारा दम निकाला है नहीं। शुभ रात्रि कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम में मुझे है। जी हाँ, और भाई सिद्धार्थ जी ने कहा है बहुत ही प्यारी गज़ल, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत अच्छी गज़ल लगी आपको। और जी घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो दो बहनों की बात कर ली तो कहाँ संभव है साहब कि भाई को हम छोड़ देंगे। आइए, अब कल है शुक्रवार, आसमान वाले ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी शनिवार को। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को आपके ही कार्यक्रम बहार गज़ल में एक बार पुनः होगी आपसे मुलाकात। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस प्यारी सी लोरी के साथ।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी अधूरी बातें। राम, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? राधा की आवाज सुनकर राम ने धीरे से पलट कर देखा। 20 साल बाद सामने खड़ी उस लड़की को पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा जिसे वो कभी बिना देखे भी पहचान लिया करता था। राधा, वही आंखें, वही बोलने का अंदाज, बस चेहरे पर उम्र की कुछ लकीरें और मुस्कान के पीछे छिपी हुई जिंदगी की थकान। राम कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। राधा हल्का सा मुस्कुराई। क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? राम ने धीरे से कहा। तुम्हें भूलने की कोशिश तो बहुत की थी, पहचानना कैसे भूल जाता। राधा की मुस्कान वहीं रुक गई। अस्पताल के गलियारे में लोग आते जाते रहे। किसी को नहीं पता था कि वहां दो ऐसे लोग खड़े थे जिनके बीच 20 साल पहले एक पूरी जिंदगी बसने वाली थी। राम अपनी मां की जांच करवाने आया था और राधा अपनी 10 साल की बेटी अनाया को लेकर अस्पताल पहुंची थी। उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल की खिड़की के पास रखी बेंच पर बैठ गए। 20 साल का फासला था मगर बातचीत शुरू करने के लिए दोनों को वही पुरानी झिझक महसूस हो रही थी। आखिर राधा ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अब ठीक है, बस उम्र हो गई है, राम बोला। और तुम? राधा बोली। राम मुस्कुराया। मैं भी ठीक हूं। राधा ने उसकी तरफ देखा। तुम आज भी झूठ बोलते वक्त नजरें नीची कर लेते हो। राम पहली बार थोड़ा खुलकर मुस्कुराया। और तुम आज भी सवाल पूछने से पहले ही जवाब जानती हो। दोनों हंस दिए। वो हंसी कुछ ही सेकंड रही लेकिन उन कुछ सेकंडों में दोनों फिर से 20 साल पीछे पहुंच गए।

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना 20 साल के अंतराल के बाद राम और राधा अस्पताल में मिले। राम अपनी माँ को दिखाने आया था और राधा अपनी बेटी को। वही झिझक, वही खामोशी आज भी दोनों के बीच थी और एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही एक बार फिर से उन पुराने दिनों में लौट गए। अब आगे स्कूल में राम हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता था। राधा आगे बैठने वाली उन लड़कियों में से थी जिनकी कॉपियां हमेशा साफ और अक्षर सुंदर होते थे। राम गणित में अच्छा था, राधा हिंदी में। पढ़ाई के बहाने दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन राधा ने उसकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, बड़े होकर क्या बनोगे? राम ने नीचे जवाब लिखा था, अभी पता नहीं, लेकिन जहां भी रहूंगा तुम्हें बताऊंगा। राधा ने उसके नीचे एक छोटी सी स्माइली बना दी थी। उस उम्र में दोनों को प्यार का मतलब पूरी तरह नहीं मालूम था। उन्हें बस इतना पता था कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद भी एक दूसरे से बात करने का मन करता है। फिर 10वीं की परीक्षा खत्म हुई। राम के पिता की छोटी सी दुकान थी। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। राम ने आगे पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया। राधा कॉलेज चली गई। शुरुआत में फोन पर बातें होती रहती, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा। फिर घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई और परिस्थितियां उनके बीच आने लगीं। एक दिन राधा ने फोन पर कहा, राम, पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। राम देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूं। राधा बोली, जानता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे चाहने से जिंदगी नहीं बितानी चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। राम ने जवाब दिया था, राधा ने रोते हुए कहा था, और अगर तब तक देर हो गई तो? राम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा राधा, लेकिन इस बार तुम्हारे सामने सिर झुकाकर नहीं, तुम्हारे बराबर खड़े होकर। दोनों को लगा था उनके पास बहुत समय है, लेकिन जिंदगी किसी के वादे का इंतजार नहीं करती। कुछ ही महीनों बाद राधा की शादी तय हो गई। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और परिवार चाहता था वो निश्चिंत हो सकें।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना राम और राधा बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें एक दूसरे से तब से प्यार हो गया था जब वो शायद प्यार का मतलब भी नहीं समझते थे। बड़े होने के बाद राम परिवार की जिम्मेदारियां उठाने लगा और राधा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। अब आगे राधा ने राम को आखिरी बार मिलने बुलाया। स्टेशन के पास वाली छोटी सी चाय की दुकान पर दोनों बैठे थे। वही दुकान जहां वो कॉलेज के दिनों में कभी कभी मिलते थे। राधा ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? राम ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल कह रहा था कि वो उसका हाथ पकड़कर कह दे, मत जाओ। लेकिन उसने कहा, तुम अपने पापा को दुख देकर मेरे पास आओगी तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। तो हमारा क्या होगा? राधा ने पूछा था। राम ने बहुत देर बाद जवाब दिया, शायद हम एक दूसरे की जिंदगी में नहीं होंगे, लेकिन जो था वो झूठा नहीं हो जाएगा। उस दिन राधा चली गई और राम अपनी चाय ठंडी होने तक उसी बेंच पर बैठा रहा। अस्पताल में किसी बच्चे की रोने की आवाज से राम की यादें टूट गईं। राधा सामने बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं। तुम्हें वो आखिरी दिन याद है? राधा ने पूछा। राम ने कहा, कुछ दिन भूलने के लिए नहीं होते राधा, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। राधा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसने वही सवाल पूछा जो शायद 20 साल से उसके मन में था, राम तुमने शादी क्यों नहीं की? राम खिड़की से बाहर देखने लगा, बोला, शुरुआत में लगा कि तुम्हारे जाने के बाद किसी और से प्यार करना तुम्हारे साथ बेमानी होगी। बाद में समझ में आया कि जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है, लेकिन तब तक मैं अकेले रहने का आदी हो चुका था। कभी किसी को पसंद नहीं किया? राधा बोली, किया होगा, लेकिन किसी को जिंदगी में लाने के लिए सिर्फ अच्छा लगना काफी नहीं होता। मैं हर बार खुद से यही पूछता रहा कि क्या मैं किसी को वो जगह दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना राम और राधा 20 साल बाद अस्पताल में मिले। राम अपनी माँ को दिखाने आया था और राधा अपनी बेटी को। वो दोनों स्कूल के समय से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हालातों वश उनकी शादी नहीं हो सकी। मिलने के बाद वो दोनों अतीत में लौट गए। पुरानी सारी यादें ताजा हो गईं। फिर राधा ने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की। अब आगे राधा ने धीरे से कहा, और जवाब हमेशा ना था। राम मुस्कुराया, शायद मैंने खुद को कोशिश करने का मौका ही नहीं दिया। इस बार राधा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अनाया उसके पास आ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। मम्मी, डॉक्टर अंकल ने कहा है थोड़ी देर में फिर बुलाऊंगा। राधा ने उसे अपने पास बैठा लिया। राम, ये मेरी बेटी अनाया है। राम ने मुस्कुरा कर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में, और मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है।
1: अच्छा,
0: तो कभी अपनी ड्राइंग दिखाना, राम ने छोटी बिटिया से बोला। अनाया अपनी माँ से कुछ पूछने लगी और राम चुपचाप उन्हें देखता रहा। राधा ने अपनी बेटी के बाल ठीक किए। उस छोटे से पल में राम को समझ आया कि जिस लड़की को वो कभी अपने साथ भविष्य बनाते हुए देखता था, उसने अपना एक अलग संसार बना लिया था। उस संसार में उसकी जगह नहीं थी। और इस बात का दुख तो हुआ, मगर कोई शिकायत नहीं हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने राधा को बताया कि अनाया को कुछ और जांचों की जरूरत है, इसलिए परिवार को रिपोर्ट आने तक इंतजार करना था। राम ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, अस्पताल में मेरी पहचान है, जांच या डॉक्टर के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। राधा ने सिर हिला दिया, थैंक यू राम। फिर दोनों अलग अलग रास्तों से बाहर चले गए। राम घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। माँ ने पूछा, आज बहुत चुप हो, सब ठीक है? राम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आज एक पुराना दोस्त मिल गया था। माँ मुस्कुराई, दोस्त था या कोई खास? राम ने अपनी अलमारी खोली और पुराने कागजों के बीच से एक छोटी सी स्कूल की कॉपी निकाल ली। उसके आखिरी पन्ने पर वही सवाल लिखा था, बड़े होकर क्या बनोगे? और नीचे राम का जवाब था, जहां भी रहूंगा तुम्हें बताऊंगा। राम ने कॉपी बंद कर दी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अधूरी बातें। अब तक आपने सुना, स्कूल में एक दूसरे को पसंद करने वाले राम और राधा, जिनकी आपस में शादी परिस्थितियों के कारण नहीं हो सकी थी, 20 साल बाद फिर एक दिन अचानक मिले और पुरानी यादों में खो गए। यादों से वापस आकर जीवन का यथार्थ समझकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब आगे, पहली बार राम को लगा कि शायद वो 20 साल से राधा का नहीं, अपने उस पुराने वादे का इंतजार कर रहा था जो उसने एक ऐसे लड़के की तरह किया था जिसे दुनिया की मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। कुछ हफ्ते बाद राधा अपनी बेटी के साथ राम की मां से मिलने आई। दोनों परिवारों ने साथ बैठकर चाय पी। अनाया ने राम को अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाई। उनमें से एक ड्राइंग में एक स्कूल, दो बच्चे और उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ बना हुआ था। राम ने पूछा, ये कौन है? अनाया बोली, मम्मी कहती हैं कि स्कूल की दोस्ती जिंदगी भर याद रहती है। ये मम्मी और ये उनके दोस्त। राम ने ड्राइंग को कुछ पल देखा और मुस्कुरा दिया। राधा ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में पुरानी यादें थीं, लेकिन इस बार उन यादों में कोई शिकायत नहीं थी। जाते वक्त राधा दरवाजे पर रुकी। राम, एक बात पूछूं? राम बोला, पूछो। अगर समय पीछे लौट जाए तो क्या तुम फिर वही फैसला करोगे? राम ने कुछ देर सोचकर कहा, शायद उस उम्र में फिर वही करता, क्योंकि तब मुझे लगता था कि तुम्हें दुख से बचाना ही प्यार है। लेकिन आज अपने छोटे वाले राम से कहता कि अपने प्यार के लिए लड़ना और किसी की जिम्मेदारी समझना दोनों साथ हो सकते हैं। हर बार खुद को पीछे कर लेना जरूरी नहीं है। राधा की आंखें भर आईं। राम ने आगे कहा, और तुमसे एक बात कहूं, अगर जिंदगी ने मुझे किसी अच्छे इंसान से मिलने का मौका दिया तो इस बार मैं सिर्फ अतीत की वजह से उससे दूर नहीं भागूंगा। राधा मुस्कुराई, बस यही सुनना चाहती थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चली गई। राम दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे पहली बार ऐसा नहीं लगा कि कोई उससे कुछ छीन कर ले जा रहा है। कुछ कहानियां वापस पाने के लिए नहीं होती, वो हमेशा ये समझाने आती हैं कि हम कौन थे, क्या खोया और अब किस तरह जीना है। उस रात राम ने अपनी पुरानी कॉपी अलमारी में वापस रख दी। इस बार उसे छिपा कर नहीं, बल्कि बाकी किताबों के साथ, क्योंकि अब वो उस याद से भागना नहीं चाहता था। अब उसे अपनी जिंदगी का एक सुंदर हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहता था। पहली मोहब्बत का अधूरा रह जाना जिंदगी के अधूरे रह जाने जैसा नहीं है। अतीत को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन उसके कारण अपने आज और आने वाले कल को खो देना जरूरी नहीं। सच्चा प्यार कभी कभी हमें किसी के साथ रहना सिखाता है और कभी अपने भीतर की अधूरी बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अधूरी बातें। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्य हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यही कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूम के चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: दुनिया तो वही है मगर
1: मगर मगर
0: क्या?